100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की नवी तिथि तदनुसार दिनांक 30 जून सन 2026 प्रातः के 5:55 हुए अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम पुष्पांजलि से। एक दंताय शुद्ध गाय सुमुखाय नमो नमः, प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ती विनाशिने। हम माँ पार्वती के पुत्र जिनके एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्त जनों के रक्षक और प्रणत जनों के पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप गणपति को बारंबार प्रणाम है।

मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो मन की तरह तेज वायु के समान वेगमान इंद्रियों को जीतने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पवन पुत्र और श्री राम के दूत हैं, ऐसे बाहुबली हनुमान जी को नमन करते हैं।

मंगल मूर्ति हनुमान जी, आप बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। आपके कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है।

जिनका जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और करुणा का मार्ग दिखाता है, ऐसे मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक प्रभु श्री राम को हमारा नमन है।

हे महादेव, हाथ पैर वाणी मन या कर्म से जो भी भूल हुई हो, जाने अनजानी सभी गलतियों को क्षमा करें। हे करुणामय शंभु, आपको बारंबार प्रणाम है।

प्रेम की पराकाष्ठा समर्पण की मूरत जो कृष्ण में समाई और स्वयं कृष्ण जिम में समा गए, ऐसी अनुपम राधा रानी को कोटि कोटि नमन। श्रोताओं, आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो। इन्हीं वचनों के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए विनय को।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तत्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि व नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आज UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ में आज सुबह भी बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है, जगह
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
4: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर सदाबहार गीत। और दोस्तों, आप जानते हैं कि सदाबहार गीत जहां हर सुबह होती है, पुराने सदाबहार गीतों की सुरीली महफिल और दिल को छू जाने वाली कुछ प्यारी सी बातें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय, और अगले घंटे हम साथ मिलकर सुनेंगे वो गाने जो समय के साथ और ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं।

दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। जी हाँ, वही लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे या फिर बहुत करीब वाले दोस्त, या कोई वो कोई भी इंसान जो हर खुशी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम उन्हीं अपनों के साथ समय निकालना भूल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो आज सदाबहार गीत में समय निकालिए, सुनिए और सुनाइए उन्हें ये बेहतरीन गाने, क्योंकि ये गाने हर दिल से जुड़ते हैं, हर दिल की धड़कन बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत, आज विनय आपके साथ हैं।

दोस्तों, प्यार सिर्फ बड़े बड़े तोहफों से नहीं जताया जाता। कभी कभी आप अपनी माँ से पूछ लें कि उनकी तबीयत कैसी है। अपने पिताजी के साथ 10 मिनट बैठकर चाय पी लीजिए। दादा दादी या नाना नानी से पुरानी बहुत सारी बातें कर लीजिए। या फिर किसी दोस्त को यूं ही फोन करके हालचाल पूछ लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे से पल, छोटे छोटी सी बातें रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं। एक पुरानी कहावत कही गई है कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। इन्हें समय समय पर प्यार और अपनापन रूपी पानी मिलता रहे तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जैसे हमेशा सदाबहार गीत हरे भरे रहते हैं, इनको आप जब भी सुने बेहतरीन लगते हैं। जैसे ये एक गिटार है जो ऑल टाइम हिट है।

सुल्तान रजा जी ने, जो हमें सदाबहार गीत से इन्होंने सुनना शुरू किया है। और लिखते हैं विनय भैया अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही साथ लिखते हैं कि आपने पुष्पांजलि, अच्छा आज सुबह आप पुष्पांजलि करने आए हैं, हमारे साथ यहाँ पर बरेली में बारिश भी हुई है और आपकी आवाज़, अच्छा आपने आवाज़ की तारीफ़ की है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने हमें मेल किया है, कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी बरेली से सुल्तान रज़ा। साथ ही साथ एक रज़ा इकबाल, रज़ा जिशान, रज़ा अफजल, रज़ा मोनिश, रज़ा और साथ ही साथ मम्मी पापा, पूरा राजा परिवार हमें गुड मॉर्निंग कह रहा है। और अशोक कुमार जी ने हमें मेल किया है, और अशोक कुमार लिखते हैं, सुप्रभात सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि मौसम खूबसूरत सुहाना हो गया है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, सदाबहार गीत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलफ्सा सिद्दीकी जी ने भी हमें मेल किया है और लिखती हैं, हेलो गुड मॉर्निंग विनय भाई, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह इन्होंने बड़े सारे नाम लिखे हैं। और साथ ही साथ राम राज जी भी हमें सुन रहे हैं, श्री गणेशाय नमो, सदाबहार गीत ये सुन रहे हैं, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामचंद्र, शंकर भैया, पप्पू और मनीष बजरंगी, सबसे पहले इन्होंने हमें प्यार भरा नमस्कार कहा है, आशीर्वाद दिया है, गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। और वारिस जी का भी मेल पढ़ लेते हैं, और इन्होंने हमें लिखा है, ओके ये लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त विनय को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, आपको भी सलाम, और अर्ज़ करते हैं कि ज़िंदगी टूट कर बिखरने को नहीं, बिखर कर फिर से निखरने को कहते हैं। ये हमें सुबह 6 बजे से बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं, पुष्पांजलि अच्छी लगी, भजन सुनकर मन श्रद्धा से भर गया, इस वक्त मैं सदाबहार गीत सुन रहा हूँ, खूबसूरत गीत सुनने को मिल रहे हैं, शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, समय निकाल कर मेल किया उसके लिए। और एक और बेहतरीन ट्रैक रेडी है आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर जारी है सदाबहार की

और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ डांस कर रहे होंगे। बेहतरीन गाने आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत में। 7:44 हो चला है, आपके साथ आपका दोस्त विनय है। और दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में दूरियां कम ज़रूर हो गई हैं, लेकिन दिलों की दूरियां कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और उन्हें बढ़ाते रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सैकड़ों लोग सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने घर पर ही बैठे बैठे आप लोगों से बातचीत करते हैं, वर्चुअल बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ख़ास रिश्तेदारों से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं तो उनके लिए समय निकालना ज़रूरी है। बस एक छोटा सा आप संकल्प लीजिए कि जिस अपने को आप बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, आप उसे ज़रूर फ़ोन कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट की बातचीत भी आपके चेहरे और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और इस बातचीत में बस कई बार क्या होता है ना, बहुत मतलब के लिए फ़ोन करते हैं कि हमें ये काम था, वो काम था। जब आप बिना किसी काम के किसी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन करते हैं, तब आप देखिए वो जो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है, वो कितना खुश होता है कि किसी ने याद तो किया। सुनते रहिए, एक और बेहतरीन सदाबहार गीत आ रहा है आपके लिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत विनय के साथ, और ये प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए क्योंकि मेल्स के थ्रू हमारे पास बहुत सारे प्यार नुमा मेल्स आए हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो आइए हम बढ़ चलते हैं मोनू सेठ जी के पास, और इन्होंने हमें लिखा है, जय महाकाल, कैसन है आप भैया जी, उम्मीद है आहे बहुत नीक हुई है, प्रातः उत्थान पुष्पांजलि श्रुत्वा मन प्रसन्न अभवतः, भजनम च अतीव सुंदरम आसीत। इसका मतलब लिखा है इन्होंने कि सुबह उठकर पुष्पांजलि सुनकर मन प्रसन्न हो गया, भजन बहुत अच्छे लगे, शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ राधे श्याम जी ने भी हमें मेल किया है, और राधे श्याम जी लिखते हैं और ये लिख रहे हैं कि कैसरगंज से हैं मास्टर राधे श्याम शाक के हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और साथ ही साथ लिखते हैं कि आप कैसे हैं, प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सब आप ही लोगों की वजह से हो पा रहा है और हमारे बगल में कोई बैठा उसकी वजह से भी। और साथ ही साथ वकील अहमद जी भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और इनको आवाज़ अच्छी लग रही है, शुक्रिया, गाने अच्छे हैं, इस समय हमारे यहाँ बारिश हो रही है, गर्मी में कुछ राहत मिली है, चाय पीने जा रहे हैं। अब लीजिए, आपने चाय की बात कर दी, सुबह सुबह चाय भेजी तो नहीं। और सोनू परवाना जी ने मेल किया है कि भैया जी राम राम, कैसे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, पुष्पांजलि से हमारे दिन की शुरुआत होती है, भगवान के भजन सुनकर बहुत अच्छा दिन हो जाता है, और मोनू भाई ट्यून कर देते हैं रेडियो, अच्छा ओके, मोनू भैया ट्यून कर देते हैं। चलिए ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, एक और ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, जाता है।

और दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये सारी बातें आपके दिल को ज़रूर छुई होंगी। याद रखिए, ज़िंदगी की असली खुशियाँ अपने लोगों के साथ है, उनके साथ बिताए लम्हों के साथ है। तो बस अपने लोगों को समय दीजिए, उनसे प्यार करिए, उनका सम्मान करिए और सबसे बढ़कर उनका ख्याल रखिए, उनसे बातचीत करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को सदाबहार गीत से। थोड़ी देर में हम आएंगे लेकर गुड मॉर्निंग लखनऊ, और उसके पहले आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश

0: केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है।

0: में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और

प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान।
3: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
2: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
3: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
2: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
4: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
5: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
3: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आठ बज के 17 मिनट और इस खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज करने मैं आ चुकी हूँ आपके साथ जुड़ने आयुषी, क्योंकि पहले से खूबसूरत सा आगाज कर चुके थे आपके प्यारे से दोस्त विनय, जिनकी आवाज आप सुबह से सुनी रहे।
7: बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ में विनय और आयुषी आ गए हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गाने भी हैं और बेहतरीन शुरुआत के लिए हम बेहतरीन गाना भी तैयार करके रखे हुए हैं
6: बिना किसी देरी के। भाई

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र मॉर्निंग मंत्र मॉर्निंग मंत्र
2: दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप 100.7 एफएम रेनबो पर। आयुषी और विनय आपके साथ हैं और हर दिन की शुरुआत होती है पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आयुषी बताएंगी क्या है आज का मॉर्निंग मंत्रा।
3: आज का मॉर्निंग मंत्रा भी उतना ही इंस्पायरिंग है जितना हर दिन का होता है। और हम बात कर रहे हैं कि भाई विनय, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, जो लगते हैं कि बाप रे ये तो बड़ा ही असंभव सा काम है, नामुमकिन सा है, वो कभी ना कभी असंभव ही था जब तक किसी और ने पहला कदम उठाकर उसे पूरा नहीं कर लिया।
2: क्या बात है, यानी इसमें एक छोटी सी बात छिपी है कि किसी भी काम की शुरुआत तो करनी ही पड़ती है।
3: बिल्कुल, और जब कोई और कर देता है तो हमें लगता है अरे हम भी तो कर सकते थे, बस हिम्मत ही नहीं कर पाए।
2: बिल्कुल, तो इस मॉर्निंग मंत्रा के साथ बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: आठ बजकर 28 मिनट और विनय और आयुषी हैं आपके साथ 100.7 FM पर। और विनय, आपने तो बहुत पेपी म्यूजिक चला रखी है, जैसे बच्चे जब स्कूल जाने वाले होते हैं तो ऐसी पेपी सी म्यूजिक चल जाती है तो मजा सा आ जाता है, नींद खुल जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी बच्चों का जिक्र मत करिए, बच्चों की नींद वैसे भी उड़ने वाली है, स्कूल खुलने वाले हैं।
1: ओहो कोई बात नहीं, हर रात के बाद सुबह होती है तो हर सुबह के बाद रात, लेकिन फिर सवेरा हो जाता है।
2: क्या बात है, वाह, तो यानी फिर से वेकेशन आएंगे।
1: बिल्कुल।
2: दोस्तों, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है और हम सब इससे इत्तेफाक जरूर रखते हैं। आज है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे।
1: और भाई, डिजिटल दौर में सोशल मीडिया का जो एक इम्पोर्टेंस है हम सबकी जिंदगी में, जिस तरह से उसने हमें दुनिया भर से जोड़ दिया है, उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो हम सब जानते हैं और यही तो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: और दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 2010 में मशहूर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी और इसके बाद इसे हर साल

0: पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा।
1: और भाई देखिए, ये जो दिन है इसको किस तरीके से सही तरीके से, जिम्मेदार तरीके से और पॉजिटिव तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हमें याद रखने की जरूरत है और यही इम्पोर्टेंट बात है।
0: बिल्कुल, तो ये इम्पोर्टेंट बात है और हर रोज हम भी आपसे कुछ बात जानना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो है ये।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
0: या दोस्तों, आज का मुद्दा क्या है आयुषी?
1: देखिए भाई, जब दिन इस बारे में है तो मुद्दा भी इसी बारे में होगा ना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि फर्ज करिए, बस मान लीजिए कि अगर एक दिन के लिए आपको ऐसा एक दिन पता चले आपको कि सोशल मीडिया अब हमेशा के लिए हमारे जीवन से गायब हो चुका है, बंद हो चुका है, तो आप उसके किस पहलू को सबसे ज्यादा मिस करेंगे?
0: आपको पता है, आपने जैसा ये कहा ना कि सोशल मीडिया गायब हो गया है, तो कई लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी। वो सोशल मीडिया में जीते हैं दरअसल,
1: क्योंकि नींद खुलते ही सबसे पहले स्क्रोलिंग और सोने से पहले सबसे पहले स्क्रोलिंग।
0: कई सारे लोग तो अगर तेज से छींक भी लेना तो वो अपडेट कर देते हैं। तो भाई मुद्दा बहुत ही आसान है कि अगर आपको पता चले कि सोशल मीडिया बंद हो गया है तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होने वाली है, हमें बताइए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर।
1: बिल्कुल, और इसके पहले कि आप सोचे कि क्या क्या जिंदगी में होने वाला है, सोचिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: आठ बजकर 36 मिनट और गुड मॉर्निंग लखनऊ पर विनय और आयुषी आपके दो दोस्त हाजिर हैं बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और प्यारे प्यारे गाने लेकर।
2: बिल्कुल, और आपकी बेहतरीन शुरुआत तो हो ही चुकी है। आज है मंगलवार और आज का मौसम भी थोड़ा सुहावना है। कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह बारिश होने वाली है। तो भाई वर्किंग डे है, लेकिन अगर वर्किंग डे में बेहतरीन गाने इस तरह बज जाए तो क्या बात है।
1: बिल्कुल सही बात है। और भाई वर्किंग डे पे जो काम करने की एक जो मजा होता है ना, अगर बैकग्राउंड में प्यारी प्यारी म्यूजिक चल रही हो और काम करने का जो आउटपुट होता है वो डबल हो जाता है, एफिशिएंसी ट्रिपल हो जाती है।
2: क्या बात है। और इसीलिए हम आते हैं हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक। और दोस्तों आज एक डे हमने आपको बताया कि वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है, साथ ही साथ एक इंटरनेशनल डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की, अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। तो जितने स्टूडेंट्स है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो खास ध्यान दें और बाकी लोग भी ध्यान दे भाई, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे जो हो रहा है उससे हम सीधे प्रभावित होते हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को एस्टेरॉयड्स के से पृथ्वी को होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है और इसके जो वैज्ञानिक पहलू है उस पर भी नजर डालना है।
1: अब देखिए विनय, इसमें क्या, इस दिन के पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक सी घटना जुड़ी है। तो 30 जून 1908 को साइबेरिया, रशिया की एक तुंगुस्का नदी है, उसके पास अंतरिक्ष से आए एक विशाल एस्टेरॉयड की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और इस धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में आने वाला जंगल पूरी तरह तबाह हो गया और विज्ञान की दुनिया में इस घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है।
2: दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और जैसा आयुष ने पहले भी कहा कि कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आते रहे हैं। और आगे बताते चलें कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने साल 2016 में आधिकारिक तौर पर 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे घोषित कर दिया।
1: तो भाई इसी के साथ मुझे लगता है एक तो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो वो भी बता देते हैं।
2: जी, दुनिया भर के वैज्ञानिक, अंतरिक्ष एजेंसियां और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस दिन नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट्स यानी एनईओस और
1: प्लैनेटरी डिफेंस पर लोगों को जानकारी देते हैं। और आज ही के दिन वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां इस बात पर चर्चा करती हैं कि भविष्य में कोई ऐसा बड़ा खतरा हो तो कैसे हम धरती को सुरक्षित रख सके।
2: और दोस्तों हम भी एक चर्चा कर रहे हैं आज के विषय पर, आज के मुद्दे पर हम दोहरा देते हैं, मेल्स आने शुरू हो गए हैं। मुद्दा हमारा ये कि अगर आपको पता चले कि अब सोशल मीडिया नहीं है, वो बंद हो गया है, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होगी।
1: बिल्कुल, और हम वेट कर रहे हैं, वापस से बता देते हैं fmakashwani@gmail.com, जहां पर आकाशवाणी में वी है, डब्ल्यू नहीं। तो हम वेट कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे मेल्स का।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर
1: 8700001-4242।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: जी हाँ, इस म्यूजिक पे मुझे तो डांस करने का मन करने लगता है क्योंकि है ही जबरदस्त भाई। और हमारे बड़े सारे साथी ऐसे हैं जो अब तैयार हो रहे होंगे, चाय अपने हाथ में लिए होंगे या फिर इधर उधर तो अखबार पढ़ रहे होंगे। क्यों?
2: और अगर भाई जिनको ऑफिस जाना होगा वो जल्दी से कह रहे होंगे मेरी टाई कहाँ गई, मेरा बैग कहाँ गया, मेरी टिफिन कहाँ गई।
1: तो ये सब करते करते हमें सुनते रहिए। और हमारे बड़े सारे साथी हमें मेल भी कर रहे हैं और सुबह से ही मेल कर रहे हैं, तो आइए उन्हें हम पढ़ते हैं। राजकमल यादव, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से इन्होंने मेल किया है। प्रणाम लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कैसे हैं हम। बहुत ज़बरदस्त हैं, इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि नियमित श्रोता है और इन ये कहते हैं कि अच्छा देखिए ये पॉसिबल नहीं जो आपने लिखा है कि आप रोज़ आया करिए। हमारे बड़े साथी आते हैं बदल बदल कर और वो बेहतरीन गाने सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ हमारी वाइफ संगीता यादव, सावन कुमार, अनिकेत, अंशिका भी सुन रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी।
2: क्या बात है, और बहुत प्यारी शुरुआत हो गई है मेल के सिलसिले की। और आंचल सेठ खालिस पर लिख रही है सुप्रभात भाई को, राम राम, कैसे हैं आप? कह रहे भगवान के भजन पुष्पांजलि में बहुत सुंदर बजाए हैं गाने आपने विनय, और सदाबहार प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आंचल जी। सुधांशु जी ने हमें मेल किया है, राधे राधे कह रहे हैं भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इंटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से। पुष्पांजलि अच्छा लगा और सदाबहार भी अच्छा लगा, आपने मेल किया ये हमें अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
2: वाह, इसी के साथ भाई गर्मा गर्म सा मेल आया है।
1: क्या बात है,
2: गीता सेठ जी का, कह रही है हमारी तरफ से आपके लिए चाय। चाय की फोटो भी नहीं भेजी, चलिए कोई बात नहीं, चाय तो नहीं आई, फोटो भी नहीं आई। और कहा है जो हमारे महानुभाव आरजे यानी मैं आने वाली थी शायद तब के लिए लिखा था, थैंक यू सो मच।
1: अच्छा ओके। और मोनू सेठ जी ने आई थिंक मुद्दे से जुड़ा हुआ कुछ कुछ मेल लिखा है। लिखते हैं कि आयुषी जी, विनय भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज से 30 दिन पहले वादा कर लिया था कि मोबाइल को 12 घंटे अपने आप से दूर रखूँगा और वो मैंने कर भी लिया। बाकी 12 घंटे में मेल और ऑनलाइन कार्य भी हो जाता है, वैसे अच्छी पहल है, क्यों?
2: वाह बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। भाई देखिए हमने बात की, शिकायत की, तो सुन ली किसी ने। नमित मिश्रा जी ने करणपुर विलेज डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, नमित और नमिता मिश्रा आप हमें, इन्हें हम दोनों की वॉइस अच्छी लग रही है और शायद आपको ये पहले सुन भी रहे थे। और देखिए चाय पकौड़े की फोटो भी भेजी है और लिखा है पकौड़े विद चाय, और बारिश ने अटेंडेंस लगाई है, सुबह से हो रही है, ये खुश है।
1: क्या बात है, और वैसे ये देखकर और ज़्यादा भूख लगने लगी। और सुधांशु जी का टॉपिक पर मेल है और इन्हें सुविचार अच्छा लगा, और ये हमें टॉपिक पर कह रहे हैं कि एक दिन के लिए सोशल मीडिया चला गया तो मैं अपने दोस्तों से मस्ती मजाक नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की मैं ईमेल नहीं भेज पाऊँगा। अरे ये हाँ थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन मेल आप हमें लेटर भेजिएगा तब।
2: चलिए इसी के साथ जसप्रीत विश्वकर्मा जी का मेल आया है और उन्होंने हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहा है। पलिया कला खीरी से मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा लोगों की क्रिएटिविटी और उनके अनोखे अनुभवों को मिस करूंगी। और लिखा है अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ना और दुनिया भर के नए विचारों को तुरंत देख पाना वाकई कमाल का पहलू है। दिलचस्प बात यह होगी कि सोशल मीडिया बंद होने से दुनिया की रफ्तार अचानक धीमी हो जाएगी। लोग रील स्क्रॉल करने के बजाय एक दूसरे को सीधे फोन करेंगे जिससे टेलीकॉम नेटवर्क पर लोड बढ़ सकता है, और हर छोटी बड़ी बात तुरंत शेयर करने की आदत थम जाएगी जिससे लोग अनजाने में ही सही फोमो यानी छूट जाने के डर से निकलकर पूरी तरह अपने आप में जीने लगेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर फोन आप बस एक दिन के लिए फोन दूर रखिए तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जब हमारे हाथों में फोन होता है और हम हमेशा देखते हैं अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे इसने ये मैसेज कर दिया, इसने ये नहीं किया, तो फोन दूर रहने से आप आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे मेरे हिसाब से। फिलहाल

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: आठ बजकर 54 मिनट और गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है। आपके दो दोस्त हैं आपके साथ विनय और आयुषी।
2: जी हाँ दोस्तों, और आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जिसे बताना तो बनता ही है। आज है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। दोस्तों, इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को ये बताना है कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में पार्लियामेंट यानी हमारी संसद का क्या महत्व है। 30 जून 1889 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की स्थापना हुई। ये दुनिया का सबसे पुराना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों की संसदों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है।
1: अब देखिए, इसी ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने साल 2018

0: अस्तित्व है। 30 जून 1889 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की स्थापना हुई। ये दुनिया का सबसे पुराना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों की संसदों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है।
1: अब देखिए, इसी ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने साल 2018 में 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस अवसर पर दुनिया भर में डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, महिलाओं और यूथ की राजनीतिक भागीदारी और बेहतर कानून बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाई एक मजबूत संसद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल, तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, है ना, और चौथा पिलर है मीडिया, और हम कहीं ना कहीं मीडिया का एक पार्ट है। तो अपनी मजबूती को तय हमेशा करिए, जब भी मौका मिले जरूर अपना ये जो कर्तव्य है निभाइए। फिलहाल हमारा एक कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ते रहें। 8:56 हुए हैं और अब वक्त क्या कह रहा है उषी?
1: कह रहा है कि भाई फर्स्ट हाफ को वाइंड अप करें ताकि जल्दी से उस पार सेकंड वाइंड अप में भी, सेकंड हाफ में भी मिले।
0: बिल्कुल, तो अखबारों की सुर्खियों के बाद हाजिर होंगे एक बार फिर से लेकर गुड मॉर्निंग लखनऊ।

जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय से पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने की खबर को अखबारों ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अमर उजाला ने लिखा है, चंपत राय से सोमवार को पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। मंदिर प्रबंधन, भर्ती प्रक्रिया, चढ़ावे के संग्रह समेत अन्य कई सवाल किए। वहीं अनिल मिश्र और गोपाल राव को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। नवभारत टाइम्स ने बताया कि इस मामले में चंपत राय के साथ ही सदस्य कृष्ण मोहन के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 6 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से जुड़े अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। इस संबंध में बार की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अमृत विचार और दैनिक जागरण ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा है कि ये मामला ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में सुधार करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत दिए जाने की खबर को दैनिक जागरण ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार ने लिखा है कि पहली बार होने वाली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर कारोबारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ईमानदार कारोबारियों को राहत देना और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करना है। पीलीभीत और मुरादाबाद में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने जनसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के समय भी कांग्रेस और सपा पहला हक मुसलमानों को देना चाहती थी, उन्हें विस्थापित हिंदुओं की कभी कोई चिंता नहीं हुई। जुलाई में बिजली उपभोक्ताओं को 4.43% कम बिजली का बिल भुगतान किए जाने की खबर को भी आज अखबारों की सुर्खियों में बनाया गया है। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने लिखा है कि जून में 10% ज़्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई में 4.43% कम बिजली देना होगा। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। सरकारी संस्थाओं में ऑनलाइन रजिस्ट्री का शासनादेश निरस्त होने की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि स्टाम्प विभाग द्वारा 4 जून को ई पंजीकरण मॉड्यूल का शासनादेश जारी किया गया था। इसके बाद 32 जिलों के अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। इसे देखते हुए सरकार ने जियो को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में अगले 2 दिनों में मानसून की एंट्री होने, कश्मीरी पंडित नर सरला भट्ट के अप्रैल 1990 में अपहरण व हत्या के मामले में JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को मुख्य आरोपी बनाए जाने, पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सोमवार को अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी के प्रथम पूजा किए जाने की खबर को भी आज अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है

0: के भोपाल।
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: नौ बज के पांच मिनट हो रहे हैं और आपके तो दोस्त वादे के मुताबिक आ गए हैं सेकेंड हाफ ऑफ गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। विनय और आयुषी आपके साथ 100.7 एफएम पर।
3: सो स्टे कनेक्टेड विद अस।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।

0: 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और आप जानते हैं कि हर रोज हम लेते हैं ट्रैफिक अपडेट विकास सर से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और बताते हैं क्या है हालचाल। तो आज भी हमारे साथ हैं सर। सर गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज सर वर्तमान में लखनऊ शहर में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं पर कोई अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। चूंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे में बारिश की संभावना है, और बारिश के दौरान क्या होता है कि सड़कों पर कई जगह जल भराव हो जाता है, और जल भराव होने के कारण जो है थोड़ा सा हमारा, जैसे शहीद पथ एरिया की अगर बात करें तो इकाना अंडरपास के पास में और प्लासियो माल और लुलू माल के पास में थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर रहता है। और अगर रायबरेली और उतरेठिया मार्ग की बात करें, रायबरेली मार्ग की बात करें तो उतरेठिया के पास में थोड़ा सा रहता है। तो और बारिश के समय में क्या होता है कि जो बाइकर्स होते हैं, बाइक वाले हमारे साथी, वो जो है अपने वाहन को खड़ा करके जो ब्रिज होता है उसके आसपास जो है अपने बाइकों को लगा देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया जो है बारिश के मौसम में यदि बारिश हो रही है तो रास्ते को अवश्य छोड़ दें, ओवरब्रिज के नीचे अपनी बाइकों को इस तरह से ना लगाएं जिससे कि आने जाने में असुविधा हो। दूसरी तरफ अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में अगर पानी भरा हुआ है तो कृपया उसे अवॉइड करें, उसके ऊपर से ना ले जाए कि हो सकता है बारिश की वजह से गड्ढा हो गया हो और इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इन हिदायतों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और सुगमता से आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो यही अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, थैंक यू सो मच
1: जी, धन्यवाद।
2: और देखिए आप सब भी अगर अपने अपने गंतव्य यानी अपने अपने ऑफिस, अपने अपने स्कूल, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल चुके हैं तो बस ये थोड़ी सी ट्रैफिक की जो जानकारी और थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत हेल्प करेगी।
0: और अभी एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इतिहास के पन्नों में आज का दिन।
4: 2 इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्या है वो हम बताने जा रहे हैं।
5: तो भाई मैं ये बात कह रही थी पहले इसके कि हम बताएं, बस ये जानना चाहती थी कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर आते थे कि नहीं, ये बताइए।
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि रटना थोड़ा मुश्किल है।
5: लेकिन मुझे लगता है कि जब हम समझते हैं कि हुआ क्या क्या अचीवमेंट्स है तो वो दिल में कुछ बातें जहन में बस जाती हैं, स्पेशली अगर वो अपने भारत के बारे में हो, अपने देश के बारे में हो।
4: बिल्कुल, ऐसे कुछ चीजें याद है लेकिन ज्यादातर ऊपर से निकल जाते थे।
5: कोई बात नहीं, हम रिविजन कराते हैं। चलिए आज की बात बताते हैं। सबसे पहले कि 1855 में संथल रिबेलियन की शुरुआत हुई थी और सिद्धू और कान्हू मुर्मू की अगुवाई में

0: शुरू हुआ ये विद्रोह ब्रिटिश शासन जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ था। इसे हूल दिवस के नाम से याद किया जाता है।
1: और दोस्तों आज ही के दिन 1937 को यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया की पहली इमरजेंसी टेलीफोन सर्विस 999 शुरू की थी। इस नंबर पर कॉल करके लोग पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज से तुरंत मदद ले सकते हैं। और इसमें बताते चले कि हमारे यहाँ 112 है इमरजेंसी नंबर।
0: भाई इसी के साथ 1960 में चलते हैं, क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो को बेल्जियम से आजादी मिली थी और करीब 75 साल तक बेल्जियम के शासन में रहने के बाद कॉन्गो एक स्वतंत्र देश बना था।
1: साथ ही साथ 1971 की बात करें तो सुयूज 11 मिशन के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर लौटते समय कैप्सूल का प्रेशर कम हो जाने से दुर्घटना हुई, उनकी मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष इतिहास में ये सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है।
0: और इसी के साथ याद करें 1903 में फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की शूटिंग शुरू हुई थी और इसे सिनेमा की शुरुआती नैरेटिव फिल्म्स पे गिना जाता है। और इस फिल्म ने पर्दे पर कहानी दिखाने के तरीके को पूरी तरह से एक नई दिशा दे दी थी।
1: तो इन कुछ घटनाओं के साथ ही साथ हम आगे बढ़ चलते हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ विनय और आयुषी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर, और हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जो कि DIG हैं फायर सर्विसेज के। सर, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: वेरी गुड मॉर्निंग FM रेनबो।
1: तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम तौर पर घरों में आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, और एक आम नागरिक अपने घर को पूरी तरह से फायर सेफ कैसे बना सकता है?
2: शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण उभर कर आया है। इसके लिए उपयुक्त तरीके के बिजली के तार लगाएं और उसके जितने भी उपकरण है वो ISI प्रमाणित लगाएं।
3: जी,
2: किसी भी एक पॉकेट पर ज्यादा लोड ना रहे, AC को बराबर चेक कराते रहें, ताकि कोई इस तरह के जो है वो आग न लगे। दूसरा कारण है रसोई गैस। रसोई गैस में रेगुलेटर या पाइप का पुराना होना, खराब होना, कटा होना, ये एक कारण है। रात में हमेशा बंद करके रेगुलेटर को, और ऊपर से भी बंद करके गैस को, और नीचे से जहां पर उसका सिलेंडर है वहां से बंद करके फिर तभी सोएं। इसके अलावा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल, पेंट, सैनिटाइजर, परफ्यूम, पटाखे आदि का गलत भंडारण, सिगरेट, बीड़ी, ओवर हीटिंग के कारण जो भी बिजली के उपकरण है वो चलते हैं, इन सब में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, तो इससे बचा जा सकता है।
1: जी
3: जी सर। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर घर या किचन में कहीं भी आग लग जाए तो सबसे पहला कदम यानी फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर घबरा जाते, पैनिक कर जाते, ऐसे में खुद को शांत करके क्या कदम ले?
2: अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल है तो, और आपके पास पर्याप्त हिम्मत है, आप शांति से अपना काम करें, अगर आप उसको हिम्मत से चला सकते हैं तो आप तत्काल कोशिश करें कि उसको चलाएं। अगर कोई और है उसकी मदद मांगे और तुरंत फायर सर्विस को सूचना दें। अगर आप चलाने की स्थिति में नहीं है या आपके पास एक्सटिंग्विशर नहीं है तो तुरंत बाहर निकल जाएं, तुरंत बाहर निकल जाएं और मदद के लिए गुहार करें और फायर सर्विस को 101 पर या 112 पर कॉल करें, अथवा जो भी आपके पास नंबर उपलब्ध हो उन पर कॉल करें।
1: सर, अभी आपने फायर एक्सटिंग्विशर की बात की है, तो सर अगर इसको चलाने की ट्रेनिंग लेनी है तो वो कैसे ले और कहां से ले सकते हैं?
2: फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल चलाना बहुत आसान है, उस पर लिखा भी होता है इसको कैसे चलाना है।

0: दुकान जहाँ से आप खरीदेंगे वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नजदीकी फायर स्टेशन से संपर्क करें तो वो भी आपको चलाने की जानकारी देंगे। इस तरह के मॉक ड्रिल भी बीच बीच में आयोजित किए जाते हैं।
1: सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि अगर घर में फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम ये भी कर सकते हैं, तो क्या हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है?
0: अगर रखें तो सेफ है, लेकिन इसका एकदम हम नहीं कहेंगे। अगर आप बाकी सावधानियां बरतते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप नहीं भी रखते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना एक एक्स्ट्रा सावधानी है।
1: जी
2: सर, अगला सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी बहुमंजिला इमारत में या मॉल में आग लग जाए और चारों तरफ धुआं फैल जाए तो सुरक्षित बाहर निकलने का क्या सही तरीका होगा? सर,
0: इसमें अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले या तो नीचे या ऊपर, जिधर से भी आपको आइडिया है, अगर आपके नीचे भी आग है तो आप ऊपर को की तरफ निकलें, और सबसे सेफ होगा कि आप छत पर निकल जाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको नीचे निकलना ही, या बालकनी में थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हैं। बालकनी को भी एक सेफ एक एग्रीगेशन पॉइंट माना जाता है, लेकिन वो भी लंबे समय तक काम नहीं करता है। वॉशरूम में भी आप जा सकते हैं, या ऐसी जगह पर जहां पर आग नहीं है, लेकिन उसमें फिर धुआं किसी तरह से न जाए, उसको अंदर से इस तरह से बंद करें, खास करके गीले कपड़े से, कि जिससे उसमें धुआं बिल्कुल न जाए, और अपनी लोकेशन बताते हुए तुरंत मदद मांगे वहां पर, क्योंकि धुआं के कारण ही मैक्सिमम एस्फिक्सिया से ही डेथ होती है।
1: जी। सर, एक और बात जानना चाहेंगे कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अक्सर कहीं आग लग जाती है तो लोग पहले खुद उसको बुझाने का प्रयास करते हैं और उसमें वक्त काफी गवा देते हैं, तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को देर से सूचना मिलती है, सही समय पर कॉल करना क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या व्यवस्था है?
0: आपको तुरंत कॉल करना चाहिए, स्वयं बुझाने का प्रयास आपको अधिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत छोटी आग है, आप थोड़ा सा आप जल्दी बुझा सकते हैं, या दो तीन लोग हैं तो एक दो लोग बुझाने में लग गए और बाकी किसी ने कॉल कर दिया। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि आप पहले कॉल करें, उसके बाद बुझाने का प्रयास करें।
1: जी
2: सर, आजकल गर्मियों के मौसम में देखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट बहुत हो रहा है और एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसे हादसे से बचने के लिए जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उसके बारे में प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: एसी की सर्विस आप लगातार कराते रहें, उसमें जो भी आप बिजली के उपकरण लगाते हैं वो ISI प्रमाणित हो, आप उसको कम डिग्री पर न चलाएं, 18 डिग्री पर लोग चलाते हैं, उसको ज्यादा डिग्री पर चलाएं। इसके अलावा उसको रेस्ट भी जरूर दें, लगातार चलाने से बिजली का कोई भी उपकरण गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये चांसेस रहते हैं कि उसमें आग लग जाए। इसके अलावा जितना लोड आपका है, जितने लोड के आपके उपकरण हैं, आपको अपने घर में अपने प्रतिष्ठान में बिजली का वही उतने उपकरण लगाना चाहिए जितना आपका लोड है।
1: जी सर। सर, इसी के क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कमर्शियल जगहें जो होती हैं या रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, इसमें फायर NOC के क्या नियम है और एक आम नागरिक कैसे जांच सकता है कि उसकी बिल्डिंग सुरक्षित है या नहीं?
0: ये दो प्रश्न आपने किए, नंबर एक NOC से संबंधित, दूसरा सुरक्षा से संबंधित।
2: जी,
0: NOC का के नियम एक शब्द में या 5 मिनट के इंटरव्यू में बताना मुश्किल है, फिर भी हम आपको बता दें, जो हजार्डस बिल्डिंग है, जो मेडिकल के हॉस्पिटल है, जो होटल है, उनके लिए 500 वर्ग मीटर अथवा 9 मीटर की ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर का उसका क्षेत्रफल, इसमें NOC की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें 15 मीटर की ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, इसमें मोटा मोटा तौर पर NOC की आवश्यकता होती है। बाकी बिल्डिंग में NOC की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी अगर कोई NOC के लिए अप्लाई करता है तो उसको चेक करके अगर उसके अग्निशमन संयंत्र सभी ठीक से लगे हुए हैं तो उनको NOC जारी की जाती है।
1: जी सर।
2: सर, एक और सवाल
0: के संबंध में। सुरक्षा के संबंध में मैं ये बताऊंगा, अगर किसी को डाउट है तो नजदीकी फायर स्टेशन में जाकर के और वो बताएं कि हमारे इसमें NOC है या नहीं है, तो वो बता देंगे NOC आपकी जारी है तो नहीं जारी है। जिन्होंने सुनी NOC जारी कराई है, मैं वहां के रेजिडेंट से बताऊंगा,

0: उन्होंने खुद जारी कराए जो मालिक हैं कि वो अपने उपकरणों को बीच बीच में जांच करवाते रहें, उपकरण उनके सही ढंग से काम करते रहें और कोई भी जो एरिया है, खास करके जो आपकी सीढ़ियां है या रिफ्यूज एरिया है, उसमें कोई चीज ना रखें, उसको हमेशा खाली रखें ताकि लोग निकल सके उसमें।
1: जी सर, जी सर। सर, फायर सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही हमारे पास होनी चाहिए, तो क्या आपका विभाग स्कूलों कॉलेजों में यंगस्टर्स को और नागरिकों को इस विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम को चला रहा है या मॉक ड्रिल के लिए अवेयर कर रहा है? सर, मॉक ड्रिल के थ्रू अवेयर कर रहा है?
0: जी बिल्कुल, हम बीच बीच में ये कार्यक्रम चलाते रहते हैं जिसमें हम स्कूलों में जा करके उनकी चेक करते हैं, वहां पर मॉक ड्रिल करते हैं और बच्चों को विशेष करके या ऐसी बिल्डिंग जहां पर कई काफी लोग रहते हैं वहां जा करके उनकी रेजिडेंस को इकट्ठा करके और उनको फायर सेफ्टी के बारे में बताते हैं। ये रेगुलर होता है, लेकिन जितने बताने वाले लोग हैं और जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ये सब तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि स्वयं जागरूक कर रहे। आजकल गूगल पर हर चीज उपलब्ध है, फिर भी अगर कोई ग्रुप फायर स्टेशन से संपर्क करता है और कहता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, कोई स्कूल ऐसा करता है, तो जरूर जा करके वो लोग बताएंगे। हमारी ये ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहती है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां दी।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रेनबो। थैंक यू।
2: थैंक यू सर। तो अभी आप सुन रहे थे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी को, DIG फायर सर्विस से बात हो रही थी और उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पे हमें रोशनी डाली कि हम किस तरह से अपने घर में कुछ थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरते हैं तो हम बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो इन सभी बातों का को आप ध्यान रखेंगे और अगर उन्हें अपनाएंगे तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज विनय और आयुषी के साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: और जिनके लिए ये गाना बज रहा है उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे उनको बहुत बहुत बधाई।
1: बिल्कुल, और भाई जिनकी एनिवर्सरी है या फिर कोई उपलब्धि है उनको भी बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन।
0: बिल्कुल, तो बड़े सारे साथी खुश हो गए होंगे। मंगलवार का दिन है और अब तो ये महीना खत्म होने वाला है, जुलाई आ रही है।
1: हाँ, तो जुलाई में नए सेट ऑफ बर्थडेज आएंगे।
0: बिल्कुल,
1: नए नए गिफ्ट्स, नई नई जिम्मेदारियां, भूल गए तो बहुत दिक्कत।
0: आपने कभी सुना है ना जुलाई में बहुत ज्यादा बर्थडे, जुलाई अगस्त नवंबर तक बड़े सारे बर्थडे आते हैं।
1: ये आपके दोस्तों का ग्रुप है, मेरे वाले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं। खैर, तो हम बहुत सारी जो बातें करने वाले हैं आज, उसकी शुरुआत ऐसे होगी कि हम भाई जिनका बर्थडे उनको ये बताएंगे कि किन इम्पोर्टेंट शख्सियत के साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे जीवन में आएगी बहुत सारी मोटिवेशन। भाई पहला मैं बताती हूँ आपको कि आज रसायन वैज्ञानिक चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म है, जिनका जन्म 1934 में आज ही मैसूर के बैंगलोर में हुआ था। और इस वक्त ये, उस वक्त का ये मैसूर साम्राज्य था। तो उन्होंने बेचू और अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ली थी और उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र लिखे और ये जो वैज्ञानिक दुनिया है इस जगत में उन्होंने अपना बहुत नाम रोशन किया।
0: और दोस्तों इसी के साथ ही साथ 1934 को जन्म हुआ था एक महान वैज्ञानिक का, और ये है सी एन आर राव साहब, और इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ भाई हम ये भी बता दें, जब आप इनकी बात बता रहे हैं मैं जानती हूँ आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी बताना है कि उन्हें भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। मतलब जब हम कह रहे हैं कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, मतलब वाकई रोशन किया पूरी दुनिया में।
0: क्या बात है। और साथ ही साथ आज ही के दिन जन्म हुआ था 1911 को बाबा नागार्जुन जी की, ये आधुनिक हिंदी और मैथिली साहित्य के जाने माने कवि और लेखक बाबा नागार्जुन, जो बहुत ही बड़ा नाम है, बिहार के दरभंगा ज़िले के तरौनी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था।
1: बिल्कुल, और भाई इसी के साथ हम ये भी बता दें कि आज हम मना रहे हैं जन्मदिन सैयद अख्तर मिर्जा जी का, 1943 में इनका जन्म हुआ। और आप जानते हैं इन्हें भारतीय सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इन्होंने इसे एक नई और संजीदा दिशा दी। और कहते हैं ना कि एक पैरेलल सिनेमा या समानांतर सिनेमा के बारे में अगर आपने सुना हो, जहां पर हम थोड़ा सच्चाई पे बात करते हैं, थोड़ा सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, और इनकी कुछ फिल्में बहुत यथार्थवादी रही हैं, बहुत चर्चित रही हैं, और इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
0: और इसके बाद बात करते हैं माइक टाइसन की। हम सभी जानते हैं

0: इनका नाम 1966 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ये वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं और न्यूयॉर्क में जन्मे माइक टायसन बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। और आपको बताते चले कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है।
1: बिल्कुल, इन्हें आयरन माइक के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। वैसे बहुत सफल एथलीट है। और अगर एथलीट्स की बात करें, हम खेल की दुनिया की बात करें, तो हम माइकल फेल्प्स का भी नाम लेंगे। 1985 में जन्म हुआ, बेहतरीन स्विमर है माइकल फेल्प्स। और आप जानेंगे तो आपको बहुत हैरत होगी कि उनके नाम ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड है। और पानी के अंदर भाई अपनी शानदार स्पीड के लिए इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है।
0: आप कभी इन्हें देखिए तो वाकई जब ये पानी में होते हैं तो इनकी रफ्तार और इनका स्टाइल एकदम अलग है।
1: और भाई इसी के साथ, बिल्कुल सही बात है, इसी के साथ हम बता दें कि टेलीविजन दुनिया की एक स्वीट हार्ट यानी अविका गौड़ का भी बर्थडे आज ही है। आप उन्हें बालिका वधू में आनंदी के नाम से जानते हैं।
0: तो इन सभी के साथ अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आइए हम भी सेलिब्रेशन करते हैं इस गाने के साथ। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: की रुकावट महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
5: धड़कन लखनऊ की.
6: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर.
7: विनय और आयुषी आपके साथ और बातों का सिलसिला जारी. और बातें तो तभी पूरी होती है ना जब कुछ हम कहें, कुछ आप कहें, कुछ आपकी सुने. तो हमने दिया था एक मुद्दा, अगर किसी ने अभी ट्यून इन किया है तो हम दोबारा से फटाफट बता देते हैं कि मुद्दा ये था कि अगर सोशल मीडिया गायब हो जाए तो आप क्या मिस करेंगे. और पहला मेल जो मैं लेने जा रही हूँ वो है गुलफ्सा सिद्दीकी का, जो उन्होंने लिखा है संडीला से. कह रही है मेरे यहाँ बारिश हो रही है. मुद्दे पर कहेंगे कि अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगी, जैसे स्टेटस वगैरह शेयर नहीं कर पाएंगी और ये कह रही है मेल नहीं कर पाएंगी. पर ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अगर बंद हो जाए तो मेल एज सच सोशल मीडिया के अलावा भी एक अस्तित्व रखता है.
6: बिल्कुल. और सुनील प्रांजल जी ने हमें मेल किया विकास नगर लखनऊ से और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, कहते हैं जब किसी चीज़ की कमी महसूस करो तब कमी होती है. कमी सब दिमाग की उपज है, अगर दिमाग में ये शब्द ना आवे तो कोई कमी नहीं. लेकिन हम जितना पाते हैं उतना ही कमी महसूस करते हैं. आप जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ाते जाते हैं कम ही लगता है. और सोशल मीडिया से पेट तो नहीं भरता है, रोटी कपड़ा मकान के अतिरिक्त कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये लिख रहे हैं. थैंक यू सो मच
7: भाई. इसी के साथ मैं ले लेती हूँ मोहम्मद फरमान का मेल. ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जिला मुरादाबाद से लिखा है और नाम लिया है फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून.
6: तो और जी
7: मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा, पर अगला मेल देख लेते हैं.
6: अरुण कुमार ने हमें मेल किया है गुसाईगंज घमोइया से, हरदोई से मेल किया है. विनय जी और आयुषी जी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और पता आपका पढ़ लिया है, इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं. मुद्दे पे कह रहे हैं सोशल मीडिया अगर एकदम बंद हो जाए तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम किसी रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को देकर मजा ले रहे हैं और अचानक हम किसी रेगिस्तान में आकर गिर गए हैं. अरे वाह.
7: बिल्कुल. इसी के साथ जाकर का मेल ले लेते हैं और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है. और मंसूरी से कुछ लिखा है मजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा.
6: साथ ही साथ सोनू परवाना ने हमें मेल किया है इंटरनेट के बिना जीवन यापन संभव नहीं है लेकिन जीवन शैली में व्यापक बदलाव के बिना नहीं. चूंकि हम अब 2026 में हैं, हम इंटरनेट के बिना पूरी तरह से नहीं रह सकते. इंटरनेट का अचानक बंद होना गंभीर परिणाम देगा और किसी न किसी रूप में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो ये सब बातें ये लिख रहे हैं. थैंक यू सोनू जी.
7: देखिए वारिस अली खान जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया बंद हो जाता है तो लोग अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे, अपनी दुकानों का प्रचार नहीं कर पाएंगे और हम जो रिश्तेदार मित्र दूर हैं उनसे संपर्क नहीं रख पाएंगे और मनोरंजन नहीं होगा.
6: साथ ही साथ फरहान अंसारी ने गुड मॉर्निंग कहा है और कहते हैं कि इन्होंने लखीमपुर खीरी से लिखा है प्रोग्राम में सॉन्ग अच्छे प्ले हो रहे हैं और हमारे यहाँ बारिश हो रही है. इन्होंने आई थिंक मेल पे कुछ नहीं लिखा, पर मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे मुद्दे पे नहीं लिखा इन्होंने.
7: महेंद्र दीपन जी ने भी प्यारा सा मेल लिखा है रूड़गांव से, नागौर राजस्थान से, और कह रहे हैं कि भाई डिजिटल शोर से थोड़ा दूर हो जाएंगे, सुकून की प्यारी नींद में खो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा. लंबा मेल लिखा है लेकिन समय कम है तो हमने क्रक्स बता दिया
6: जी. और वकील अहमद लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया बंद हो गया तो ईमेल रेडियो पर नहीं कर पाऊंगा. अर्ज है कल रात मैंने सारे गम आसमान को सुना दिए, आज मैं चुप हूँ और आसमान बरस रहा है. क्या बात है. थैंक यू सो मच.
7: तालिबंसारी जी ने लिखा है कटरा बाराबंकी से गुड मॉर्निंग लिखा है. चलिए कोई बात नहीं,

0: मान लिया।
1: साथ ही साथ प्रकाश बारगुड़कर जी ने हमें मेल किया है, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राजकमल यादव जी का ग्राम बरैया पोस्ट सूरत गंज बाराबंकी से मेल आया है और वैसे मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा लेकिन सुन रही अच्छा लगा।
1: साथ ही साथ विनीत कुमार ने हमें मेल किया है और हम सबकी हम दोनों की तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कृष्ण कुमार जी ने भी लिखा है हमें, कहाँ कृष्णानगर गोमती नगर से, और वैसे उन्हें गाना अच्छा लगा, सारा प्रोग्राम अच्छा लगा, और ये वैसे ये बात कह रहे हैं कि एक कमरे में बैठकर लोगों से

0: बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कृष्ण कुमार जी ने भी लिखा है हमें, कहा कृष्णानगर गोमती नगर से, और वैसे उन्हें गाना अच्छा लगा, सारा प्रोग्राम अच्छा लगा, और ये वैसे ये बात कह रहे हैं कि एक कमरे में बैठकर लोगों से बातें नहीं हो पाती सोशल मीडिया के जरिए, तो शायद होने लगे।
1: ब्रजेश सिंह दीपू इटहवा कैसरगंज बहराइच से मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहा है, और इन्हें हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इसीलिए सुधांशु जी भी सुन रहे हैं पोस्ट महोना थाना इटौंजा बक्षिका तालाब से, और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है।
1: राममोहन गुप्त ने जी ने कुछ कविताएं लिखी, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, हम बस दो पंक्ति दो लाइन पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया अगर हो जाएगा बंद होगी बड़ी मुश्किल, जी सकेंगे ना हम। लेकिन लंबी कविता है, समय की कमी के कारण हम पूरी नहीं पढ़ रहे, पर राम मोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इसी के साथ मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
1: जावेद पटेल जी ने हमें महाराष्ट्र से मेल किया है, और सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो टाइम बचेगा ऐसा इन्होंने लिखा है।
0: भाई बहुत सारे हमारे पास मेल्स आए, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला आप जो आप ये बातचीत करने का सिलसिला है ये खत्म होता है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या होता है ना, एक कार्यक्रम खत्म होता है तभी तो फट से दूसरा शुरू हो पाता है और वो नए रंग लेकर आता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, 9:57 हुए हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ से इजाजत दीजिए हम दोनों को, फिलहाल आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, किसी और आपसे फिर से मुलाकात होगी, आयुषी आपके साथ रहेंगी, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, बस इस ब्रेक के बाद।

विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के आज सुबह राम मंदिर दर्शन के मद्देनजर अयोध्या शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर में कथित तौर पर धन के गबन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा शामिल है। दूसरी ओर जिला न्यायालय ने कल चंदे के गबन के मामले में सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वे जेल में ही रहेंगे क्योंकि पुलिस ने हिरासत में लेने की अर्जी नहीं दी थी। प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के समय में संशोधन किया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अब कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जाने का आदेश जारी किया है। वहीं पीलीभीत से भी छात्रों के लिए स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा,
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: दस बज के 5 मिनट हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स अब चलेगा ये सिलसिला आपके साथ, मतलब आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और ये तो भाई हमारी प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग है, जहां हम पुराने पुराने गाने थोड़े से जो जिन पे हल्की सी धूल लग जाती है ना, उनको निकालते हैं कि कहीं हमारी मेमोरी में वो कहीं रच बस गए हों, हल्के से धूमिल पड़ गए हों, तो धूल साफ की जाए, उन्हें याद किया जाए, क्योंकि जहन में तो वो हमेशा ही जिंदा रहते हैं ना।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आयुष के साथ सफर जारी है, सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप 100.7 FM पर। और ये जो सफर है ना, मन कर रहा है खत्म ही ना हो, जाने कहाँ खो गया है।

10 बज के 53 मिनट और सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला जारी है आपके साथ। मैं हूँ आयुषी और भाई देखिए कोई भी कार्यक्रम जब अपने खत्म होने वाला होता है, वाइंड अप की ओर बढ़ रहा होता है तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये वाला कार्यक्रम जल्दी से खत्म हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यही है ना कि वैरायटी ही वैरायटी है आपके पास और ये खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा और देखिए ना कैसे समय बीता जा रहा है। सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी लेगी इजाजत ताकि आपका फेवरेट कार्यक्रम संदेश आपका गीत हमारे लेकर उस पार पहुंचूं और आपसे और भी सारी बातें करूं, गाने सुनाऊं और आपके प्यारे प्यारे संदेश पढ़ूं। तो फिलहाल इस ट्रैक के साथ मैं आयुषी आपको छोड़ती हूं ताकि आप मजा ले सके इस ट्रैक का।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। फिरोजाबाद जिले के फरेहा थाना क्षेत्र के चिडराई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अवागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरेहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। हमीरपुर में बीती रात से रुक रुक कर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री

बद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। मेरठ के थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सोनू की साइबर फ्रॉड से अर्जित करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि ग्राम पहाड़पुर थाना मवाना मेरठ निवासी सोनू पर साइबर फ्रॉड सहित विभिन्न धाराओं में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। सोनू ने आम जनता के साथ साइबर फ्रॉड कर अवैध रूप से धन अर्जित कर चल अचल संपत्ति बनाई थी। श्रावस्ती के आशुतोष त्रिपाठी सत्यम ने 9वीं एशिया कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गोवा के मापुसा स्थित पेडम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए आशुतोष ने सीनियर पुरुष अंडर 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आज के 3 मिनट और वादे के मुताबिक मैं आपकी दोस्त आयुषी लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट वाला कार्यक्रम। वैसे तो आपको सारे ही कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चलिए हम ये वापस से बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बातचीत भी हो जाती है, मेल्स भी हो जाते हैं, तो एक अलग फ्लेवर आ जाता है और हर कार्यक्रम का अपना एक अलग फ्लेवर है। पर संदेश आपके गीत हमारे शुरू हो गया 11 बजे, तो अभी हम इसकी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी सुनेंगे, अपनी कहेंगे, आपके संदेश पढ़ेंगे और आप हमें लिख भी सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com, तो आपको मालूम ही है। तो और देखिए फोन लाइंस तो अभी से बज रही हैं, तो क्यों ना तुरंत शुरू किया जाए सिलसिला इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: के 8 मिनट हो रहे हैं और मैं आयुषी आपके साथ हूँ। संदेश आपके गीत हमारे चल रहा है, यानी संदेश आपके होते हैं और गीत हम प्यारे प्यारे बजाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, वैसे भी ले लेते हैं। आपकी पसंद के गाने बजाना हमारा फर्ज है और हमें पसंद भी है, पर फिलहाल देखते हैं प्यारा सा संदेश लेकर हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ चुके हैं क्या। हेलो,
4: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
3: गुड मॉर्निंग, कैसे बात हो रही है?
4: जी गुलफा सिद्दीकी से बात हो रही है आज।
3: गुलफा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
4: जी हम संडीला से बोल रहे हैं और आज मैंने बहुत दिनों के बाद कॉल की है।
3: ऐसा क्यों?
4: जी मैम तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी तो इसलिए मेल भी नहीं किया, कॉल भी नहीं किया।
3: चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए।
4: जी हम माशाल्लाह अच्छे हैं।
3: चलिए ये अच्छी बात है। और ये बताइए, इतनी अच्छी बात की तो फिर संदेश भी प्यारा सा दे दीजिए।
4: जी संदेश यही है, आज बारिश हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो अपने बच्चों का और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बारिश थोड़ी सी होती है बच्चे नहाने लगते हैं, लेकिन अभी नहाना ठीक नहीं है बारिश में।
3: ये तो आपने बहुत जरूरी बात की कि पहली बारिश और कुछ जो शुरुआती बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए।
4: जी जी मैम, तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही खराब चल रही है सबकी।
3: चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।
4: बच्चे नहीं मानते हैं मैम, कुछ नाम ले लें।
3: हाँ हाँ बिल्कुल
4: जी, समा परवीन है, साहिब अंसारी है, साजिया अंसारी है, रोशनी रावत है, बबीता राव है, दिली शर्मा है, तो सभी लोग सुना। मैम समा परवीन से और साहिब अंसारी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कॉल करती हैं तो आप लोग मेल भी किया करिए।
3: ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुलफा
4: जी। मैम थैंक यू।
3: तो देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें अभी से आने लगे हैं, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सारी बातें जितनी भी है ये पता ना हो। पता है, पर भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में निरंतर चलती रहती हैं, काम चलता रहता है, और ऐसे में हम अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। और स्टूडेंट्स इस बात से बहुत इत्तेफाक रखेंगे मेरी जब मैं कह रही हूँ कि रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं ना तो रिविजन हो जाता है, तो बारिश में नहीं भीगिएगा क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में है। फिलहाल भाई बहुत प्यारे प्यारे मेल्स भी आने शुरू हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्यारे प्यारे मेल्स हैं इनकी भी शुरुआत कर दी जाए। एक मेल ले रही हूँ मैं सुनील कुमार जी का। सुनील कुमार क्या कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं? गोकुलपुर, लहरपुर, सीतापुर से। और बस उन्होंने यही कहा कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। चलिए यही संदेश है, कह रहे हैं रेडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो बिल्कुल ये बात तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। झगराम साहू जी कह रहे हैं नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नाम लिया है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और कोई बात नहीं, हम झगराम साहू जी से कहेंगे कि अगर अगली बार आप मेल करें तो हम जरूर आपके विचार जानना चाहेंगे, हम आपसे आपके संदेश जानना चाहेंगे। फिलहाल 11:11 हो रहा है और आपके दिल में कोई प्यारी सी दबी हुई इच्छा अरमान है जिसे आप चाहते हैं कि वो सच हो जाए, तो यही वक्त है मांग लेने का। 11:11 बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। अब ये आप कह सकते हैं कि दिल को बहलाने वाली बातें हैं, पर क्या बुरा है दिल को बहलाने वाली बातों से भी, है ना। फिलहाल दिल

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ग्यारह बज के 16 मिनट और आयुषी के साथ 100.7 FM पर संदेश आपके गीत हमारे, और देखते हैं हमारे साथ संदेश लेकर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो
2: हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है?
2: जॉली बोल रहा हूँ, ओमनगर आलमबाग से।
1: अरे जॉली जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है साहब।
1: तो ये बताइए कि कोई जॉली जॉली सा मैसेज लाए हैं कि कैसा लाए आप?
2: नहीं, जॉली जॉली का तो नहीं है, लेकिन एक हिदायत वाला।

0: एक संदेश है कि आजकल गर्मी की वजह से
1: जी
0: शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि हम सही एम्पियर का प्लग या वायर का उपयोग नहीं करते और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें वायर और प्लग जो है, या फ्रिज का हो या मोटर का हो पानी की, तो वो सही एम्पियर के लगाने चाहिए ताकि प्लग हीट ना हो।
1: जी जरूर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अब बताइए, ये जॉली जॉली हुआ ना मैसेज? ये जॉली इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ का ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो जॉली जॉली रहेंगे, वरना परेशान रहेंगे।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: तो थैंक यू सो मच, आपने हमें फोन किया और हमें प्यारा सा मैसेज दिया।
0: थैंक यू।
1: भाई देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जिस एंथुजियाज्म से आप नए नए मैसेजेस लेकर आते हैं, नए नए आप तरीके लेके आते हैं किस तरह से हम अपने जीवन को और सुचारू और व्यवस्थित और सुरक्षित बना सके, कमेंडेबल है। मतलब मैं उसकी लिटरली तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ये सोचना भी कि क्या टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं इतने दिनों में, और कौन से टॉपिक्स कम कवर है, और कौन से टॉपिक्स आजकल बहुत ज़्यादा नीड में भी है, जिनके बारे में बात होनी ज़रूरी है, आप वो लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं अगला मेल लेती हूँ, वो है प्रवीण हगोने जी का। फिल्म कल अमरावती से लिखा है, महाराष्ट्र से, और नाम लिखा है प्रवीण, और मैंने नाम इंग्लिश में रोमन लैंग्वेज में पढ़ा था, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन इन्होंने हिंदी में भी दिया है, हागौड़े। तो प्रवीण हागौड़े, योगिता हागौड़े, कुमारी प्रियाली हागौड़े, पार्थ हागौड़े और पूरा हागौड़े परिवार, ओके। और आपने हालांकि फिल्म की गाने की फरमाइश की है, पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार अगर आप अपना मैसेज भेजेंगे, अपनी विचार साझा करेंगे, कुछ अपने दिल की बात और अपने मन की वो बात जिससे दुनिया को और हम सबको थोड़ा अच्छी एक हिदायत दे सके, कुछ रिमाइंडर दे सके, कुछ मैसेज दे सके, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम ले रहे हैं अगला मेल, मोहम्मद आसिफ अंसारी का, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, और संदेश है कि नियमित योग करें, केवल योग दिवस पर ना करें, रेगुलर योग करें और सुबह 10 मिनट वॉक जरूर करें, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और नाम लिया है बबीता राव, रोशनी रावत, साहिबा अंसारी, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, यही हो जाता है ना कि हम मदर्स डे सिर्फ साल में एक बार, मदर्स डे बाकी दिन भी तो मदर्स डे, वैसे ही साल में हर दिन योगा दिवस, और योगा से होगा। चलिए इसी के साथ अगला मेल लेते हैं। हम ले रहे हैं भैया मोनू सेठ का मेल, खालिसपुर ऊंचकाव अमेठी से। कह रहे बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा था, खेलते खेलते एक लड़की को लग गई, आंख में लगने से बची, आज तक समझ नहीं पाया कि गुल्ली आंख पर ही क्यों भागती है। स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था, गेंद को थ्रो किया और वो गेंद मैडम जी के सर पर लगी, दोनों जगह पिटाई हुई, स्कूल में मास्टर साहब ने, घर में मम्मी पापा ने, कंचा खेलते थे तो शिकायत मास्टर साहब तक जाती थी, उसके लिए मुर्गा बनाया गया। फिर पागलों पेड़ पर चढ़कर खेलते थे और अचानक पेड़ टूटा और दोस्त का हाथ भी टूटा, उसमें भी खूब बदनामी और पिटाई की नाना जी ने। अब क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, और बच्चों को भी क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते हैं तो आनंद लेते हैं, अच्छा करना चाहता हूँ उल्टा हो जाता है, बारिश की तरह कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। तो मतलब भैया मोनू सेठ ने एक अपने दिल की बातें यहाँ पर उड़ेल दी है, अब इस पर संदेश क्या है वो आप खुद समझदार है समझने के लिए। तो भैया मोनू सेठ, हम संदेश क्या माने, अच्छा करना चाहिए ना, पर चलिए हर बार ऐसा नहीं होता, ये तो बचपन की कुछ खटी मीठी सी प्यारी प्यारी सी बदमाशियाँ हैं, उसकी यादें हैं, लेकिन हम अच्छा करते हैं तो हमारे पास उसका डबल अच्छा लौट कर आता है, इस बात पे पूरा विश्वास है मेरा। चलिए शैलेश कुमार जी का एक मैसेज लेते हैं। इन्होंने लिखा टाइगर पूर्णिमा नितिन भैया, अच्छा इन्होंने इसके अलावा भी कुछ लिखा है, मैं अच्छा इन्होंने बस ये लिखा है कि इनको इनके मन के जितने भी आरजेस हैं उनका कार्यक्रम अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि बार बार उनका कार्यक्रम हो और ये बार बार उन्हें सुनते रहें। ओके, मैसेज टेकन। और अगला मेल हम ले रहे हैं, किसका लिया जाए, वकील अहमद जी का मेल दिख रहा है मुझे। कह रहे आवाज़ अच्छी लग रही है, इस समय बारिश हो रही है, सभी गाड़ी धीमे चलाएं, और पानी भर गया है, गाड़ी फिसल सकती है। और वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी जिला,

नीतापुर, साहिबान, सारी साजियान, सारी शमा, परवीन, रिंकी, पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब का नाम लिया है। ओके, ये प्यारे प्यारे हमने मेल्स अभी इतने ले लिए हैं, और भी मेल्स लेंगे, पर फिलहाल भाई बातें ही करते रह गए और प्यारे प्यारे से गाने ना सुने तो कैसी जिंदगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

11:25 हो रहे हैं और आप सुन रहे संदेश आपके गीत हमारे आयुषी के साथ और देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो, लगता है कि लाइन हो गई कट, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है भाई। देखिए, आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं नेटवर्क खराब इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मौसम भी खराब है, और कभी कभी कोई बात नहीं, हमारा मौका नहीं आया, आ जाएगा, देर है पर अंधेर नहीं इस यूनिवर्स में, कोई बात नहीं। और इसके साथ मैं देखती हूँ कि हमारे पास प्यारे प्यारे मेल्स वेट कर रहे हैं, तो उनको क्यों वेट कराया जाए, जरा पढ़ लिया जाए। नागेश कुमार जी कह रहे हैं, ग्राम व पोस्ट उमरी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से, कह रहे हैं नमस्कार, खिड़की से बाहर देखिए, रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं और बादलों की गर्जना के साथ शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आज का मौसम सुहाना हो गया है और शहर के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो रही है। लगता है नागेश जी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी बारिश हो ही रही है आपके यहाँ, तो आप बनाइए प्यारी सी चाय और उसकी चुस्कियां लीजिए, हम यहाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं। और इसके साथ में अगला मेल पढ़ने जा रही हूँ, रामराज जी का,

करते हैं श्री गणेशाय नमो। संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ी पुर से रामराज राजू भानु रामचरण शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका। सबसे पहले इन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है, नमस्कार भी किया है और बता रहे हैं कि ठंडा मौसम है, बादल छाए हैं, मतलब इतना आप लोगों ने बारिश की गुहार लगा दी है, यहाँ पे एकदम फुहार लगा दी है, मजा सा आ गया है। ऐसे बारिश वाला ही माहौल मुझे स्टूडियो के अंदर भी फील होने लगा है क्योंकि इतने सारे मेल्स में यही सारी बातें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़कर। तालिबान सारी जी क्या कह रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से, और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, और बहुत सारी इमोजीज बनाई है। अब ये कह रहे हैं घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत लाइंस हैं और इसके साथ इन्होंने लिखा है रिमझिम बारिश लाइव, मतलब लाइव टेलीकास्ट कर दिया इन्होंने हमें बता दिया कि वहां पे जहां भी है ये बाराबंकी में या उसके इर्द गिर्द इलाके में, वहां इन्होंने बारिश का खूब मजा लिया है। और हम अगला मेल ले रहे हैं, लिखा है सादर प्रणाम, मैं पिंकी सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से, मेरा संदेश है कि जो लोग बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं वो ऐसा ना करें, और बहन बेटियों से भी निवेदन है कि अपने माता पिता का भरोसा कभी ना तोड़े। और इनके कुछ रेडियो दोस्त हैं जिनका नाम लिया है कुलदीप नारायण जी, आकाश और बहन गुलफसा जी और सभी लिसनर्स, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक मेल में और ले लेती हूँ, क्यों छोड़ू मैं कोई मेल फिलहाल, एक और लिया जा सकता है, अगली बार भी लेंगे, अगले इस गाने के बाद भी लेंगे, लेकिन एक और पढ़ लेते हैं। यह है आंचल से खालिसपुर का, कह रही है स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई तरह के होते हैं जो शारीरिक के साथ मानसिक विकास में भी मदद करते हैं, और लगातार काम और पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है, ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। मतलब समझ रहे हैं आप, अच्छा नाम इन्होंने आंचल अंक के दो और लिखे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, वो कह रही है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी सब काम करते रहोगे खेलोगे नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, सेहत की भी गड़बड़ हो जाएगी, पर अगर आप खेल लेंगे ना तो एकदम वाव फीलिंग आ जाएगी।

0: 11:31 और ये जो म्यूजिक चल रही थी मैं ऐसे डांस करते करते ही आपको बता रही थी उसी मोड में। 11:31 आप तक भी ये डांसिंग एनर्जी पहुंच रही है क्या? वैसे हम ये कह रहे थे कि अक्सर जब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है। हमारे बहुत सारे कॉलर्स निरंतर हमें कॉल करते रहते हैं और मेल्स भेजते रहते हैं। सबसे बात हो पाना एक लक की बात होती है। मुझे लगता है यूनिवर्स में कभी कभी ऐसे जब बात करना लिखा हो तो आपके और हमारे तार ऐसे ही जुड़ जाते हैं जैसे शायद अभी किसी का जुड़ गया होगा। देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो,
1: सलाम वालेकुम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: जी दीदी, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यारा प्यारा नमस्कार और प्यार भरा सलाम
0: जी,
1: प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: आपको
1: मेरा नाम मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: मोहम्मद फैज, ऐसा लग रहा है आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं। आपने इतने बढ़िया से एक एक शब्द को डिस्टिंक्ट कर करके बोला, बड़ा यूनिक सा अंदाज है आपका।
1: जी दीदी, क्योंकि जब एफएम पे ना पूरा इंडिया सुनता है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हर एक लफ्ज।
0: बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी से। मुझे लगता है कि एफएम पे ही नहीं, जिंदगी में भी अपने करीबियों से भी बड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, क्या संदेश लाए ये बताइए।
1: जी दीदी, मेरा संदेश है, उसके कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, पहले संदेश फिर नाम।
1: मेरा संदेश मैम ये है कि जैसे आजकल मैम जमाने में जैसे स्कूल में जैसे टीचर या सर होते हैं तो जैसे लड़के पढ़ जाते हैं, उसके बाद में जैसे टीचर या मैम जी मिलते हैं रास्ते में या इधर उधर तो वो मुंह मतलब लड़के मुंह छुपा लेते हैं, तो ऐसा कृपया न करें, कम से आदर से लिहाज करें उनका, उस्ताद का मतलब आदर से लिहाज करें और हालचाल पूछें, मतलब मुंह ना छुराएं, मेरा ये संदेश रहेगा।
0: अच्छा, आपको क्यों लगता है क्यों करते हैं वो ऐसा?
1: ये पता है मैं तो जो भी हमारे जी जी हाँ, ये जैसे अभी अचानक मिलेंगे मतलब जैसे तो सभी से अगर मुलाकात करें क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हाल चाल पूछेंगे,
0: और अगर कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि हम बता सके तो शायद मुंह चुरा लेते हैं।
1: जी जी,
0: कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अपने जो गुरु होते हैं वो हमें किसी भी हाल में जज नहीं करेंगे, वो हमें नहीं ऐसा फील कराएंगे कि अरे तुम कुछ नहीं कर रहे या तुम्हें इतना नहीं किया उतना नहीं किया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मुंह ना चुराए, मिले।
1: जी जी जी बिल्कुल। और हेलो दीदी।
0: हाँ
1: दीदी, हमारे गाँव का दीदी मौसम बड़ा खुशम है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही।
0: अब भाई आप सबने ना एकदम बारिश वाला माहौल बना दिया है, मैं समझ गई, मेरा चाय पकौड़े का मन कर गया। बट
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, हाँ जी,
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कभी भी हमारे गांव आइएगा, टहल जाइए और कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल।
1: जमील गुंटी वाले और मोहम्मद पेड़ा भाई और मोहम्मद सद्दाम भाई है, आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, जावेद अख्तर भाई है, गुलाब साहब भी है, समा परवीन अप्पा है, साहिबा है, सादिया है, यासिर अमीद है, बाबू अंसारी, वकील अहमद है, तरन्नुम अंसारी है, और एक सूरतगंज के हैं, सूरतगंज के एक भाई है और आलम अंडे वाले हैं। बस
0: ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: और दीदी मैं ये कहना चाहूँगा दीदी जल्दी से जल्द हमारे गाँव आ जाएगा, टहल जाइएगा।
0: जरूर जरूर जरूर,
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग। 11:35 हो रहे हैं, प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं, प्यारे प्यारे हम गाने सुन रहे हैं और बस हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपके एरिया में भी बारिश हो रही है जैसे कि हमें बहुत सारे कॉलर्स बता रहे हैं तो बस अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यही वो मौसम है जहाँ हल्की सी भी असावधानी आपको दे देगी जुकाम बुखार जैसे, और दो चार दिन आपके ऐसे ही बीत जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आप परेशान रहेंगे, हम वो नहीं चाहते। फिलहाल ब्यूटीफुल सा ट्रैक एंजॉय करिए आप।

11:38 और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ कहां 100.7 FM पर और कहां और देखते हैं कि भाई अगला मेल हम किसका ले रहे हैं। आलोक साहू जी क्या कह रहे हैं, कह रहे रायबरेली ऊंचा हार धमधमा से हूँ और पूछ रहे हम कैसे, हम तो बहुत अच्छे हैं, आपका मेल मिला और आप सबसे बात हो रही और भी अच्छे। संदेश है कि अपने बोल से किसी के दिल को चोट ना पहुंच जाए, जो बोले ठीक बोले। और एक ही प्रश्न है कि पूछ रहे हैं कि जब सॉन्ग्स बजते हैं तो आप स्टूडियो में क्या करते हैं। भाई हम आपकी तरह एंजॉय करते हैं और हम बस इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपको कंटिन्यूसली एंजॉय कराते रहें। चलिए फिलहाल नजीम रायन जी का मेल ले रही हूँ, कह रहे दिल्ली इंदर लोक से सुन रहा हूँ। सफर का मजा लेना है तो सामान कब रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कब रखो। अच्छी बात कही है और बड़े राइमिंग सी गहरी बात कह दी आपने फिलहाल। और अगला मेल हम ले रहे हैं गीता सेठ का, कह रही है जल संरक्षण के दूरगामी लाभ है और अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ ये भी होगा कि जल की कमी होने पर बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ अगला मेल ले लेती हूँ मैं नजीम उस्मानी जी का, कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा है और बहुत ऐप के जरिए प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नजीम उस्मानी महमूदाबाद सीतापुर से, उन्होंने हमें ये बात बताई है भाई आप भी न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कहीं भी बैठकर मजा ले सकते हैं 100.7 FM रेनबो का। तो हमें इंतजार रहेगा, अगर आप सुनते रहते हैं तो हमें बताते रहिए। इसी तरह आपको प्यार पहुंचता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, लगता है स्टूडियो में हम अकेले नहीं हैं, आप भी हमारे साथ ही हैं। फिलहाल 11:41 हो गए और आयुषी के साथ सुन रहे हैं आप संदेश आपके गीत। हमारे एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए, क्यूट है क्यों देर करे, सुन लेते हैं फटाफट।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: ग्यारह बज के 46 मिनट और आपके साथ आपकी दोस्त है आयुषी। संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हम 100.7 FM पर। और देखिए हमारे साथ बहुत सारे

0: देखिए लोग जुड़ रहे हैं, मतलब मेल्स के थ्रू भी और फोन के थ्रू भी. अब हम मान लेते हैं कि भाई जो लोग कोशिशें कर रहे हैं और लिख रहे हैं उनके लिए भी, और जिनका फोन मिल रहा है उनके लिए भी, और नहीं मिल रहा है तो भी मायूस नहीं होइए. देखिए हमारे तार कभी ना कभी जरूर मिलेंगे. फिलहाल देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है. हेलो जी, किससे बात हो रही है?
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल. गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल. नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़.
0: ओके, तो आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अगर थोड़ा सा और आप तेज बोले तो बड़ा हमें शायद आसानी से सुनाई पड़ेगा.
1: आवाज क्लियर मिल रही है?
0: अब आ गई. हाँ जी, क्या नाम बताया आपने?
1: राजेंद्र.
0: तो राजेंद्र, क्या आप लाए हैं बढ़िया सा हमारे लिए मैसेज?
1: तो मैम बताना चाहेंगे कि इस जो मौसम चल रहा है बहुत, मतलब कि धूप और गर्मी का है, और इस मौसम में जैसे कि निकले अगर तो छाता लेके निकले और नारियल पानी भी पिए. अगर नारियल पानी नहीं पी पा रहा है तो नींबू पानी का प्रयोग जरूर करें, और घर से निकलते समय पानी पीकर ही निकलें. इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम सब ऐसा करेंगे तो इसका प्रभाव और लोगों को भी पड़ेगा.
0: ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है. क्या आप ये सब फॉलो करते हैं?
1: जी,
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई. तो देखिए 11:48 हैं हमारे पास, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, और भाई आज भी मैंने अगर वो लाइन नहीं कही तो अधूरी सी रह जाएगी. मेरा मन करता है मैं किताब छाप दूं भाई, उनमें सारे सारे प्यारे प्यारे जो मोती है, मैसेजेस के मोती यानी आपके संदेशों के मोती, उसको पिरो दूं, और सोचिए क्या बढ़िया नायाब किताब होगी वो, हमारे लिए सुरक्षा कवच सी हो जाएगी वो, हमें हर चीज से बचाएगी वो, है ना. फिलहाल आपके लिए भाई मैंने बहुत ही प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक क्यों किया है, तो हम एंजॉय करते हैं उसको भी, संदेश भी लेंगे इसके बाद भी.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बज के 52 मिनट हो रहे हैं, आयुष के साथ सुन रहे हैं आप संदेश, आपके गीत हमारे, और प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे संदेश बिखरे पड़े हैं हमारे मेल बॉक्स पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी का भी संदेश ऐसे छूट जाए, आप बड़ी मेहनत से लिखते हैं हमें पता है। देखिए मोहम्मद सद्दाम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्यूट सी प्यारी वाली आरजे आयुषी, आपको प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम। और मोहम्मद सद्दाम रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं, और सुपरहिट गाने बहुत अच्छे लगे, ठीक है। और संदेश ये है कि सभी लोग अपना मौसम में ख्याल रखें, और नाम ले लिया है मोहम्मद फैज का, चलिए आप भी ख्याल रखिए। और अगला बेल है मुनीश कुमार राज भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से, और संदेश है कि नौजवान और महिलाएं मोबाइल पर बात करने में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि अगर उन्हें कोई नमस्कार करे, हालचाल पूछे तो ध्यान नहीं देते। वैसे मुझे लगता है कि ये जेंडर बायस नहीं है, ये किसी पे भी लागू हो सकता है, पर हाँ ये बुरी आदत है। और दूसरी समस्या ये है कि रील देखने और बात करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अगर बाहर हो और साथ में छोटा बच्चा हो तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाते उतना, और खुद इन्होंने कई बार एक बच्चे को बचाया है जो रोड की तरफ जा रहा था। इन्होंने लिखा है मोबाइल ज़रूरी है, पर अपनों की सुरक्षा और ध्यान देना उससे भी ज़रूरी है, हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। और इसके साथ अगला मेल जो आया है वो है हरिकृष्ण उर्फ, अच्छा देखते हैं क्या लिखा है, अमित नाम लिखा है शायद। आजकल ट्रेंड चल रहा है स्वयं के ये पूर्वज के उपनाम की जगह दूसरों के पूर्वज के उपनाम का प्रयोग करते हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से बच सकते हैं। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि अपनी ही गौरव गाथा से मुंह मोड़ना क्या बात हुई, गैरों के उपनाम लगाकर ये कैसी शुरुआत हुई। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने मेल किया, थैंक यू सो मच। और भैया मोनू सेठ ने भी हमें मेल किया, और आज डिजिटल साक्षरता के ऊपर बता रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन शारीरिक रूप से बाहरी दुनिया से काटकर अकेलेपन की ओर धकेल रहा है, तो आप इससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्यारे प्यारे मेल्स हमारे लिए लेकर आते हैं, और तभी हम इन मेल्स के जरिए आप तक पहुंच पाते हैं, और आप तक आपकी जितनी भी बातें हैं, जितने भी मैसेजेस है, संदेश है, वो दुनिया तक पहुंचा पाते हैं, तो थैंक यू सो मच। और फिलहाल आयुषी का संदेश आपके गीत हमारे से वक्त आ गया है विदा लेने का, और भाई एक सरप्राइजिंग सी वॉइस आपसे कुछ ही देर में जुड़ेगी, वो अपना दमकता खिलखिलाता सा प्यारा सा चेहरा और प्यारी सी आवाज़ लेकर स्टूडियो में दाखिल हो चुकी है, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि आप किससे मिलने वाले हैं। फिलहाल बहुत प्यारा सा एक गाना मैं आपके लिए यहाँ पर क्यों करके आपसे ले रही हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बारिश इंजॉय करिए, अगर हो रही है तो, नहीं हो रही है तो भी इंजॉय करिए, गाने इंजॉय करिए, 100.7 FM सुनते रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने और देश भर में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया, जो भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा। यह समूह इस क्षेत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाएगा और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय सुझाएगा। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के मॉडल स्कूल ग्राउंड में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकमाता की प्रतिमा के लोकार्पण

पदार्पण कार्यक्रम में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अनावरण स्थल के निकट एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर केंद्रीय जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष निहाल सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लखनऊ मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए आज तेज आंधी तूफान आकाशीय बिजली और वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश के मध्य और तराई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं व आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके चलते लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को के नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से हराकर विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी 12:04 का वक्त और प्रोग्राम वही जो आपको देता है ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर और अपने जीवन में उतार कर आप बन जाती हैं सुपर एक्सपर्ट। जी हाँ, शुरू हो चुका है प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ और बातें करेगी आपसे ढेर सारी। और बातें होंगी ऐसी जो आपको बनाएंगी स्टाइलिश। जी हाँ, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम बात करते हैं फैशन की। तो हम बातें शुरू करें उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लें।

जी 12:11 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा। और दोस्तों दिन तो चढ़ गया है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि दिन ना चढ़े, क्योंकि आजकल का ये जो गर्मी का प्रकोप है वो हम सब झेल रहे हैं। लेकिन आज जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा हो गया है और हम लोग का जो दिल है वो भी गार्डन गार्डन हो गया है। तो इस प्यारे से गीत के बाद मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम शत्रुपा में।

महिलाओं की एक जो विश होती है वो हमेशा मन में रहती है, और वो विश है कि हम सुंदर लगें, स्टाइलिश दिखें और हर कोई हमारी तारीफ करे, चाहे ओकेजन कोई हो, चाहे वेदर कोई हो। जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है ना, उससे हम सब वाकिफ हैं। सूरज आग बरसा रहा है और गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस पसीने वाली गर्मी में भी हमारा फैशन तो ऑन पॉइंट ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ना जी, ये तो बिल्कुल रहेगा आपका फैशन ऑन पॉइंट। क्योंकि जब प्रोग्राम शत्रुपा हो और ऐसी चीजें ना आपको बताई जाएं जिससे आपका फैशन ऑन पॉइंट रहे, तो फिर भाई बेकार है सारी चीजें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स के बारे में जिनको अपना कर आप इस सीजन भी दिखेंगे स्टनिंग, स्मार्ट और समर रेडी। तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हेयर स्टाइल हैं, हेयर कट हैं जो आपको दिखाएंगे स्टाइलिश। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए, तो हम वो ट्रैक आप तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी 12:18 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हम बातें करने जा रहे हैं ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स की जो आपको देंगे इस सीजन फ्रेश लुक। तो सबसे पहले जिस कट हेयर कट की बात हम करने जा रहे हैं वो है बॉब कट। जी हाँ, ये आपको देगा एक परफेक्ट स्टाइल। दोस्तों जो बॉब कट होता है ना वो एक बहुत ही लाइट स्टाइलिश और बहुत इजी हेयर कट होता है। इस कटिंग में जो बाल होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से जो आपके सर और गर्दन पे गर्मी लगती है, जो आपको गर्मी का एहसास होता है, वो अगर आप ये कटिंग करवाते हैं तो आपको जो गर्मी का एहसास होता है ना वो कम होने लगेगा। और इसे वॉश करना और ड्राई करना भी काफी हद तक इजी है। और हाँ, इनको जो स्टाइल करने में अगर हम देखते हैं ना, कभी कभी जब हम बालों का स्टाइल बनाते हैं कितना टाइम लग जाता है, तो जब आप बॉब कटिंग करवाते हैं और तो आप इनको वॉश तो अच्छे से कर लेते हैं, ड्राई भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनको जो स्टाइल अगर देने की बात कहें तो वो भी बहुत ईजिली आप दे सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट जो टाइप होते हैं बॉब कटिंग में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, वो आप अपने हेयर स्टाइल पे अपना सकते हैं। और वो कैसे अपनाना है आपको, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग वो कटिंग अपनानी है। और उस कटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन कटिंग में आती है ब्लंट बॉब, टेक्स्चर्ड बॉब और चिन लेंथ बॉब। तो आप इन तीनों ही हेयर कट में से कोई भी अपने फेस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं जो आपको देगा स्टाइलिश लुक। और दोस्तों जब आप इस तरीके का कट करवाएंगे ना, हेयर कट करवाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपसे लोग क्या कहेंगे। वो ये गाना कह रहा है तो चलिए सुनते हैं। देखिए ये गाना जो आप सुनेंगे ना वही लोग आपसे कहेंगे।

जी 12:27 और वही दोस्त आपके साथ है। जी हाँ शिखा आपके साथ है और बातें आज हम कर रहे हैं क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन की। और फैशन की जब बात हो और हेयर स्टाइल और हेयर कट माइंड में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इस गाने ने बता दिया कि जब आप हेयर स्टाइल करेंगी, बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट करवा लेंगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई तुम सा नहीं, बिल्कुल सब आपसे यही कहेंगे कि कोई तुम सा नहीं। कि जब हम सज धज के तैयार होते हैं और हेयर स्टाइल बना लेते हैं, हेयर कट करवा लेते हैं, तो भाई हम तो लगते हैं यूनिक। तो आज जो यूनिक हम लगने वाले हैं वो यूनिक लगेंगे कुछ ऐसे हेयर कट और हेयर स्टाइल्स को अपना कर, क्योंकि ये सीज़न ऐसा चल रहा है कि हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके का हेयर कट हो, हेयर स्टाइल हो, तो वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप दिखना चाहते हैं नए अंदाज में, जी हाँ नए अंदाज में, तो लेयर कट, जी हाँ लेयर्ड कट जो होता है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप बाल छोटे नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बाल भी ना छोटे हों और हम बहुत सुंदर दिखें, स्टाइलिश दिखें, और इस गर्मी में हल्कापन भी महसूस हो, तो क्यों ना लेयर्ड कट की ऑप्शन को चुन लें। तो अगर आप इस समर हल्कापन महसूस करना चाहती हैं और साथ ही बहुत परफेक्ट दिखना चाहती हैं, फैशन आपका ऑन पॉइंट रहे, ऐसा आप चाहती हैं, तो आपको ये जो लेयर्ड कट की बात हम कर रहे हैं वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कि ये कट जो है ना वो आपके बालों को वॉल्यूम देता है, उनका भारीपन कम करता है और लेयर्स जो होती है ना चेहरे को फ्रेम करती हैं। और चेहरे को जब फ्रेम करती हैं, जो लेयर्स आपके चेहरे पे आती हैं, तो उसका जो अट्रैक्शन है, आपके जो फेस का अट्रैक्शन है, वो कुछ अलग ही दिखता है। तो दोस्तों अगर आपके बाल लंबे हैं और आप बहुत छोटे कट नहीं करवाना चाहती, हेयर कट नहीं करवाना चाहती, तो बिल्कुल आप जाइए और ये कट करवाइए। और देखिए आप कहेंगी वाह क्या आज का जो प्रोग्राम था उसको मैंने सुना और मुझे कितनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली और मैं कितना एलिगेंट दिख रही हूँ, तो ये कट आप करवाइए। और साथ ही अच्छा इस कटवाने के लिए सोचिए और साथ ही ये ट्रैक भी इंजॉय करिए।

0: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना. तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं. RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा. जानो फिर मानो.
3: जी दोस्तों, 12:36 का वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ. तो बस ऐसे ही प्यार और एहसास से जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

जी तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, क्यों ये रिश्ता ऐसा ही है भाई और ऐसा ही बना रहना चाहिए, जैसे रिमझिम सी पुहा फुहार हम सबको खुशी दे देती है ना, वैसे आपका साथ हमें बहुत खुशी देता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कि कैसे किन किन हेयर कट को अपना कर, हेयर स्टाइल्स को अपना कर हम जो महिलाएं हैं वो दिख सकते हैं एलिगेंट, क्योंकि जो एलिगेंट दिखना है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों अगर आप दिखना चाहती हैं एलिगेंट तो एक ट्रेंडिंग हेयर कट लॉन्ग बॉब यानी लॉब कट आप ट्राई कर सकती हैं। कंधों तक की लंबाई वाला ये हेयर कट ना तो बहुत छोटा होता है और ना ही बहुत लंबा, और एक बहुत अच्छी बात इस कट में ये है कि ये हर फेस शेप पर सूट करता है और कम मेहनत में आपको देता है स्टाइलिश लुक। कम मेहनत का मतलब कि जब हम स्टाइल बनाते हैं, कोई भी स्टाइल बनाने लगते हैं तो कितना टाइम ले लेता है, मतलब हाफ एन आवर तो आप ये मान के चलो कि कोई ना कोई आप जब बाल की स्टाइल बनाने लगते हो तो आधा घंटा तो आपको लगना ही लगना है, लेकिन ये जो बॉब कट है ये बहुत कम समय लेता है। और ये जो हेयर स्टाइल है ना ये हर दिल अजीज है, और जो आपको सिंपल और क्लासी लुक भी देता है वो हाई पोनीटेल। अगर ये तो मैंने बात करी एक जो बॉब लॉन्ग बॉब कट की, और अगर एक पोनीटेल की आप बात कर लें तो पोनीटेल तो मुझे लगता है कि सभी जितनी भी गर्ल्स हमारी स्कूल जा कॉलेजेस जाती हैं, जितनी ऑफिस में हम लोग जाते हैं, जितना ऑफिस वर्क वाली लेडीज़ हैं ऑफिस में जाती हैं, तो उनके लिए जो पोनीटेल है ना ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जब गर्मी के दिनों में जो आपके बाल आपके चेहरे पर चिपकने लगते हैं तो एक इरिटेशन सी होती है ना, बिल्कुल होती है, तो ये एक जो पोनीटेल है वो सबसे आसान और स्टाइलिश विकल्प बन जाता है आपके लिए। ये न केवल चेहरे को क्लीन लुक देता है बल्कि पूरे दिन आरामदायक भी महसूस कराता है। और दोस्तों मतलब सच है ना कि हम एलिगेंट तो दिखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि हमें जो भी कपड़े हम पहने जो भी स्टाइल कैरी करें वो सब हमें आराम दें। तो ये जो आज हमने स्टाइल आपको बताई है ना ये आपको करने वाली हैं बहुत ज़्यादा हेल्प। तो हेल्प तो करेगी, तो आप जितनी भी हेयर स्टाइल आपको बताइए और अभी तक आपने इनको नहीं ट्राई करा है तो अब बारी है ट्राई करने की, तो इसके बारे में आप सोचिए और प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते जाइए, और अभी लौट कर आते हैं और खूब ढेर सारी बातें करेंगे। 10 मिनट हमारे पास बचे हैं लेकिन बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

जी 12:56 का वक्त, और ये वक्त कह रहा है कि भाई टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि शिखा अभी रहेगी आपके साथ अगले प्रोग्राम में, और फुल ऑन होगा मस्ती और धमाल और ढेर सारी बातें होंगी, तो बस

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद रामपुर में 690 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विरासत का अपमान होता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती थी, आज विरासत को सम्मान देकर कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी और उन्हें प्रताड़ित करती थी। डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 यात्री घायल हो गए। हादसा थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब एक वोल्वो बस पीछे से एक ट्रेलर में जा घुसी। पुलिस के अनुसार वोल्वो बस में लगभग 65 यात्री सवार थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि SDRF और फायर सर्विस की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, किसानों से मिट्टी में उपज बनाए रखने के लिए अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों को संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील की। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस

यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिख धर्म के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने धर्म संस्कृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संत सैनिक परंपरा की नींव रखने के लिए हरगोविंद साहिब जी की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दो तलवारें धारण करके गुरु हरगोविंद साहिब जी ने यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिकता के साथ साथ अन्याय के खिलाफ निडरता से खड़ा होना आस्था का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि गुरु हरगोविंद साहिब जी की शिक्षाएं लोगों को धर्म की रक्षा, पीड़ितों की सेवा, मातृभूमि की रक्षा करने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 1:04 हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। तो आज इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें एक दिलचस्प टॉपिक पर। तो क्या आप रेडी हैं? जी, मैंने क्वेश्चन किया क्या आप रेडी हैं, तो मुझे लगता है जी हाँ, आप सब बिल्कुल रेडी हैं। तो बातें तो हम आपसे बहुत ढेर सारी करेंगे और करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे आपसे बातें करने की, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना आपके साथ जो गुजरता है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा। तो आपसे बातें हम शुरू करें, आज क्या टॉपिक होने वाला है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वो सब बातें हम शुरू करें। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा ट्रैक लगा के रखा है मैंने आप सब के लिए, तो चलिए हम सब इन्जॉय करते हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर असेंबली हलकों में 690 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा,
1: विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है।
0: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 8 अफराद को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। केस की समाअत कल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजत वर्मा के सामने हुई। तमाम मुलजमीन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमीन का रिमांड तलब नहीं की है। इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी वकील इस मामले में नामजद मुलजमीन की नुमाइंदगी नहीं करेगा। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात में माली बेजाबतगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरख्वास्त में अदालत की निगरानी में होने वाली तहकीकात और माली बेजाबतगियों के मुकम्मल ऑडिट का मुतालबा किया गया है। जस्टिस एम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने दरख्वास्त की उजलत पर सवाल उठाया और कहा कि गर्मियों की तातीलात के बाद अदालत दोबारा खुलने पर इसे दर्ज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत में 579 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने पीलीभीत समेत रियासत के तमाम अज़ला की तरक्की को तेज़ करने के लिए आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनाया है। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर ममलकत जितिन प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद की पॉलिसियों और गुड गवर्नेंस की वजह से पीलीभीत तब्दील हो रहा है। पीलीभीत के बाद वज़ीर आला ने भामाशाह की यौम पैदाइश के मौके पर मुरादाबाद में मुनक्किद एक प्रोग्राम में 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती

0: हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
2: 8700001-4242।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:17 का वक्त और एक बार फिर से आपकी दोस्त हाजिर हो गई है आप सभी का वेलकम करने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, और वो टॉपिक ऐसा है जो हम सब के बहुत दिल के करीब है और हम सब वो करते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ करते हैं। तो दोस्तों हम सब कितने सपने देखते हैं, देखते हैं ना, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो कोई क्रिकेट

एक्टर बनने का सपना देखता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो कोई बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता है, और कोई चांद पे जाने का सपना भी देख लेता है। तो सपने तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और सभी लोग सपने जरूर देखते हैं और उसको जी जान लगाकर पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, पर कभी कभी वो सपने किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाते। और अगर जब सपने नहीं पूरे हो पाते तो हम कितने दुखी हो जाते हैं ना। पर सोचिए अगर कोई जादू हो जाए, एक जादू की छड़ी घुमाते ही सारे सपने सच हो जाएं, और चलिए सारे सपने ना भी सही, एक ही सपना पूरा हो जाए, तो कैसा लगेगा? दिल तो झूम उठेगा ना, क्योंकि वो सपने जो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं और वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उनमें से अगर एक कोई सपना जो दिल के करीब है वो पूरा हो जाए तो कैसा लगेगा। तो आज का टॉपिक भी हमने इसी से जोड़ते हुए लिया है, और आपको हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर एक जादू से सपने पूरे हो जाए, आपका कोई एक ऐसा जादू की छड़ी घुमाई जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो आज वही ड्रीम आपको हमसे शेयर करना है कि जादू की छड़ी घूमे और आपका वो सपना पूरा हो जाए। तो बस आपको बताना है कि कौन सा वो सपना आप अपना पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमें बताना है, और बताना कहाँ है आपको, बताना है हमें हमारी मेल आईडी पर, और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो भाई आज का टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक हम भेज रहे हैं आप तक। फिर उसके बाद देखिए, कहते हैं ना, जब हमारे जितने भी श्रोता हमसे दिल से जुड़े होते हैं उनका मेल पहले से ही आना जो शुरू हो जाता है, तो हमारे पास मेल आपके आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम आपको और भी मौका दे रहे हैं कि आप सोचिए कि कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप चाहते हैं कि एक जादू की छड़ी घूमे और वो पूरा हो जाए। तो तब तक आप सोचिए, साथ ही एंजॉय करते हैं ये एक गाना।

जी हाँ, ये बेहतरीन सा ट्रैक अभी आपने सुना, फिल्म डुप्लीकेट से इतना बेहतरीन ट्रैक है दोस्तों कि सुन लो ना तो मन झूमने लगता है। देखा, मैं कहती हूँ ना कि आप इंजॉय करियो और साथ में हम भी इंजॉय करेंगे, तो हम भी यहाँ खूब इंजॉय करते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे हमारा और आपका जो साथ है ना, ये एक कहते ना ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है। तो इस जो मतलब साथ को, ये कंपेनियनशिप जो है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार आप हमें देते रहिए अपने मेल्स के थ्रू। और हमारे पास आपके मेल्स आने लगे हैं और आ गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आपके मेल्स। हमारे पास राज कमल यादव जी ने मेल किया है। राजकमल यादव, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी। नमस्ते मैम जी, कैसी हैं आप? मैम जी, हमारा सपना है कि हमारा बेटा सावन कुमार यादव 4 साल का है, वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, बस यही है। मैम जी आशीर्वाद दीजिए। हमारी वाइफ संगीता यादव, रमजान मास्टर समीर भी सुन रहे हैं, धन्यवाद। तो बिल्कुल आपका ये जो सपना है कि आपका जो बेटा है छोटा सा क्यूट सा, वो आपका जो सपना है वो ज़रूर से पूरा करें। और अगर वो सपना नहीं पूरा हो पाता तो उसका जो सपना है, क्योंकि कहते ना कि हम अपने सपने दूसरे पे नहीं थोप सकते, तो वो तो छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है, और अगर आपका ये सपना है तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, और अगर अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा करे तो उसको करने दीजिए।

हाँ बहन जी, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। थैंक यू सो मच। कुछ वर्ष पहले हमारा सपना था कि हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के वासी बन जाएं। जादू की कोई छड़ी तो नहीं घुमाई, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लिया कि ये सपना जरूर पूरा करना है। हर रोज परमात्मा से अरदास भी की और दिलो जान से मेहनत की। और क्या लिखा है इन्होंने, इन्हें लिखा है, और हमने आखिर में सफलता हासिल की। अब चंडीगढ़ का वासी होने पर और अपनी की हुई मेहनत पर नाज होता है जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बात ना बहुत दिल को छू गई कि आपने सपना तो देखा और कोई जादू की छड़ी तो नहीं घूमी, लेकिन आपने अपने दृढ़ संकल्प से जो अपना ड्रीम था उसे पा लिया। और हमारे पास मोहम्मद साहिर जी ने मेल किया है। मैं अपने बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल भेज रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ। आज शिखा दीदी आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून और शुभ दोपहरिया। आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कहना चाहूँगा कि मेरा ख्वाब है अच्छा नहीं क्यों लिखा, मेरा नहीं कहना चाहूँगा, आप कहना चाहेंगे जी हाँ, ख्वाब है जहाँ चलने की अगर जादुई छड़ी मिल जाए तो मैं जहाँ चलने लगूँगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक मेरा दोस्त का नाम लेना, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद शाहिर और कपिल अहमद भाई, शहाबुद्दीन भाई, दीदी मेल पूरा पढ़ियागा व्याड़ी, या हमारे गांव का मौसम बड़ा ही खुशनुमा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि आपके गांव का नहीं, आज हमें लगता है कि सभी जगह का मौसम खुशनुमा हो गया है।

इनका थोड़े थोड़े से मुझे वर्ड्स मुझे कन्फ्यूजन में लगे, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने अपनी बात हम तक पहुँचाई है कि मेरा जहाँ जाने का मन हो आई थिंक वहाँ मैं जाना चाहूँगा। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी आपने चीज़ लिखी कि आपका जहाँ जाने का मन हो आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, आपने हमें मेल किया, मोहम्मद साहिर, मोहम्मद फैज़ आपका नाम है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी फीलिंग्स हम तक कन्वे करी। तो दोस्तों हम मेल आपके पढ़ें, क्योंकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका बेसब्री से वो इंतज़ार करते हैं कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे होते हैं आरजे, तो उनका ये मन करता है कि भाई बातें तो होती रहे लेकिन साथ में एक म्यूज़िकल ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो एक प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, तो उसको इंजॉय करते हैं और फिर लौट कर आते हैं, आपके मेल पढ़ते हैं और बहुत ढेर सारी बातें आपसे करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी 1:36 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ और बात कर रहे हैं ढेर सारी एक टॉपिक पर। एक बेहतरीन सा टॉपिक आज हमने आपको दिया है कि कोई एक जादू की छड़ी घूमे और आपका वो सपना जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आप चाहें कि वो सपना पूरा हो जाए, तो वो कौन सा ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। और हमारे पास मेल्स तो आ ही रहे हैं और हम पढ़ने भी जा रहे हैं। रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेश आए नमो होठों पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज राजू भानु शहरुख बेग पप्पू पासी मनीष नीरज बउआ पाल संत राम काका मिर्जा तुराब बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से शिखा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। हमारा सपना है कि हम भी पैसे वाले हों और सभी की मदद करें, धन्यवाद। तो इतना प्यार आपने जो शिखा बिटिया करके बोला ना, तो बहुत दिल को छू जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि आप कितना दिल से हमसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने लिखा है कि हम इतने पैसे वाले हो जाएं कि हम सभी की मदद करें। तो जो जादू की छड़ी है वो काश ऐसा सच में हो जाए और आप ऐसे ऐसे हो जाएं कि आप सबकी मदद करें। तो ये आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है। और राहुल यादव जी ने हमें मेल किया है, हेलो शिखा मैम, दिस इज माय ईमेल टू एफएम रेनबो लखनऊ, प्लीज ईमेल रीड

कर लीजिएगा फ्रॉम गौरीगंज अमेठी से इन्होंने हमें मेल किया है। तो भाई अभी आपका गाना तो हम नहीं प्ले करेंगे, हम प्ले करेंगे, डेफिनेटली प्ले करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम आपका जो आपके फरमाइशी गीत का है वो है हॉटमेल और वो 2 बजे से शुरू होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका ट्रैक आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे पास मेल किया है महेंद्र दीपन जी ने, और इन्होंने बड़ा, मुझे लग रहा है थोड़ा लिरिकल वे में लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। शिखा मैम जी को महेंद्र दीपन का सादर प्रणाम और नमस्कार है। गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से भेजा मैंने प्यार है। आपके आपके आपके शो होठों पर तेरी बात ने जगाया है एक नया अरमान। जादुई छड़ी मिल जाए तो बदल जाएगा मेरा पूरा जहान। घुमाकर उस जादुई छड़ी को पहले तो खूब सारा पैसा बनाऊंगा, फिर बिना किसी फिक्र के मैं पूरी दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। पेरिस की गलियां हो या लंदन, हर शहर का दीदार करूंगा। इस खूबसूरत दुनिया का कोना कोना मैं पार करूंगा। लखनऊ एफएम रेनबो के संग मैंने अपनी ये हसरत गाई है। रूड़ गांव की महेंद्र ने आरजे शिखा मैम जी को अपनी दिली बात सुनाई है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात, इन्होंने इतना लिरिकल वे में लिखा है। और मतलब ये जो, मतलब जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे होंगे ना प्रोग्राम, वो भी ये जो आपने इतना लिरिकल वे में अपनी इच्छा जताई, अपना ड्रीम हमें बताया है, तो उसको सुन कर ना वो भी खुश हो गए होंगे। और मैंने भी ना आपके जो ये इतना प्यार भरा आपने जो मेल लिखा उसको भी उतने ही एहसास से पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी ये विश बताई, और हमारी भी ये विश है कि आपकी ये सच में कोई जादू की छड़ी घूम जाए और आपकी ये जो विश है वो पूरी हो जाए। और प्रवीण जी ने हमें मेल कर दिया है, मुझे दुनिया घूमने का बहुत मन है। अच्छा, तो प्रवीण जी कह रहे हैं कि मुझे दुनिया घूमने का मन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली कोई एक जादू की छड़ी घूमेगी और आप दुनिया ज़रूर घूमेंगे। और आप अपनी बातें हमसे, इतनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। वकील अहमद जी ने हमें मेल किया है, नमस्ते, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, होठों पर तेरी बात अच्छा लगता है। प्रोग्राम सपना तो सपना होता है, जो जादू की छड़ी से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। किसी के दिल में बसो तो सोच समझ कर बसना, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर साहिबा अंसारी साजी अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी गुलफसा सिद्दीकी अमन नवाब। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी और आप लोग इतना पोइटिक वे में लिखते हैं कि सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेल्स तो हम आपके पढ़ेंगे और हमारा मन करता है कि हम मेल्स ही पढ़ते जाएं, लेकिन भाई आपका तो मन करता है ना कि गाने सुन लें, तो क्योंकि गाने का जो इंतज़ार होता है ना कि अब कौन सा गाना आएगा, अब कोई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाना जो प्ले होता है वो आपका बहुत फेवरेट होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक, और हम भी एंजॉय करेंगे।

0: ले।
1: जी बिल्कुल, अपना बना ले। तो आपके जो ये मेल्स आते हैं ना, इतने प्यारे, और हम तो आपके हैं ही हैं। हमने कह भी दिया कि भाई जब हम आपके साथ होते हैं और आपसे बात होती है तो आप सबसे ज़्यादा खुशी उसी पल होती है। तो अपना अपने तो आप हैं ही, और हम भी आपके उतने ही अपने। और देखिए ये जो प्यार आपका आपके मेल्स के थ्रू मिल रहा है, और भाई मेरा तो, मैं तो कहती हूँ, मेरा तो गाने भेजने का मन नहीं करता। मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी मेल्स पढ़ूँ, और ये प्यारे प्यारे मेल्स पढ़ना मुझे बहुत खुशी देता है। तो हमारे पास मेल आया है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी ने हमें मेल किया है। मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मेरा तो यही मन है कि जादू की छड़ी घुमाओ और सुंदर महरारू पाओ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये थैंक यू मैं कह रही हूँ, मैं भी खो गई आपकी बातों में। और अच्छा, ये थैंक यू मुझे कह रहे थे, मैं आपको थैंक यू कहने लगी। सो थैंक यू, मेरे कुछ रेडियो दोस्त हैं उनके नाम ले लीजिए। तो भाई आपकी शादी अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपकी कोई जादू की छड़ी तो घूमेगी ही, और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी, जो खुशी में तो मैं खुद को ही भूल गई। और शशि निगम जी का हमारे पास मेल आया है। शिखा जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आपकी सुरीली आवाज़ कार्यक्रम की जान है। थैंक यू सो मच, मन करता है आप बोलती जाएं और हम सुनते ही जाएं। हमारा स्वप्न है कि ऐसा समाज में माहौल बने कि कोई किसी से नफरत ना करे और सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहे। तो ये तो संदेश आपने बिल्कुल दिल को छू लेने वाला दिया है, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है ना, वो यही ज़रूरत है कि सब लोग मिलजुल कर रहें और ये जो आपसी प्यार है वो कभी ख़त्म ना हो। तो शशि निगम जी, आपने अपना तो एक ड्रीम हमें बताया, लेकिन एक संदेश भी दे दिया कि आपस में प्यार बहुत ज़रूरी है। और आहिल खान जी ने हमें मेल किया है, और इनका मेल है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, उर्फी खान फ्रॉम बुलंदशहर। मैम सच में आज हवाएं रेशम जैसी ही सुकून दे रही हैं, गर्मी से राहत मिली है। मैम मुझे पता है कि ये प्रोग्राम फरमाइशी नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो एक गाना इन्होंने लिखा है वो प्ले कर दें। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक वो गाना पहुँचाएँ, लेकिन अगर इसमें नहीं पहुँचेगा तो आपका जो प्रोग्राम हॉट मेल आएगा उसमें ज़रूर पहुँचेगा।

और हमारे पास सुधाकर यादव जी ने मेल किया है, हमको तो खेत में काम कौन सा करना अच्छा लगता है और कल क्या काम करना है ये हमको रात को सपना पड़ता है, सपना देखना पड़ता है। अच्छा, तो कुछ मतलब हमको तो खेत में काम कौन सा करना अच्छा लगता है, कल क्या काम करना है, अच्छा ये सपना देखते हैं कि कल क्या काम करना है। ओके, प्रेम पूर्वक नमस्कार। और इन्होंने बहुत ढेर सारे नाम लिख दिए हैं, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। और थैंक यू सो मच, आपने हम तक अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सपना तो कोई नहीं है मगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और वो मेरे अब्बू की है, मैं उस पर काम सीख रहा हूँ, बस मेरी ये कोशिश है कि अब्बू जैसी दुकान चला रहे थे इतने सालों से, मैं भी उसी तरह मैं भी आगे चलाता रहूँ। तो बिल्कुल आपका ये जो सपना है, क्योंकि ये सपना है और आपका ये डिटर्मिनेशन है जो आपने दृढ़ संकल्प अपने मन में ठाना है कि जैसे आपके पापा शॉप चलाते थे वैसे आपकी भी शॉप चले, तो ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी है। और कहते हैं जब अच्छी फील होती है तो भगवान भी साथ देते हैं। अहमद नवाब ने हमें मेल कर दिया है, हेलो डियर शिखा दी, आज मौसम बड़ा बेईमान है, राहत मिली गर्मी से ऊपर वाले का करम है, अगर मेरे पास जादू की छड़ी हो तो जितनी मैं सोशल मीडिया पर बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस देखती हूँ वो सब ले लूँगी, और मेहंदी की डिज़ाइन देखती हूँ और लगा नहीं पाती वो सब सीख लूँगी, जादू की छड़ी घुमाऊँगी, जंतर मंतर गिली गिली छू करूँगी और नामुमकिन को मुमकिन कर लूँगी। जी हाँ, तो देखिए ना, एक से बढ़कर एक जवाब हमारे पास आ रहे हैं, टॉपिक हमारे आपकी जो मन की बात है वो हम पढ़ रहे हैं होठों पे तेरी बात पे। और प्रोग्राम जो है ना इतना खास है क्योंकि आपके मन में जो चल रहा होता है, कभी कभी हम अपने मन की चीज़ें किसी से कह नहीं पाते, तो आपने हमसे शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गाना इंतजार कर रहा है कि हम अपने श्रोताओं तक पहुंच जाए, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक।

जी 1:55 का वक्त और देखिए ना आपसे बातें करते करते आपके प्यारे प्यारे मेल्स को पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और टाइम जो स्टूडियो क्लॉक की घड़ी है हमारी वो टिक टिक करते हुए इशारा कर रही है कि भाई शिखा वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं पर. लेकिन एंजॉयमेंट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि अगला प्रोग्राम भी होने वाला है फुल मस्ती और धमाल भरा, क्योंकि अगला प्रोग्राम है आपकी ही पसंद का, जी हाँ, रेनबो हॉट मेल, और उसमें बहुत ढेर सारी मस्ती होगी और बहुत ही बेहतरीन से ट्रैक पहुंचेंगे आप तक. तब तक के लिए शिखा को इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले प्रोग्राम रेनबो हॉट मेल में.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलिक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों में 690 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विरासत को सम्मान देकर कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कर टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तुष्टिकरण नहीं, आमजन के संतुष्टिकरण पर विश्वास करती है। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह लखनऊ से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2026 फीफा विश्व कप के पिछले दौर के 32 मैचों के बाद 3 और टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे ने क्रमशः नीदरलैंड, जापान और जर्मनी पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में आज से कल के बीच मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित होगा।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी में प्यार भी अपने ही देते हैं, जिंदगी में प्यार भी अपने ही देते हैं, जिंदगी में साथ भी अपने ही देते हैं। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपने ही देते हैं। तो आपके अपनों से आपका प्यार बना रहे, आपका साथ बना रहे, इसी प्यारी सी विश के साथ आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल लेकर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये है आपके दिल के बहुत करीब, क्योंकि इसमें ही तो हम पढ़ते हैं आपके मेल्स और बजाते हैं आपके ही पसंद के गीत। तो लिख भेजिए हमें अपने मेल्स और साथ ही वो गीत कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, और साथ ही लिख भेजिए वो डेडिकेशन कि किनके नाम हैं उस मेल्स में शामिल जिनको वो गाना आप सुनाना चाहते हैं। और आपके मेल्स हमारे पास लगातार आने लगे हैं। कह सकते हैं कि ये जो मेल की कतार है ना, ये इतनी प्यारी लगती है कि सभी लोग हमें दिल से मेल लिखते हैं और ये चाहते हैं कि उनके ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक प्ले हो। तो चलिए, एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके मेल्स।

कुछ खास है, कुछ पास है, लेकिन अजनबी एहसास नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा पुराना और फीलिंग वाला एहसास है। तो चलिए आपके जो मेल्स हैं पढ़ लेते हैं जल्दी से, मेल हमारे पास आए हैं और हमारे श्रोता ये वेट कर रहे होंगे कि कब हमारा नाम लिया जाएगा और कब हमारी बात, मतलब हमारी जो मेल्स हैं वो पढ़े जाएंगे। तो मसरूर हसन जी ने हमें मेल किया है और मसरूर हसन जी के चलिए हम पढ़ते हैं। जय जी ने मेल किया है, पहले उनका पढ़ते हैं। जय, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, एक इन्होंने फिल्म लिखी है और हमारी कोशिश है कि वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे पास मेल आया है विजय महोबिया जी ने, रामगंज खंडवा से मेल किया है। विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, शिवराम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया फिल्म अपना देश से इन्होंने हमें मेल किया है। इस गीत को सुना दीजिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक ये गाना ज़रूर पहुंचाएं। और सतीश अनेजा जी ने मेल किया है, नमस्कार शिखा बहन जी को, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, रेनबो लखनऊ के लिए बेशुमार मोहब्बतें। तो थैंक यू सो मच। और एक गाना लिखा है इन्होंने, हम कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। चंडीगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमारे पास मसरूर हसन जी ने हमें मेल किया, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत में शामिल करें। और हमारे पास मेल आया है मूसा शेख जी ने हमें मेल किया है, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना, और बहुत अच्छे से गीत की फरमाइश करी है और कोशिश है कि आप तक वो

तिस जरूर पहुंचे। महेंद्र दीपन जी ने हमें मेल किया है गांव रूड से। महेंद्र का शिखा मैम और एफएम रेनबो को सादर प्रणाम है। फिल्म अच्छा ये इन्होंने गीत लिखा है सुल्तान रजा भाई और बाबू भाई अंसारी के संग मिलकर ये महफिल सजाई है। रोशनी रावत दीदी और बबीता राव दीदी को भी मेरी ये फरमाइश बेहद भाई है। लखनऊ हॉट मेल के इस मंच से शिखा मैम के संग हम सब ने मिलकर ये खुशियां मनाई हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच इतना मतलब लिरिकल वे में लिखने के लिए, क्योंकि जो आपकी फीलिंग है ना वो आपके लिखने के लहजे में समझ में आ रही है। तो चलिए प्यारे से ट्रैक एक आ रहा है आप तक, और ये आप में से ही किसी ने फरमाइश करी थी तो ये आप तक आ रहा है। इंजॉय करते हैं।

0: मुस्कुराइए
1: कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी 2:22 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हॉटमेल और हम बेहतरीन से ट्रैक पहुंचा रहे हैं और वो ट्रैक है आपकी ही पसंद के।

और हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल आ चुके हैं, तो चलिए पहले हम मेल पढ़ते हैं, फिर हम ट्रैक आपके ऐप तक पहुंचाएंगे। बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए। और इन्होंने, मुझे लग रहा है ये सेकंड मेल कराया आई थिंक, बाबू अंसारी का ये मेल मैं पढ़ चुकी थी। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स से कि एक बार मेल करिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस मेल को ज़रूर से शामिल करें। मंगल जी ने हमें मेल किया है, मंगल जनागल जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रैक की फरमाइश करी है। एमडी पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से इन्होंने हमें मेल किया है, मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदू, डॉक्टर सुनील जनागल। और हमारे पास मल्होत्रा मोहाली से मेल आया है, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की फरमाइश करी है, वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभ बंद्रा बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और हमारे पास सुरेश नारंग जी ने मेल किया है, रिस्पेक्टेड आरजे जी नमस्कार, इस सॉन्ग बहुत प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है, कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इससे बेफिक्र रहिएगा कि आपके गाने नहीं प्ले होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपके लिए है और आपके ही गाने हम प्ले करते हैं। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक जी। और हमारे पास एम के राज जी ने हमें मेल किया है, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, हरोवा, जिला लखीमपुर खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है, शिखा मैम जी को शुभ दोपहरिया, प्यार की कदर उसे निभाना वही जानते हैं जिन्होंने सच में करके निभाया है, आपके कार्यक्रम में दो फिल्मों के गाने सुनने की दिली ख्वाहिश है, बजा दे तो बड़ी कृपा होगी। तो हमारी भी कोशिश है कि हम बहुत मतलब आपकी, क्योंकि आपके जो दिल को गाने छूते, तो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि वो गाने हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। नागेश कुमार जी ने मेल किया है, मेरा नाम रीना है, मेरा संदेश आज के माता पिता के लिए है, बच्चे का पहला गुरु और पहला समूह माता पिता ही होते हैं, इसलिए बच्चों से प्यार और दुलार ज़रूर करें, लेकिन उनके संस्कारों और व्यवहार पर भी ध्यान दें। यदि बच्चा बड़ों से बदतमीजी करता है या गलत आदतें सीख रहा है, तो उसे प्यार से समझाएं और सही गलत की पहचान कराएं। अच्छे संस्कार ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। पता ग्राम एवं पोस्ट उमरी, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है। और अब बारी है, क्योंकि मेल तो बहुत ढेर सारे हैं और हमारा भी मन करता है कि हम मेल ही पढ़ते जाएं, लेकिन मेल ही पढ़ना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपके, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आ रहा है आप तक। जी हाँ, आपका गाना आ रहा है आप तक, तो चलिए आप तो इंजॉय करेंगे, साथ में मैं भी इंजॉय करती हूँ ये प्यारा सा ट्रैक आप तक।

जी 2:33 का वक्त और शिखाए आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल में और एक से बढ़कर एक गाने हम सुन रहे हैं। जी हाँ, आपके ही पसंद के गाने आज हम भी सुन रहे हैं और आपके जो मेल्स हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मुकेश कश्यप जी ने हमें मेल किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह किसी भी गीत में शामिल करें। और हमारे पास वारिस अली जी ने मेल किया है, शिखा जी आदाब, ना घमंड में रहिए ना गुरूर में रहिए, बस जिससे दिल ना मिले उनसे दूर रहिए। क्या बात है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले द ट्रैक। बहुत अच्छा सा इन्होंने एक गाना लिखा है, वो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। और पवन कुमार जी ने हमें मेल किया, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार ग्राम सिंहपुर सिधौली सीतापुर से। मैम आप कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग बहुत बढ़िया बज रहे हैं। जी तो सॉन्ग तो ये सब क्रेडिट भाई आपको ही जाता है क्योंकि आपके इस वाले प्रोग्राम में तो आपके ही गीत बजते हैं, तो अगर आपके दिल को छू रहे हैं तो। और मेरा एक कहना भी ये है आप लोगों से कि गाने सब इन्जॉय करिए क्योंकि एक से बढ़कर एक जो आप लोगों ने फरमाइश हम तक भेजी है वो आप तक आ रही है तो इन्जॉयमेंट तो बनता है। सुहाने गीतों के साथ गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से इन्होंने हमें मेल किया है गुरमीत जी ने। और हमारे पास नितेश देवांगन जी का मेल आया, सब प्रेम नमस्कार, पता पलारी छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, कोई भी गीत में शामिल करें, धन्यवाद। और हमारे पास हरजिंदर शिंदा जी ने हमें मेल किया, रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी सदाबहार गीत में हमें शामिल करें, धन्यवाद। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे पास मेल आया है, नरेश जी ने हमें मेल किया है। नरेश जी नमस्कार जी, आपको मान योग्य आरजे जी सब शामिल हो रहे हैं, बस हमें छोड़कर जी हमें शामिल नहीं करोगे क्या शिखा दीदी जी, शुक्रिया फिर भी आपका जी, शामिल करें या ना करें कभी, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए भाई, क्यों नहीं करेंगे, आपका ही प्रोग्राम है। और दीदी जी प्लीज़ नाम पूरा पढ़ दें, फिल्म इन्होंने एक लिखा है तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं वो गाना। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, और शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। और हमारे पास मोहम्मद शादाब खान जी ने मेल किया है, मोहम्मद शादाब विलेज बिलाई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई, गुड आफ्टरनून मैम, क्या और कैसी हैं आप, मूवी कराम इन्होंने लिखा है और कोशिश है कि हम आप तक मेल मतलब आपके गाने पहुंचाएं। तो भाई क्योंकि गाना जो पहुंचाना है ना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी नाराज़गी हमें थोड़ी देर में मिलने लगती है। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, आप में से किसी की पसंद का है तो चलिए हम सब इन्जॉय करते हैं।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी, पर 2:45 का वक्त और पढ़ रहे हैं आपके मेल्स और सुन रहे हैं बेहतरीन से ट्रैक आपकी ही पसंद के, और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हॉट मेल, जिसमें आज आपकी दो शिकायत आपके साथ, और अब बारी है कि आपके मेल्स पढ़ लें। वही जो मुझे लगता है ना, कभी कभी जो मेल्स पढ़ती हूँ तो उसमें नाराज़गी झलकने लगती है, तो नाराज़गी मत झलकाइए क्योंकि हम भाई आपके लिए और आपके मेल्स पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं। रामराज जी ने हमें मेल किया है और रामराज जी का मेल हमें लगता है हम पढ़ चुके हैं, और उदय भान जी ने हमें मेल किया है, कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें। और रजौनी जरा महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया, उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे पास तुलसी मस्कीन जी ने मेल किया है, होस्ट मैडम जी हम ऑफिस में बिजी होने के बावजूद भी रेगुलर कनेक्ट हैं, अभी तक नो रिस्पॉन्स एनी सॉन्ग में चलेगा, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन। ये लीजिए तुलसी जी, आपका नाम ले लिया है, और बिल्कुल भी कह देना नाराज़गी मत जताइए, क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि एक एक मेल करिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल शामिल ज़रूर करें। और रोज़ी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, रिस्पेक्टेड होस्ट दी टाइम इज रनिंग सो प्लीज सी माई मेल बॉक्स ऑल्सो, थैंक यू। लीजिए, हमने सीन कर लिया है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। रोजी डिकेस्ट्रो जी, आपकी जो मेल है वो हमने शामिल कर ली है। बोधराज खोरवाल जी ने हमें मेल किया है, फिल्म हाँ बिल्कुल, हम आप तक कोशिश है कि हम आपका ये गाना ज़रूर पहुंचाएं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी। और हमारे पास ताज मोहम्मद जी ने मिल गया, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आदरणीय प्रसारक जी हम आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमारे पास जितेंद्र नामदेव जी ने मेल किया है, तो अभी हम पढ़ते हैं इनका मेल। तो हमारे पास मेल आया है जी, बोधराज खोरवाल का हम मेल पढ़ चुके हैं, तो वही प्यारी सी रिक्वेस्ट आप सभी से।

की एक एक मेल भेजिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप सभी का मेल शामिल करें। नमस्कार जी, ओम ओम बगरिया जी ने हमें मेल किया है, गांव बांडी फाला फजल का पंजाब से। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया फिल्म इन्होंने लिखी है और हमारी कोशिश है कि देखिए गाने सब आपके ही प्ले हो रहे हैं और हमारे पास समय सीमित रहता है, एक घंटे हमारे पास रहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक करके हम आपके गाने ज़रूर आप तक पहुँचाएं। राजकुमार दूधी जी ने हमें मेल किया है गाँव फ्रांसी हिसार से। राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी, तो एक गाना आ रहा है आप तक क्योंकि ये आपकी पसंद का है, तो हम सब इन्जॉय करेंगे और मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ, स्पेशली मतलब जो आपकी फरमाइशें आती हैं उनको मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो चलिए हम सब इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आप तक।

तो दोस्तों 2:55 का वक्त, और देखिए ना आपके मेल्स जो हमारे पास हैं, और सभी मेल्स हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सभी के नाम ज़रूर ले लें, क्योंकि आपकी नाराज़गी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते भाई। और हमारे पास कौशिक वधावना जी का मेल आया, नवी हसन जी ने हमें मेल किया, संदीप मकर जी ने हमें मेल किया है, रमेश चौहान जी ने मेल किया है, आहिल खान, संदीप मकर, शहरू नूर अंसारी, पूनम गगनेजा, बोधराज खोरवाल, तेज बहादुर यादव, और हमारे पास उदयभान जी ने हमें मेल किया है, मनोज बंसल जी ने मेल किया है हमें, मोहसिन हाशमी जी ने, रामराज जी ने मेल किया है, तुलसी मस्कीन जी ने, रोजी डिकेस्ट्रो जी ने, और हमारे पास जितेंद्र नामदेव जी का मेल है, राजकुमार दूधी जी ने हमें मेल किया है, और हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल आए हैं। तो कोशिश है कि सभी के नेम्स हमने शामिल कर लिए हैं, और तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपने हमें मेल किया, और माफ़ी भी हम मांग रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के गाने नहीं पहुंच पाए उन तक, लेकिन आपने डेफिनेटली प्रोग्राम इंजॉय किया होगा। हमारे पास एक सीमित समय होता है, उसी में हमें आपके गीत भी शामिल करने होते हैं और मेल भी शामिल करने होते हैं, लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका ही है। तो आज आपके गाने अगर नहीं शामिल हुए तो कल हो सकता हो आपका नंबर आ जाए। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और अगला प्रोग्राम भी आप इंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो बस बने रहिए एहसास और प्यार से, और साथ ही ये ट्रैक जो आ रहा है वो आप में से ही किसी की पसंद का है, तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग और सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं गांवों में जाकर नल से जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेंगे। 15 से 25 जुलाई के बीच प्रस्तावित इस विशेष अभियान के तहत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दर्जन से अधिक जिलों के गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे न केवल पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे बल्कि ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी जानेंगे। इस अभियान में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक जनपद में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में रोस्टर तैयार कर 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिन कंचन वर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के पूर्व आदेशों के अनुरूप ग्राम सचिवालयों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब इसी व्यवस्था को और प्रभावी बनाते हुए लेखपालों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। कुशीनगर एयरफील्ड में एयरफील्ड एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट एरोड्रोम कमेटी बैठक और एंटी हाईजैक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और एयरफील्ड की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 3:04 और प्रोग्राम वही जो छू लेता है आपके दिल को। जी बिल्कुल सही गेस किया आपने, क्योंकि प्रोग्राम शतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। और बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और वो टॉपिक क्या है जो हम सबको परेशान करे रहता है, हमारे कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हर समय, और वो क्या होता है ना आपको दिखाई भी नहीं देता है लेकिन आपके साथ वो हर समय चलता रहता है। जी हाँ, और वो है आपका टेंशन। तो आपकी टेंशन से निपटने के लिए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे, और वो आपकी जो टेंशन है उसको झट से दूर कर देगा। और उस टॉपिक का नाम है पैनिक पाउच। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है पैनिक पाउच। तो हम बातें आगे शुरू करें कि क्या होता है पैनिक पाउच और किस तरीके से वो आपको प्रभावित करता है, आपकी जो मेंटल टेंशन है उसको थोड़ा बैलेंस्ड करता है। तो ये सब हम बातें करेंगे लेकिन एक प्यारे से गाने के बाद। और ये गाना बहुत ऐसा है कि हमको लगता है ये गाने जो हमारे लिसनर ये वाला गाना सुनेंगे ना थोड़ा बहुत थिरक भी लेंगे। तो चलिए आप थोड़ा सा थिरक लीजिए और फिर लौट कर आते हैं और बातें करते हैं कि क्या होता है पैनिक पाउच।

जी, तो अभी बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, चोर बाजारी दो नैनों की। तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में। दोस्तों, आज के समय में एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है स्ट्रेस। सही कहा ना मैंने, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वो हमारे चेहरे से नजर आने लगता है। और इसका जो असर है, जी हाँ, इस स्ट्रेस का जो असर है वो हम सब पर देखने को इजीली मिल जाता है। पढ़ाई का, करियर का, रिश्तों का और सोशल मीडिया के दबाव के बीच मानसिक जो हमारा मेंटल बैलेंस है वो बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। पर तनाव से निकलना भी तो बेहद जरूरी है। तो कैसे निकले इस तनाव से? तो तनाव से बाहर निकलने के लिए हमें यूज करना होगा पैनिक पाउच। जी हाँ, ये कुछ ऐसी चीजों का छोटा सा कलेक्शन है जो तनाव को कम करता है, जी हाँ, कंट्रोल करता है जब आपके पास ये पाउच होता है। और इस पाउच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको, जैसे स्ट्रेस जब हमारे सर पे बहुत हावी हो जाता है तो वो चीजें हमारे काम आती हैं उस समय। अगर कहते हैं ना, क्षणिक अगर कोई कोई शब्द भी कोई बोल दे, दो शब्द भी कह दे कि अरे तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, तो ये पैनिक पाउच का एक छोटा सा इंग्रेडिएंट आप कह लीजिए हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हम पैनिक पाउच में रखते हैं अपने साथ, जो हमें बैलेंस करती हैं हमारे स्ट्रेस को और हमें देती हैं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन। आज के टाइम में दोस्तों जो स्ट्रेस है ना, उससे हम भाग नहीं सकते, वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे ऊपर बिल्कुल सवार रहता है। तो उससे भागने से अच्छा है उसे थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। तो वो बैलेंस करता है पैनिक पाउच और एक कलेक्शन होता है, और वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे लेकिन इस गाने के बाद। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये गाना, फिर उसके बाद आते हैं और बात करते हैं कि पैनिक पाउच में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे जो हमारा स्ट्रेस है उसको बैलेंस करती हैं। तो जानने की क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी आपके अंदर, तो बस उस क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए और आते हैं इस गाने के बाद और बातें करते हैं।

जी यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि आपको अपने साथ नहीं रखना है पैनिक पाउच, आपको रखना है पैनिक पाउच और इस पाउच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों कई बार एंग्जायटी जो घबराहट है बिना किसी चेतावनी के शुरू हो जाती है और आपको आप अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी होता है ना कि आप बैठे होते हो और आपके अंदर जो सोच चल रही होती है वो आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि आपको आप अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में ये जो पैनिक पाउच है ना, एक छोटे से इमरजेंसी किट की तरह आपका साथ देगा। इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो आपके ध्यान को सेंट्रलाइज करने और मन को शांत करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो आप मन में सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी कोई चीज है कि जो हमारे स्ट्रेस माइंड में चल रहा हो उसको शांत कर दे। जी हाँ, कभी कभी तो ऐसी चीजें जब हमारे सर पे

बिल्कुल हावी हो जाता है स्ट्रेस, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिलैक्सेशन दे देती हैं, तुरंत रिलैक्स्ड आपको करती हैं। जैसे आपकी पर्स में छोटा सा जो पैनिक पाउच मैंने बताया, उसमें पसंदीदा खुशबू हो आपकी, इंस्पिरेशनल नोट कोई हो, स्ट्रेस बॉल हो, छोटी डायरी, हेडफोन, च्युइंगम हो या किसी प्रिय व्यक्ति की तस्वीर। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लग रहा होगा कि क्या मायने रखती हैं, जी हाँ बहुत मायने रखती हैं। और आज आप इस चीज़ को करके देखिए कि जब भी आपके पर्स में आप बहुत सी चीज़ें रखते हैं, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करें। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। मैंने बताया आपको जो पसंदीदा खुशबू, आप कोई परफ्यूम छोटा सा रख सकते हैं अपने पास, इंस्पिरेशनल नोट, जो कभी कदार आप बैठे आप फ़ोन देखते हैं, इतनी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको आप पढ़ के थोड़ा इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उसको आप कहीं पर लिख लें और उस नोट को अपनी पर्स में ज़रूर रखें। वो जो पैनिक पाउच आप बता रहे हैं उसमें ज़रूर रखें। एक स्ट्रेस बॉल है उसको ज़रूर रखना है, और छोटी डायरी ज़रूर रखना है, अगर जो आपको स्ट्रेस चीज़ें दे रही हैं आप उसको लिखें कि उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। हेडफोन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, च्युइंगम होना चाहिए, और किसी ऐसे इंसान की तस्वीर आपके उस पाउच में होनी चाहिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो आपको इससे क्या होगा, आपको इससे इमोशनल सिक्योरिटी महसूस होगी, और आपको ये काम करके ज़रूर देखना है। और आप देखिएगा कि ये जो आपका स्ट्रेस है, जो धीरे धीरे स्ट्रेस आपका जो लेवल बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए, एक प्यारा सा ट्रैक भी इंतज़ार कर रहा है कि कब हम अपने श्रोताओं तक पहुंचेंगे। तो एक प्यारा सा गाना आ रहा है, उसको भी सुन के आप इंजॉय करिए और फिर बातें करते हैं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता

0: पता कैसे है?
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी।
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और

0: जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर

0: मना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
7: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: गाओ गाओ गाओ, शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। गाओ गाओ गाओ। पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा।

0: पिएगा उसको। अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
1: काँ, काँ, काँ।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: я болею. Папи, она пьет джабай.
1: Кау, кау, кау. Аре, изне то бас рать хи пакар ли?
2: Бау, бау, бау. Аре, ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: हाँ हाँ, इसकी यही सजा हो।
4: हाँ हाँ, इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।

0: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
2: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: नहीं।
1: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
2: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
3: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
1: चलो।
3: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: अच्छा ये मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों में 690 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विरासत को सम्मान देकर कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तुष्टिकरण नहीं, आम जन के संतुष्टिकरण पर विश्वास रखती है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह लखनऊ से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेनानिवृत्ति के अवसर पर यह बात कही। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि जनरल सेठ एक अनुभवी सैनिक और सक्षम लीडर हैं। एकाना समूह के स्वामित्व वाली लखनऊ फॉल्कन्स टीम ने UP20 लीग के लिए ओपन ट्रायल्स की घोषणा कर दी है। 1 से 3 जुलाई तक एकाना स्टेडियम में चलने वाली चयन प्रक्रिया के लिए प्रदेश भर से अभी तक 500 से अधिक खिलाड़ी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जो खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाए हैं, वे ऑफलाइन भी एकाना स्टेडियम में पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर UP T20 लीग के सीजन 4 के लिए प्रतिभाओं का चयन होगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने से आज लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में आज से कल के बीच मानसून सक्रिय हो सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आदाब, सलाम। और 4:04 हो गए हैं। आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई है। आपका अपना प्रोग्राम यूथ वेव शुरू हो चुका है। प्रोग्राम यूथ वेव युवाओं के दिल की धड़कन है। आपके काम की, आपकी सारी खबरें, आपकी ज़रूरत की खबरें, रोज़गार समाचारों से लेकर के आपके कंपटीशन की तैयारी हो या फिर युवाओं के स्वास्थ्य की हो बात, प्रोग्राम यूथ वेव डेडिकेटेड रहता है आपको, यानी कि यूथ को। बस आज है मंगलवार और आज का जो सेगमेंट है वो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशल। बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशल है तो कुछ खास लेकर आए होंगे हम आपके लिए। एक बात तो है कि बस अगर आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो को, तो इसका मतलब ये है कि आपको काम की खबरों के साथ साथ, जैसे आज आपको मिलने वाली है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत जरूरी जानकारी, इस जरूरी जानकारी के साथ साथ आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज। तो ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर मौसम को देखते हुए, और उसके तुरंत बाद हम शुरू करेंगे आपके आज के सेगमेंट की बात करना।

बिल्कुल इसी तरीके से चमचम करते हुए जल्दी ही बरसात आएगी और आपके दिल को खुश कर जाएगी, मतलब आपके मन को भिगो जाएगी, तन को तो भिगोएगी ही, और सारी खुशियां जो है एक इंतज़ार के बाद मिलने लगती हैं। हर समय गुजरता है और उसके बाद जो आप चाहते हैं वो ज़रूर एक दिन आपको मिलता है। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ सफलता सिर्फ घंटों तक किताबों के सामने बैठे रहने से नहीं मिलती है, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। अगर हम तैयारी के दौरान कुछ ऐसी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी सफलता और असफलता के बीच का एक अंतर बन सकती है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तैयारी के दौरान आज हम बात करने वाले हैं, ओके डोंट वरी, हम कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, कैसे हमें तैयारी करनी है, किन रूल्स को फॉलो करना है, इन सारी बातों पे आज हम बात नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेगमेंट में, आज इस खास चंक में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कंपटीशन के दौरान हम कौन सी बहुत छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे तैयारी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, और ये तैयारी के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना हम पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के अलावा। जी हाँ, तो बस उन छोटी छोटी बातों के बारे में ही बात करने वाले हैं। और वो पहली बात जो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो है कि स्मार्ट रिविज़न, जो स्मार्ट रिविज़न होता है वो कैसे करते हैं। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसका बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों में भूलने लगते हैं। अच्छा, आजकल तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि 3 घंटे की मूवी जो हम देखकर आते थे वो हमें याद रहती थी लेकिन चैप्टर्स भूले रहते थे। आजकल तो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद थोड़ी देर बाद वो भी भूलने लगते हैं कि अच्छा क्या था इसके बाद, क्योंकि वो फोकस रह ही नहीं गया है। तो जो ये साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं बहुत सारे, वो बताते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ने के कुछ ही देर में हम भूलने लगते हैं, इसीलिए किसी सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो काफ़ी नहीं होता। एक दिन, 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन के डिस्टेंस पे इनको दोहराया जाए तो वही इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। ओके, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, जो हमने एक बार पढ़ा उसको एक दिन के बाद रिवीजन करना है, स्मार्ट रिवीजन इसको कहेंगे, एक डायरी में नोट करके लिखेंगे। फिर पहले दिन जो पढ़ा था उसके 3 दिन बाद, फिर पहले दिन से 7 दिन बाद, फिर पहले दिन से 15 दिन बाद, ऐसे करने के बाद बस 15 दिन के डिस्टेंस पे जो आखिरी बार आप इसे रिवीजन करेंगे उसके बाद ही आपको याद हो जाएगा। और इसको स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है, मतलब ये टॉपर्स की सबसे फेवरेट टेक्निक्स में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे स्मार्ट रिविजन की। और इतना भी मैं आपको स्ट्रेस नहीं दूंगी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस रिविजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत इजीली करना है, स्ट्रेस के साथ नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो चीज़ों को ख़राब ही करता है। बस ट्यून इन करके रखिए, आपका स्ट्रेस होता है इस गाने को सुन के दूर, बहुत दूर।

बिल्कुल, और ये खुल के जीने का जो तरीका है ये आना बहुत ज़रूरी है। और खुल के जीने का तरीका इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खुलकर नहीं जिएंगे तो स्ट्रेस में जिएंगे, और स्ट्रेस में जिएंगे अगर तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। अच्छा, हम बहुत लाइट और बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग करने वाली चीज़ों के बारे में, और जो रोज़ आप सुनते हैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। लास्ट में उन पॉइंट को हम ऐड करेंगे जिन पॉइंट्स को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ग्रांटेड लेते हैं, और वही चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी आपकी सक्सेस को तय करता है। इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना और उन चीज़ों को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रूप से आपको मॉक टेस्ट देना है, घड़ी देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने मिनट्स ले रहे हैं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करना है आपको। याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग वाली जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें गलत उत्तर जो आपके सही उत्तरों की मेहनत ही कम कर देता है। याद तो आते होंगे आपको वो नेगेटिव मार्क्स। खैर, तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि जितना हम पढ़ते हैं उतनी ही ज़रूरी है। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन का फॉर्मूला पूरा याद है और उस फॉर्मूले को हमने याद तो कर लिया है, लेकिन ये हमने जो एक्यूरेसी है अपनी वो सेट नहीं कर पाई। मतलब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने 10 मिनट ले लिए, बाकी के 100 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन का क्या होगा।

तो ये सारी चीजों को तो ध्यान में रखना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अपने स्टडी टेबल के आसपास वो घड़ी लगाते हैं और टाइमर सेट करके रखते हैं, और टाइमर सेट करके रखते हैं मतलब 10 questions का टाइमर सेट करके रखते हैं कि ये 10 questions इतने फिक्स टाइम में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, इस बात पे भी उनकी जो प्रैक्टिस है वो डिपेंड करती है। तो मतलब ओवरऑल आपको इन चीज़ों को भी दिमाग में लेकर चलना ही है। बात तो करते रहेंगे हम इन सारी चीज़ों के बारे में। ओके, ये हो सकता है आपने सुनी हो बात अक्सर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगली बात की तरफ जाने से पहले एक खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर भेज रही हूँ। वो खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद आप आएंगे वापस, और हम वापस आने के बाद फिर से बात करेंगे अपने सेगमेंट के बारे में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेगमेंट के बारे में। आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विद्यालय इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद सहायक प्रोफेसर, विभाग हैं जैविक विज्ञान और इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, डिजाइन, भू सूचना विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान। कुल 39 पद उपलब्ध हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विभाग हैं जैविक विज्ञान और इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, डिजाइन, भू सूचना विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान। कुल 19 पद उपलब्ध हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का विवरण इस प्रकार से है। पदों की श्रेणी समूह का शिक्षण में सहायक प्रोफेसर के कुल 2 पद और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nsut.ac.in। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वाणी चिकित्सक, वरिष्ठ आशु लिपिक, रेडियोग्राफर ग्रेड 1 और प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 1। इसके लिए विस्तृत जानकारी यदि आप चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट recruitment.svnirtar.in। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक निदेशक, विधि अधिकारी और निजी सहायक। इन रिक्तियों के लिए आवश्यक भर्ती का विवरण अर्थात निर्धारित योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी की वेबसाइट www.nadaindia.org। भारतीय प्रेस परिषद में प्रधान निजी सचिव का एक पद रिक्त है जिसे भरा जाना है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट www.presscouncil.nic.in। कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ओडिशा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन।

0: कर सहायक आशुलिपिक ग्रेड दो बहुकार्य कर्मचारी, कुल 12 रिक्तियां उपलब्ध हैं इन पदों के लिए। पात्रता मानदंड और आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

4:35 हो गए हैं, प्रोग्राम यूथ वेव चल रहा है और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। आज हमारा जो सेगमेंट है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, लेकिन आज हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं उन बहुत ही इग्नोर किए जाने वाले पहलुओं के बारे में जो हमारी सक्सेस के लिए, हमारी पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था इससे पहले एक टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी की बात की थी, वो आपको दरअसल हर जगह सुनने को मिलता होगा, आम होगा, लेकिन आप उसे इतनी ही तेज़ी से इग्नोर करते होंगे। सोचते होंगे कि जब हमें पूरा लर्न है, हमने बहुत अच्छी तरीके से लर्न किया है और हर एक पेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो फिर हमें बार बार उसे टाइम चेक करने की या उसको हमें टाइमर लगा करके देखने की या फिर हमें उसका मैनेजमेंट या एक्यूरेसी देखने की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन ये सारे जो पहलू हैं वो बड़े काम के होते हैं। लेकिन अब जो अगला मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो है एक्टिव रिकॉल। कई सारे स्टूडेंट्स एक ही नोट्स को बार बार पढ़ते हैं लेकिन उससे याददाश्त उतनी मजबूत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना रिविज़न की, तो वो स्मार्ट रिविज़न की हमने बात की थी। रिविज़न का क्या होता है, हम आज पढ़ते हैं, फिर हमने शाम को भी पढ़ लिया, फिर हमने सुबह भी पढ़ लिया, फिर एक घंटे बाद और पढ़ लिया और लगातार उसे लगातार पढ़ा कई बार और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन होता यह है कि हमें अगर स्मार्ट तरीके से रिविज़न करते हैं तो फिर हमें फ़ायदा करता है। जैसे पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन और पंद्रहवें दिन पढ़ा तो वो हमारी जो मेमोरी होती है वो अच्छी एक्टिव होती है। इसी तरीके से एक्टिव रिकॉल भी है कि ये एक्टिव रिकॉल का तरीका यह है कि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब बंद कर दें और ख़ुद से सवाल पूछना है या जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डायरी पे नोट करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल हमने सोशियोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर पढ़ा और उसमें हमें ऐसे लिखना है और ऐसे लिखने के बाद जो है हमें मतलब वो जो सोशियोलॉजी का चैप्टर है हमारा उसको हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने बुक बंद कर दी और उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स के साथ, हेडिंग के साथ, सारी सारी ज़रूरी चीज़ों के साथ अपने मन से ऐसे लिखने की कोशिश की। यही है आपका एक्टिव रिकॉल। जब माइंड को ये इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करने लगता है, उसकी बार बार एफर्ट्स करने लगता है, तो जो आपकी लर्निंग होती है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अरे मतलब मेरा सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये था कि आपको लर्न करने के बाद बुक बंद करके बिना कहीं से कॉपी किए, बिना कुछ देखे, नोट्स नहीं बनाने हैं, रिकॉल करना है अपने मन से जो दिमाग में गया है ना वो सब नोट करने की कोशिश करनी है। ट्यून इन करके रखिए, इससे भी ज़रूरी बातें हमने बात करनी है, लेकिन इस गाने के बाद।

4:46 हो गए हैं, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन अनछुए बहुत ज़रूरी पहलुओं की जो कि आप इग्नोर करते हैं। अनछुए इसलिए क्योंकि आप उनको छूते ही नहीं हैं। अब हम आज के मुद्दे के सबसे बहुत ही ख़ास और ज़रूरी पॉइंट की तरफ पहुंच गए हैं और वो ज़रूरी पॉइंट है कि आपकी तैयारी के साथ आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपको सबसे बड़ी मदद करेगा। आपकी सबसे बड़ी मदद आपका स्वास्थ्य ऐसे करेगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप में क्षमता रहेगी, स्टैमिना रहेगा, तो आप और अधिक पढ़ने की, चैलेंजेस लेने की ताकत रखेंगे। और अगर आप अंदर से शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, थोड़ी सी कमी आपकी बॉडी में होती है, एक्टिव नहीं होते हैं, मसल्स लूज़ हो जाती हैं, स्टैमिना आपका कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस रहती है अंदर, तो जब भी कोई चैलेंज आता है, इंटरव्यू की बात हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की बात हो, तो आपको एंजाइटी होने लगती है। और फिर जब एंजाइटी होती है, कुछ इस तरीके की परेशानियां होती हैं, तो फिर हमारी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होती है जी। तो आज आप जो पढ़ाई करते हैं, रात भर दिन भर फोकस करके आप लगे रहते हैं पढ़ने में, लेकिन एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहने से बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। आप हैं या आपके जानने में कोई है या आपके बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप इस बात के लिए जोर डालने को कहिए कि उनका स्वस्थ शरीर उनकी सबसे बड़ी मदद करेगा, सबसे बड़ा ढाल बनेगा। खैर, तो आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि जितना मन लगन से आप पढ़ते हैं, चीज़ों को रटते हैं, तैयारी करते हैं, फोकस करते हैं, रिवीजन करते हैं, उतने ही मन से आपको दिन भर में एक घंटा हर रोज़ अपने लिए निकालना होगा। देखिए, शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर अगर हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी और लास्ट में जिस चीज़ के पीछे हम लगे हुए हैं वही प्रभावित होता है और वो है हमारी तैयारी। सही कहा ना मैंने? तो बस ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, और बहुत ही आसान सी, बहुत सरल और बहुत जनरल सी चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब आपकी फिटनेस आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ी हमसफर बनेगी आपकी अगर आप रोज़ एक घंटा अपने शरीर को देते हैं तो।

होगा। लेकिन जाते जाते सबसे जरूरी बात जो हमें आपसे शेयर करनी थी वो बात ये थी कि आपके स्वास्थ्य के साथ जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है आपकी नींद। शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात करें ना तो उसमें भी नींद सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी को और साथ में आपके दिमाग को भी रीसेट होने के लिए और फिर से री एनर्जाइज करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं 8 घंटे। जी हाँ, नींद को आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो भी रात की नींद को। रात की नींद मतलब आप अंधेरे में पूरी रात पढ़ते हैं और दिन में कुछ घंटे सो लेते हैं और उसके बाद बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ही आपकी नींद पूरी ना होने से आपका डाइजेशन ख़राब होता है, आँखों में परेशानी होती है, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर होते हैं और ढेर सारी परेशानियाँ धीरे धीरे आपके साथ चिपकने लगती हैं। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना और बहुत ज़रूरी तरीके से मैनेजमेंट करना, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही फोकस की आजकल कमी हो गई है क्योंकि डिजिटल युग है। जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, एक नोटिफिकेशन आया टिंग टोंग और तुरंत ही आप हो गए डाइवर्ट। आपके करियर के लिए, आपकी सफलता के लिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ज़रूर एक दिन अपनी मंजिल पाएंगे। आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो ज़रूर एक दिन अपनी मंजिल पाएंगे, या आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे प्रोग्राम यूथ वेव से लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम आपका अपना है, सुपर हिट प्रोग्राम, जिसके लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा 100.7 FM रेनबो। FM टॉप 10 प्रोग्राम है वो आपका, इसीलिए ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर। न्यूज़ ब्रेक के उस पार तुरंत होती है आपसे बात।

4:54 हुए हैं और इस खूबसूरत गाने के बाद आपका स्वागत है फिर से प्रोग्राम यूथ वेव में। लेकिन 4:54 का समय ये कहता है कि अब तो हमें

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेनानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेनानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों के अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहबाद में आयोजित जनसभा में कहा कि बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी और पानीपत से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रोजेक्ट अलंकार से पुराने विद्यालयों का जीर्णोद्धार और ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए बेसिक स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है। रायबरेली जिला अस्पताल में अर्धविक्षिप्त मरीज को महिला कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आज आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने वाले 8 निवेशकों को औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। ये परियोजनाएं ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, कॉस्मेटिक्स, पीसीबी निर्माण और स्टील फर्नीचर जैसे विविध क्षेत्रों में स्थापित होंगी, जिससे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण प्रदेश में निवेशकों के लिए पारदर्शी, त्वरित एवं उद्योग अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महोबा की जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर सभी गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित शिकायतों और असंतोषजनक फीडबैक पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

और नंबर 10 से शुरू करते हैं. तो आज का जो टॉप 10 गानों में से नंबर 10 मतलब सबसे टॉप का जो गाना होगा वो आखिरी में आएगा. तो इसके लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा. लेकिन आज एक रूहानी आवाज हम आपके लिए लेके आए हैं. रूहानी आवाज इसलिए क्योंकि वो जो आवाज है ना वो लोगों को दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है. वो ऐसी आवाज है जो दुनिया के सभी लगभग सब लोगों के दिलों में राज करती है. ये खूबसूरत आवाज जिसने अपनी आवाज से दिलों को रोमांस सिखाया, अपनी आवाज से लोगों को रुला दिया. कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चला कि अरे हम तो प्यार मोहब्बत में थे ही नहीं, तो रोना क्यों आ रहा है अचानक. आप समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आवाज़ सुनने के बाद आप खुद जान जाएंगे. तो आज के एफएम टॉप 10 प्रोग्राम का ये जो पहला यानी कि लिस्ट का 10वां गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है, आप इसे सुनिए और तुरंत वापस आएंगे हम नंबर 9th सॉन्ग लेकर.

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: बिल्कुल ये है धड़कन लखनऊ की। सलाम नमस्कार, फिर से आपके पास, आपके साथ, आपके रेडियो सेट पर हाजिर हूँ। आपके दोस्त चंद्रकला। 5:04 हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM Top 10। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है, साप्ताहिक हिट गीतों पर काउंटडाउन शो है, यानी कि आज के खास सुपरहिट 10 गाने अपनी लिस्ट के हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं। और आज जो सुपरहिट सेगमेंट है और जो सुपरहिट FM टॉप 10 सॉन्ग्स का सेगमेंट है, इसमें मैं किस को लेकर के आई हूँ और कौन से गाने होंगे वो टॉप 10 सॉन्ग्स, जैसा कि हम हमेशा आते हैं।

और ये खूबसूरत आवाज़ जो आपने सुनी, ये आवाज़ जो है वो थी अरिजीत सिंह की। और आज FM टॉप 10 में अरिजीत सिंह के हम 10 सुपरहिट सॉन्ग्स लेकर के आए हैं, जिनको सुनने के बाद लोग एक अलग सी दुनिया में तो पहुंचे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, जिन गानों को सुनकर के रूहानी सफर में दौड़ जाता है दिल, वो है ये गाने कुछ खूबसूरत आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 के। नंबर 10वां गाना तो आपने सुना, लेकिन जो नंबर 9th गाना है वो आपकी रेडियो सेट पर आने को है बेकरार। और ये रहा 9वां गाना आपके रेडियो सेट पर फिल्म केदारनाथ से।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: और इसी खूबसूरत म्यूजिक के साथ एफएम टॉप 10 का नंबर 8 गाना आपके रेडियो सेट पर आ चुका है।

बिल्कुल पता चलना चाहिए कि जालिमा क्यों कहलाई आखिर। और ये नंबर 7वां गाना आपके रेडियो सेट पर था, और अब आपके रेडियो सेट पर नंबर 6 गाना आ चुका है और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, चंद्रकला है आपके साथ।

और इसी के साथ पिन कोड का नंबर शेयर करते करते, ख्वाबों के अंबर को शेयर करते करते हम पहुंच गए हैं सॉन्ग नंबर 5 पे प्रोग्राम आज के FM टॉप 10 के। और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आज के FM टॉप 10 का 5वां, कहीं खो तो नहीं गए आप।

और इसी गहराई में डूबते डूबते हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं सॉन्ग नंबर फोर्थ पे। और चौथा सॉन्ग आज के एफएम टॉप टेन का एक अलग सी बात कह रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये बात। और ये हालचाल पूछने का अंदाज जो रूहानी है, सुन लीजिए।

और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के FM टॉप 10 के सॉन्ग नंबर 3 पे, और ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
7: बेशक आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा और मुस्कुराते मुस्कुराते आपको इस सफर में हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सफर है FM रेनबो का 100.7 की आपकी ट्यून की हुई फ्रिक्वेंसी का, और ये फ्रिक्वेंसी आपसे सिर्फ मोहब्बत की, प्यार की, खूबसूरती की और पॉजिटिविटी की बातें करती है, और करती है आपके काम की बातें जैसे ये

प्रोग्राम एफएम टॉप 10 आपके मन का, यानी कि बैक टू बैक आपको इतने खूबसूरत गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि आज के प्रोग्राम एफएम टॉप 10 का नंबर सेकंड टॉप 2 सॉन्ग ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए।

0: personalized diet plans or modern day treatments ka laabh.
1: Charak Hospital at Hardoi Road, Dubagga. 100.7
2: 5:55 हो गए हैं. FM टॉप 10 ये सुन रहे थे आप. प्रोग्राम आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय है. लेकिन FM टॉप 10 सॉन्ग में से आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का जो नंबर 1 यानी कि टॉप सॉन्ग है, शो स्टॉपर है, वो आपके रेडियो सेट पर रहा ये. और इसी गाने के साथ अब प्रोग्राम FM टॉप 10 को यही वाइंड अप करते हैं. लेकिन जो अगला प्रोग्राम है वो आपका अपना है, अपने शहर का है, वो है शामे अवध. बस ट्यून इन करके रखिए. न्यूज़ ब्रेक के तुरंत उस पार आपसे मिलते हैं.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक, स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों या नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों की फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्टर असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को लेकर विभिन्न माध्यमों में प्रसारित हो रही चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार

कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्ट असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को लेकर विभिन्न माध्यमों में प्रसारित हो रही चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विधान भवन के समक्ष स्थित अंबेडकर महान सभा परिसर में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश के संबंध में संस्कृति विभाग अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का स्थानांतरण संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अस्थि कलश अपने वर्तमान स्थान पर पूरी गरिमा के साथ यथावत सुरक्षित है और इसे स्थानांतरित किए जाने संबंधी समाचार पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। पहली जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित होने वाले वन महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर जिले में 55 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर वन विभाग के संयोजन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर के प्रभागी वनाधिकारी शुभम सिंह के अनुसार सभी पौधशालाओं में गुणवत्तायुक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। एथलीट और निशानेबाज लखनऊ की रचना गोविल ने 49वीं उत्तर प्रदेश राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिता दिल्ली के तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में चल रही थी। प्रतियोगिता का समापन आज 30 जून को हुआ। रचना गोविल की इस उपलब्धि पर खेल जगत की हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
1: गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार आप सभी को। प्यार भरा ये खूबसूरत शाम का जो सलाम मैं भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। 6:05 हुए हैं आपके।

दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, फिर से आ गई हूँ, हाजिर हो गई हूँ आपके रेडियो सेट पर ही सीधे। प्रोग्राम शुरू हो चुका है शामे अवध, ये समय प्रोग्राम शामे अवध का है और हमारी अपनी जमीन का है, अपनी गलियों का है, अपने शहर का है और अपनी धरती का है। ये शहर बहुत कुछ कहता है, ये अवध की शाम बहुत कुछ कहती है। खूबसूरत है, सुकून भरी है, दिन भर की थकन के बाद वापस लौटते परिंदे जो ठंडी ताजी हवा महसूस कर पाते हैं इतनी गर्म दोपहरी के बाद भी, वो और कहीं नहीं इसी अवध की शाम में है। तो बस हम भी हाजिर हो गए हैं इस खूबसूरत सी शाम में लेकर प्रोग्राम शामे अवध। और प्रोग्राम शामे अवध की शान में आज जो पहला गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है वो है ये खूबसूरत सा, इसे सुनिए। तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं अपने शहर की, आपके अपने काम की खबरों की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: 6:12 हो गए हैं। देखिए, मैं तो एकदम खो गई थी आपको खुशखबरी देते देते, मैंने ऐसा खो जाना था, अभी मैंने बता दिया था आपको कि 12 बज गए हैं, लेकिन 6:12 हुए हैं, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। तो पहली खुशखबरी तो मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि आज से जो है लू का असर ख़त्म हो जाने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। देखिए, सुबह सुबह सरोजनी नगर हो गया, गोमती नगर हो गया, और बहुत सारे कई सारे इलाके थे जिनमें बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी, और हवा भी चल रही है, और दिन भर आपने देखा होगा कि बादलों की वजह से धूप तो दिखाई नहीं दी। और मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की प्रबल संभावना है आज से, जो है वो लगभग मानसून जो है अलर्ट होने की संभावना है। लखनऊ का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री दिन में और 27 डिग्री के आसपास शाम के समय रहने का अनुमान है। लू का असर आज से खत्म हो जाने वाला है, जिससे जो भीषण गर्मी थी, बाहर निकलती मुंह नाक सूख रहा था, उससे राहत मिलने की संभावना है। और आपको पता है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। ऑब्वियसली कहीं कहीं बूंदें आई हैं तो हवाएं ठंडी ही होंगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमने सोचा है कि जब इतनी खूबसूरत हवाएं चलने ही वाली हैं, शाम के समय इतनी खुशी का मौका है कि मॉनसून आ गया। देखिए, इस मौसम का सबको होता है बेसब्री से इंतज़ार, तो खूबसूरत सा गाना इन हवाओं का असर देखते हुए आपके रेडियो सेट पर तुरंत वापस आते हैं अगली अपडेट लेकर।

और यूं ही जरा जरा हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं समय के उस मोड़ पे जहां पे समय बता रहा है, घड़ी बता रही है कि 6:19 हो गए हैं और खूबसूरत शाम आपकी है और जरा जरा आप बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का आपको पालन तो करना ही होता है। बाकी आप सतर्क हैं, सावधान नागरिक हैं और FM रेनबो से जुड़े हैं तो रोज तो हम आपको याद दिलाते ही हैं। एक खबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं। अब आपको जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लखनऊ के जो भी एप्लीकेंट्स होंगे ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, बंथरा में एक नया ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बना है, वहीं आपको जाना होगा। आपको पता है आज ही से इस सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन जो है होने के बाद यहाँ पर जितनी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के

लिए एप्लीकेशंस आएंगी वो सब यहीं पे टेस्ट किए जाएंगे। जी हाँ, ड्राइविंग टेस्ट कराने की जिम्मेदारी ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट DTTI को सौंप दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि आवेदक अगर आप हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के, तो ये टेस्ट जो है मॉडर्न ट्रैक पर जो भी आपके मानक होंगे उसी के हिसाब से कराया जाएगा। आप जब टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो जाएंगे ना, तभी आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दिया भी जाएगा। और ये खबर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी तो बंथरा में ही ये ट्रेनिंग सेंटर बना है, लेकिन पहला सेंटर तो यही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे। लगभग 4 सेंटर ऐसे खोलने की संभावना है। हम सोच रहे हैं कि ऐसे मौसम में और ऐसी बातों में जहां पर इतनी भीषण गर्मी के बाद थोड़े से मॉनसून की बात हुई हो, दस्तक दी हो, इतनी खुशी में अपनी खुशी बिल्कुल छुपानी नहीं चाहिए। तो ये खूबसूरत सा गाना फिर से आपकी रेडियो सेट पर, इसे सुनिए, झूमिए, तुरंत वापस आते हैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ।

6:27 हुए हैं और ठीक 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच का आंखों देखा हाल।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था

वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने आज बरेली में कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध किया जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला किया है। कानपुर में मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का आंकलन कर

26 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला किया है। कानपुर में मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का आंकलन कर अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में भारतीय उद्योग परिसंघ और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने अत्याधुनिक क्लिनिकल ट्रायल फैसिलिटी का उद्घाटन किया। चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति और जिला मिशन समिति के साथ बैठक की। बैठक में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। मथुरा के थाना राया इलाके में आज यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल हो गए। लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी 2 दिनों में प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: 7:14 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और हम देखते हैं कि आज प्रोग्राम हेलो एफएम में कौन से लिसनर हमारे साथ जुड़े। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सोएब अंसारी बात कर रहे हैं।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं सोएब जी?
1: जी सारे मेला रायगंज सरौली गोसपुर से बात कर रहे हैं।
0: जी कैसे हैं आप और कैसा है आपके यहाँ का मौसम?
1: जी मौसम तो बहुत मस्त था, आज नाइट हो चुकी है।
0: बारिश हुई वहाँ पे?
1: जी बारिश नहीं हुई यहाँ पर।
0: अच्छा जी। बारिश नहीं हुई है?
1: बारिश नहीं हुई है।
0: अच्छा चलिए, तो मतलब थोड़ा तापमान कैसा है?
1: तापमान बस मौसम ठंडा है।
0: अच्छा
1: आज कुछ बहुत था।
0: चलिए ठीक है, और आपके लिए हमने गाना तो क्यों किया है, बाकी कोई आप बात कहना चाहें तो बताएं।
1: जी नहीं, बस सुरेंद्र बिचर का गाना है गहरा हुआ।
0: गहरा हुआ
1: जी।
0: ठीक है, और कोई बात कहना चाहेंगे आप?
1: जी नहीं, बस डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल करिए।
1: बाबू अंसारी से अहमदपुर बाजार से।
0: जी।
1: मोहम्मद फैज है रामपुर कटरा बाराबंकी से।
0: जी।
1: और कुली अहमदपुर से मुनान अंसारी से।
0: जी।
1: और कुलदीप बोलता है उदौली बाराबंकी से।
0: जी चलिए ठीक है सोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, और आपकी पसंद का ये गाना हमने क्यों कर लिया है। शुक्रिया सोएब जी हमसे बात करने के लिए। और प्रोग्राम हेलो एफएम में सोएब जी की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर। इसके बाद आपकी फरमाइश की होगी बारी।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्पकला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
2: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले तीन दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी जी, लेकिन अभी आज आपने आंदोलन का बताया है।
2: नहीं, अभी तो आंदोलन का बताया है
1: जी।
2: ये गाना, ये दुनिया बदल गई, माने ये गाना आज पहले तो आप कहते हैं
1: जी,
2: आप FM की टीम ने आज से उन सभी ये गाना दे दिया। मेरे भाई प्रमोद तिवारी, प्रभाकर तिवारी के साथ हो गए, शर्मा जी को, राम बाबू शास्त्री हो गए, प्रेम कुमार सोजिया जी हो गए, राहुल भाई रावत हो गए, और
1: जी ठीक है मिंटू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये गाना हमें डेडिकेट करने के लिए। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि आपने हमें क्यों डेडिकेट किया ये गाना, वो भी कि ये दुनिया बदल गई।
2: नहीं तो जमाने के साथ गाना।
1: चलिए ठीक है मिंटू जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का ये गाना जिसमें आपने आप अपने सभी दोस्तों के नाम, हमारे सारे FM के टीम का नाम लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मिंटू जी की पसंद का ये जो गाना है आंदोलन फिल्म से, ये रहा आपके मोबाइल पर, ऐप पर, आप इसे सुनिए, इंजॉय करिए। तुरंत वापस आएंगे और आपकी फरमाइश प्ले करेंगे।

0: 7:40 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम. आप सुन रहे हैं दोस्त अपनी चंद्रकला के साथ और ये 100.7 एफएम रेनबो आपने ट्यून किया है. और अगले जो कॉलर हैं कौन जुड़े हमारे साथ ये देखते हैं. हेलो.
1: हेलो, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
0: नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी सब ठीक हैं. पास है मंजिल, दूर है किनारा.
0: जी
1: कल मैम ट्यून नहीं किया आपने एसएमएस, शामिल हमारा
0: कल
1: भूल गई नंबर या फिर नाम हमारा.
0: अरे
1: गुड मॉर्निंग में ये आपको मिल गया, हम तो कोई प्यारा
0: नहीं. नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये जो आपने राइम बना करके बोला है ये तो मतलब बड़ा अच्छा लगा हमें. लेकिन ये जो है आपका सिस्टम बोलने का बढ़िया तरीका है. लेकिन
1: थैंक यू मैम.
0: लेकिन

0: लेकिन वो शायद मिस हो गया होगा या कहीं छूट गया होगा, ऐसा नहीं है कि
1: गुड मॉर्निंग,
0: हम
1: लखनऊ में थी आप और आकांक्षा मैम।
0: जी। हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो कहीं पर और छूट गया हो, पर बिल्कुल भी उस बात से आप नाराज ना हो, कई बार छूट जाता है, बहुत सारी मेल्स होती हैं
1: जी मैम,
0: आपकी
1: बाकी
0: पस।
1: माशाल्लाह से आप जब शामिल करती है ना मैम,
0: जी
1: मेल तो पूरा ही करती हैं, ये तो मालूम है मुझे।
0: हाँ बिल्कुल, अब मिल जाता है तो कोशिश करते हैं कि ये मेल पूरी
1: कई
0: शामिल
1: बार
0: की जाए।
1: आपने 1 बजे प्रोग्राम में ऑटो पे चली बात में शामिल किया है मैम,
0: जी
1: तो पूरा ही किया है आपने, अलहमदुल्ला पूरा पढ़ती हैं आप, ये तारीफ है आपकी।
0: जी, मेल तो हम आपकी पूरी शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा ही किया जाए, कभी कभी हो जाता है। तो आप बताइए, आपकी पसंद का गाना तो हमने क्यों किया है, बाकी कोई बात आप कहना चाहें तो कहिए।
1: जी मैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: आपने एड्रेस पूछा नहीं ना इसलिए बता दी मैंने,
0: जी
1: आपने एड्रेस नहीं पूछा ना मेरा, तो
0: हाँ,
1: मैंने क्या
0: अच्छा,
1: आपको बता दूं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आप बताएं, आप खुद से बता दिया करें।
1: जी कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान
0: जी
1: रजा बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: जी
0: अब कैसा
1: और
0: है बरेली का
1: ऐसे
0: मौसम?
1: मौसम मैम इस टाइम बहुत अच्छा हुआ है, आज ही से बारिश हुई है, सुबह आए थे बिना भैया तो
0: जी
1: बारिश लेके आए थे,
0: अच्छा, क्या बात है,
1: पुष्पांजलि लेके आए तो बारिश तुरंत चालू होने लगी 6 बजे से ही। रेडियो
0: अच्छा। तो आप लोग कैसे सुनते हैं, मतलब रेडियो से सुन रहे हैं कि
1: तो आता नहीं है, ऐप उस पे आता है, ऐप पे। जी
0: ऐप पे ना? जी, रेडियो पे तो अभी हमारे यहाँ वर्ल्ड कप की अपडेट जा रही है, लेकिन ये हम ऐप पे सुनने वाले श्रोता जितने हैं वो हमें इस पर लाइव सुन सकते हैं।
1: नहीं हमारे पे रेडियो पे वैसे भी नहीं आता है, क्यों दूर पड़ता है ना बरेली
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: से
0: जी
1: लखनऊ से।
0: जी चलिए ठीक है सुल्तान रजा जी, अब मैं आपकी पसंद का गाना प्ले कर देते हैं और
1: मैम
0: फिर।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत टाइम से सोचा था कि मैम से बात हो जाए तो अच्छे रहे, तो
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमने
1: आज
0: हमें भी
1: मालिक
0: ऐसा
1: ने सुन ली। जी
0: बिल्कुल, आज मुझे लग रहा है पहली बार आपसे बात हुई
1: जी
0: है।
1: जी जी जी
0: चलिए बड़ा
1: आपके
0: अच्छा
1: मतलब
0: लगा।
1: तो नाम तो बहुत सुना अपना मेल के जरिए, लेकिन आज जो बात हो रही लाइव ये पहली बार हो रही है।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें भी, फिर कभी और बात होगी आपसे किसी और
1: जी जी
0: प्रोग्राम
1: मैम
0: में।
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने, माफ़ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और ये जो कॉल थी ये सुल्तान रजा की थी, और उनकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सात बजकर के ठीक 50 मिनट हुए हैं और प्रोग्राम हेलो एफएम चल रहा है। हेलो एफएम प्रोग्राम में अब जो अगली फरमाइशी कॉल है, देखते हैं कि वो किसकी है, कौन से श्रोता जुड़े हमारे साथ। हेलो,
5: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
4: गुड इवनिंग जी, अपना नाम बता दीजिए।
5: जी, हम गुलफ्शा सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से।
4: गुलफ्शा जी, कैसे, आपका नाम गुलफ्शा है कि गुलफ्शा है?
5: गुलफ्शा है।
4: गुलफ्शा ना?
5: जी जी मैम।
4: अच्छा, और कैसा है संडीला का मौसम गुलफ्शा जी?
5: बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है, आज बारिश भी हुई थी।
4: उमस नहीं हुई वहाँ, ये बताइए, उमस
5: नहीं दोपहर के बाद?

0: निकल आई थी तो गर्मी शुरू हो गई थी। अभी
1: अच्छा,
0: गर्मी पीछा नहीं छोड़ेगी इतनी आसानी से। ये
1: क्या लगता है आपको कब तक गर्मी रहेगी?
0: गर्मी जुलाई अगस्त तक रहेगी हमेशा।
1: जुलाई अगस्त। हाँ वही, आपकी बात तो बिल्कुल सही फील हो रही है मुझे। जून मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी।
0: जी मैम, बरसात भी होगी और गर्मी भी होगी, दोनों होगी।
1: लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी कम होगी ना?
0: जी मैम, लेकिन जुलाई में होगी। जी
1: जुलाई भर गर्मी होगी।
0: मैम, बिल्कुल
1: आपका अनुभव बता रहा है कि आप यूं ही कह रही हैं?
0: मैम, हर साल होती है। लोग
1: अच्छा ठीक है, हमें तो लगा कि बारिश होगी तो।
0: नहीं मैम, लोग कहते हैं इस साल गर्मी ज्यादा है, इस साल गर्मी ज्यादा है, लेकिन हर साल होती है।
1: जी हाँ, हर साल तो होती है, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि बारिश अगर होती रही थोड़ी थोड़ी बीच में तो थोड़ी सी राहत रहेगी।
0: लेकिन मैम, जब बारिश ज्यादा होगी तभी राहत मिलेगी, अगर बारिश थोड़ी होती है ना तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। जी
1: बिल्कुल, वो पता है कैसी फीलिंग होती है, वो जैसा लगता है गर्म तवे में जो छींटे मारे जाते हैं पानी।
0: डोसा बनाने के लिए तैयार।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हम इंसान जो है मोमोज की तरह स्टीम
0: जी
1: होंगे
0: मैम,
1: बिल्कुल।
0: जो दीवारें गर्म होती है उस पर थोड़ी सी छींटे पड़ जाती है तो और भी गर्म हो जाती है। जी
1: ये तो बात है, उमस भरी गर्मी होगी,
0: मैम,
1: स्किन पर एकदम अजीब सा चिपचिपाहट रहेगी।
0: जी मैम, जैसे लगता है तेल निकलना है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुलफ्शा जी, आप क्या करती हैं, घर पे
0: जी हम
1: रहती
0: घर पर
1: हैं?
0: रहते हैं, हाउस वाइफ हैं, घर
1: आप शादी हो गई,
0: का
1: आपके
0: काम
1: बच्चे
0: करते।
1: हैं?
0: जी जी मैम, शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं।
1: अच्छा, कितने बड़े हैं सब?
0: जी मैम, ये बेटी 9 साल की है, बड़ा वाला बेटा 7 साल का है, छोटा वाला बेटा 3 साल का है।
1: अरे वाह, तो बढ़िया, मतलब एकदम फुर्सत से हैं आप, मस्त।
0: जी मैम, फुर्सत से है, हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड बाहर हैं,
1: जी
0: इंडिया से बाहर है वो।
1: ज़्यादा आपको टेंशन है नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एकदम फ्री आप?
0: जी मैम, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा है। हाउस वाइफ का जॉब बहुत कठिन है, दुनिया का सबसे कठिन जॉब है।
0: जी मैम, घर के सारे काम करना होता है। जी
1: काम तो कोई भी कर लेता है गुलफ्शा जी, लेकिन घर संभालना और बच्चों को अच्छी परवरिश देना और रिश्तों को संभाल के रखना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, हर किसी के बस की
0: मैम,
1: बात होती नहीं है। नहीं, घर तो संभालती होंगी आप, लेकिन साथ में ये भी तो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, घर वालों को अच्छे से बांध के रखना है।
0: जी, मैम, ये सब जिम्मेदारी हम लोग सबकी होती हैं।
1: भले ही किसी पे कितना गुस्सा आए, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं?
0: जी मैम, गुस्सा कहाँ दिखाया जाता है।
1: बिल्कुल, तो ये सब तो ताकत है। खैर, तो आपकी पसंद का जो गाना है हमने तो क्यों कर लिया है, बाकी कोई बात आपको कहनी हो तो कहिए।
0: जी मैम, 2 4 नाम ले लें।
1: जी जी बिल्कुल।
0: वैसे आज हम तो सुन नहीं पा रहे, हम तो रेडियो पे सुनते हैं, आज मैच आ रहा है। जी,
1: हाँ, ऑन ऐप पे सभी लोग सुन रहे होंगे।
0: हमारे दोस्त सुन रहे हैं।
1: जी
0: जी रोशनी रावत हैं, बबीता राव हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को, सबसे पहले आपको। जी
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: मैम, थैंक यू कॉल उठाने के लिए।
1: ओके गुलफ्शा जी, फिर होती है आपसे बात, और बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफ्शा जी की फरमाइश के साथ ही आज प्रोग्राम हेलो एफएम को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित ना रहे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली दौरे के दौरान विकास, संस्कृति और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और नगर निगम की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खरीदे गए 51 नए चारपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार

उन महापुरुषों साहित्यकारों को उचित सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने समाज और संस्कृति को समृद्ध किया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर आगरा के एतमादपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा एक न्यायपूर्ण शासन, सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण वाला नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एस

सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण वाला नीतिगत शासन चलाया, जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र आज संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस पर्यटन सत्र के दौरान दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में भारतीय विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का दीदार किया। इस दौरान पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 56,567 भारतीय व 216 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। दुधवा टाइगर रिजर्व में भारतीय पर्यटकों की संख्या 75,615 रही, जबकि यहां 796 विदेशी पर्यटक भी आए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में आज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जिस पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार, आपके अपने न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
5: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
4: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
5: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
6: धड़कन लखनऊ की
5: 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
7: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
5: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

बातों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

आपके आने की उम्मीद हमारे दिल में हमेशा रहती है. हमें पूरा यकीन, पूरा विश्वास रहता है कि आपसे मुलाकात होगी, इसलिए दिल के दरवाजों को हमेशा खोलकर रखते हैं आपके लिए. रात के 8:13 का वक्त हो चुका है. आबशार का ये सफ़र आपके साथ शुरू कर चुकी हूँ मैं, आपकी मेज़बान, आपकी रज़ा. और बात जब आबशार की आती है तो कहते हैं कि जब बात दिल की गहराइयों से निकले एहसास की हो तो ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम और जहन में एक ही एहसास जगता है, जिसे हम गज़ल कहते हैं. तो आइए आज की इस खुशनुमा शाम को इसी रूह गज़ल के नाम करते हैं, जहाँ हम सुनेंगे इश्क, जुदाई, वसल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों को बयां करती चंद गज़लें, महफिलें आबशार में. और रही बात आपसे मुलाकात की, तो ये दिल हर वक्त ये चाहता है कि हर लम्हा आपका दीदार होता रहे, आपसे मुलाकातों के दौर चलते रहें. रात के 8:14 का वक्त, आबशार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी मेज़बान रजा के साथ.

तो हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आपके होंठों पर मुस्कान बनी रहे, ये मुस्कुराहटों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। रात के 8:42 का वक्त हो चुका है, आप शार को यहीं पर रोकने की, खत्म करने की हम लेंगे आपसे इजाजत, क्योंकि ठीक 8:45 पर समाचार संध्या होगी और फिर 9 वापस जुड़ेंगे साथ आपके आपके अपने न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए और साथ ही आपके ऑनलाइन रेडियो के जरिए, जहां लेकर हम आएंगे आपका अपना शो रेनबो कैफे। तो बस सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक

0: दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सौरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र

0: कुसुम बोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को

कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
4: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जी बिल्कुल, दिल खोलकर मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, और उससे भी ज्यादा मुस्कुराने की वजह जो है वो ये है कि आप इस वक्त आपके अपने रेनबो पर हैं, वो रेनबो जो आपके दिलों की धड़कन है। और जब बात दिलों की धड़कन की आती है तो मुझे पता है कि जो जोर जोर से धड़कता है ना, इसकी आवाज यहाँ तक सुनाई पड़ती है। तो रात के 9:05 का वक्त हो चुका है, वापस आप सबके साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपके रिचा, लेकर आपके लिए आपका मोस्ट अवेटेड शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे। न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए इस वक्त अभी आप हमें सुन रहे हैं। फिलहाल ये सिलसिला यही जारी है, 11 बजे वापस मिलेंगे आपसे आपके रेडियो के जरिए। फिलहाल तो चलिए, न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आप, हम और आपका अपना रेनबो।

ये तो होगा ही, जब रेनबो कैफे का सफर शुरू होगा तो मुझे पता है कि हर तरफ जो है ये तहलका मचेगा मचेगा। रात के 9:12 का वक्त हो चुका है, आपका है मुझे बेसब्री से इंतजार। आपके अपने FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। भले आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए, लेकिन मुझे पता है कि जब भी ये शो होता है ना तो आप कहीं ना कहीं से कान लगा के हमें

फिलहाल तो जो हमारा ईमेल बॉक्स है ना वो बिल्कुल जबरदस्त भर चुका है आपके ईमेल्स के थ्रू और हमको वापस वहां सब पर जाना होगा क्योंकि अगर मैं आपकी ईमेल्स नहीं पढ़ूंगी तो बड़ी सारी बारिश आ जाएगी और उसके बाद बड़े सारे ईमेल्स जो है वो रुक जाएंगे। हालांकि मोनू सेठ जी लिख रहे हैं रेनबो कैफे सुन रहा और अगर बारिश हो जाए तो फिर क्या ही कहना। तो अगर आप चाहते हैं कि बारिश हो जाए तो फिलहाल तो यहां मेरे साथ रहिए और कहते हैं फिंगर्स अगर क्रॉस करके रखें और किसी चीज की दुआ अगर की जाए दिल से तो वो काम हो जाता है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि हाँ बारिश हो जाएगी। वैसे भी फोरकास्ट जो है मौसम को लेकर वो तो यही है कि हाँ बारिश आप तक पहुंच जाएगी थोड़ी थोड़ी करके इसे, लेकिन अभी पहुंचेगी, थोड़ा इंतजार करें और इंतजार का सब्र मीठा होता है, यहाँ पर जो है बारिश के रूप में होगा। क्या कहते हैं आप। 9:17 का वक्त हो चुका है, रेनबो कैफे इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी अपनी न्यूज और AIR ऐप के जरिए आपकी दोस्त आपकी रचा है आपके साथ। राम राज जी का भी ईमेल आ चुका है मेरे पास और लिख रहे हैं कि मेरे साथ जो है पहाड़ीपुर से आपने ईमेल किया है, रायबरेली गांव से।

और रामराज राजू भानु रामचरण शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका और सबसे पहले आपने लिखा है कि आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे वो मुझे पहुंच गया और आपने जो लिखा है साथ में वो भी हम ध्यान रखेंगे कि आपकी इस बात को भी हाँ आगे से ज़रूर से अमल किया जाए ठीक है और आपने गाना भेजा है चलिए शुक्रिया रहिए मेरे साथ और आपके ईमेल्स आ जाते हैं ये बड़ी बात है बाकी तो बातें बात की होती हैं अशनूर नूर अंसारी भी हैं हमेशा की तरह और कह रहे हैं रेनबो कैफे सुन रहा हूँ और जिसने भी प्रस्तुत किया जो भी प्रस्तुत कर रहा है उसको हमारा प्यार भरा आदाब तो आपको पता है कि नाम ऋचा है नाचिस को ऋचा कहते हैं और आप जब जुड़ जाते हैं तो फिर क्या ही बात होती है आपने लिखा है कि ग्राम व पोस्ट हर हर मटकली जिला बरेली से मैं रोज इस कार्यक्रम को सुनता हूं और आपके साथ फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इरदीसी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान भी हैं जो साथ में प्रोग्राम को सुनते हैं और हमें क्या चाहिए आप साथ बने रहें और ये जो मौके हैं ये यूं ही एक दूसरे के साथ हम सेलिब्रेट करते रहें इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है ना सुल्तान रजा जी का भी ईमेल मेरे पास है और आपने लिखा है कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपके साथ इकबाल रजा जीशान अफजल मोनेश सादिक और आपके मम्मी पापा पूरा रजा परिवार साथ में सुनता है अच्छा लगता है ये पढ़ करके और एक प्यारा सा आपने कुछ लिख करके भेजा है लिख रहे हैं कि क्या लाइन है मन में सबका अरमान नहीं होता मन में सबका अरमान नहीं होता हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता पर जो एक बार समा जाए दिल में उसे भूल जाना इतना आसान नहीं होता जानते हैं हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से तभी तो देखो फक्र से कहते हैं और बिल्कुल यू नो एकदम डंके की चोट पे कहते हैं कि आप भूल नहीं सकते आपका जो रेनबो है ना ये हमेशा आपके दिल में बसा रहता है दिल में रहता है आपके जिसे आप कभी भूल नहीं सकते तो आपने जो लिखा एकदम 110% सही लिखा हुआ है आगे भी ऐसे कुछ अच्छा लिखते रहिए ताकि हम आपकी बात वापस आप तक पहुंचाते रहे लेकिन अगर अभी अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए तो मैं आपको बता दूं रेनबो कैफे इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त आपके रुचा के साथ और मजा तब आएगा जब आप भी आ जाएंगे साथ में क्या समझे तो आइए इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप 9:19 का वक्त हुआ है अभी तो अच्छा खासा वक्त है जहां आपके लिए कुछ अच्छे प्यारे वाले गाने हम पहुंचा सकेंगे सुनते रहिए न्यूज जुड़े रहिए

वाकई ये एक बड़ा सवाल, और इसके लिए आपको होम साइंस में मास्टरी करनी पड़ेगी। वो जो भी कह रही थी ना कि होम साइंस भूल गई, तो भैया होम साइंस वगैरह सीखिए, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। चटनी के बिना वो कैसे ये मजा आएगा। तो 9:28 का वक्त हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे जब तक रेनबो कैफे आपके साथ ना हो आपको मजा जरा कम आता है। तो चलिए आपके रेनबो पर, रेनबो कैफे के सफर में न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। और आपके इतने सारे ईमेल्स मेरे पास हैं तो मुझे लगा अब भैया बड़ा हुआ, गाने मैंने बजा लिए 2-4 एक साथ, वापस लौट करके आते हैं और आपकी ईमेल्स को वापस आप तक पहुंचा देते हैं। रोशनी रावत का ईमेल आ चुका है हमारे पास, और जब भी इनका ईमेल आता है तो हम कहने से चूकते नहीं कि भाई देखो रोशनी जब आती है तो रोशनी बिखेरती हुई आती है। आपने पूछा मैं कैसी हूँ, तो बहुत अच्छी हूँ। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप मुझे सुन रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं गूगल के जरिए, और फिर अभी तो हम रहने वाले हैं यहीं पर ही आपके साथ, और ये सिलसिला तब और पूरा होता है जब आप हमारे साथ हो जाते हैं। आपने लिखा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है और जो तारीफें लिखी हैं दिल से धन्यवाद। ग्राम बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आप की रहने वाली हैं और चंडीगढ़ में रहकर प्रोग्राम को सुनती है, और साथ में आपने लिखा है कि हर बात में एक अलग ही बात होती है। मतलब अर्ज किया है कि साथ इन्होंने लिखा है कि आपकी हर बात में एक अलग ही बात होती है और आपकी यादों के सहारे ही तो हमारी रात होती है। अरे अभी तो रजनीगंधा होना बाकी है, वो एक सफर आपके साथ हमको पूरा करना है, तो उम्मीद यही है कि आप रहेंगी हमारे साथ, है ना, रहेंगी ना हमारे साथ। और अगला ईमेल जिसका है ये है आनंद तिवारी जी, और आपने लिखा है दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, एक तरफ बरसात का मौसम कभी आया ना था। वाह वाह वाह, क्या भैया, मतलब ये अच्छी वाली आपने शायरी कर दी, बादल भी छा गए और बारिश भी नहीं हुई। चलो खैर कोई बात नहीं, सभी को हैप्पी बारिश आपने बोला है तो हम भी कह देते हैं आपके साथ साथ, हम भी इंतजार में हैं हैप्पी वाली बारिश के, जल्दी यहाँ भी बादल बरसेंगे। बहरहाल तो आपके रेनबो पर, आपके जो रेनबो कैफे ना उसके गाने बरस रहे हैं, इसको एंजॉय करते रहिए आप। और आपने हमें दारू कुया मल्लावा हरदोई यूपी से आपका ईमेल भेजा है, और आपको ये शो अच्छा लग रहा है ऐप पर आप सुन रहे हैं, दिल से धन्यवाद उसके लिए भी। कृष्णकांत सिंह जी भी है हमारे साथ, और हमेशा की तरह आपका जो लिखने का अंदाज है ना ये दिल को छू जाता है। आप लिखते हैं कि रेनबो कैफे कार्यक्रम और बारिश की पहली फुहार बड़ा सुकून दे रही है। चलो अच्छी बात है कि आपके यहाँ बारिश हुई, और हर मंगल और शनिवार को ये प्रोग्राम बड़ा ही धमाल मचा देता है, बस इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाला आरजे ऋचा जी जैसा होना चाहिए। वाह वाह वाह वाह, क्या बात, ये लाइन तुमने पढ़ी ही नहीं थी, अब पढ़ ली, अच्छा लगा कि आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपने लिखा है कि बड़े सुपर फास्ट अंदाज में इस प्रोग्राम को आप होस्ट करती हैं तो बहुत ही उम्दा लगता है। देखो बस हम कोशिश करते हैं कृष्णकांत सिंह जी, और आप सबको अच्छा लग जाता है, ये हमारे लिए यू नो कॉम्प्लीमेंट जैसा कुछ हो जाता है। और आपने हमेशा की तरह में कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा, आगे भी लिखते रहिए भेजते रहिए और हम उसको वैसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। महेंद्र दीपन जी भी हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं आपको राजस्थान की पावन माटी से सादर प्रणाम, तो मेरा भी प्रणाम कहिए उस धरती को, उस भूमि को जहां से आप आते हैं राजस्थान से। बहुत ही खूबसूरत शहर है, रंग बिरंगा शहर, एक बार जाना हुआ था और फिर वहां की जो मतलब रंग बिरंगी ये सब चीज़ें ना देख के मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, अच्छा लगा कि हाँ राजस्थान की बात अगर कही जाती है तो ये है अपने आप में अनूठा, है बिल्कुल अपने आप में अलग। रूड़गांव जिला नागौर के महेंद्र दीपन का ये प्यार भरा पैगाम है, लखनऊ FM रेनबो के रेनबो कैफे ने आज तो सच में गर्दा उड़ाया है, सोशल मीडिया पर आपकी धूम देखकर ही मैं इस महफिल में खिंचा आया हूँ, आपकी शानदार प्रस्तुति को आज पूरे 11 बजे तक लगातार सुनेंगे। नहीं आप और देर तक रहिए हमारे साथ, हम तो ये चाहते हैं महेंद्र जी, क्योंकि जब आप सब साथ रहते हैं तब अच्छा लगता है। और वैसे भी जब हम 11 बजे आपसे जुड़ेंगे ना तो भारतीय सिने जगत की बहुत यू नो फेमस शख्सियत को आपसे मिलवाना है, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है।

बहुत ही फेमस संगीतकार हैं, तो उनको सुनना मत भूलिए. एक घंटे के सफर में हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आप तक हम पहुंचा सकें. और बातों और बेहतरीन गानों के सफर में खोकर खुशियों के पल बुनेंगे. लिखते हैं रात 11 बजे ही सोना पड़ेगा क्योंकि सेहत के लिए 7 घंटे की नींद भी जरूरी. देखो बात तो ये सही है पर कभी कभार कुछ ऊपर नीचे तो किया ही जा सकता है जब कुछ खास हो सुनने के लिए और सुनाने के लिए, है ना. आपने लिखा है हंसते मुस्कुराते अपने सम्मान आपके सम्मान मेरी कुछ लाइनें की शायरी अब पूरी है. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. इतनी शिद्दत के साथ जब आप लिख कर भेजते हैं तो पढ़ना भी हमारा फर्ज हो जाता है. धन्यवाद, आगे भी लिखते रहिए, भेजते रहिए. गुलफ़ज़ा सिद्दीकी भी आ चुकी हैं. क्या लिख रही है? संदीला से आपका ईमेल है. आप प्रोग्राम बहुत जबरदस्त करती है, मैं मजा आ जाता है, अच्छा लग रहा है सुन करके, पढ़ करके इनफैक्ट. और आपने लिखा सुनकर आपको मैं खाना खाकर आराम से सुन रही हूँ. अच्छी बात है, बहुत रिलैक्स होकर सुनिए. अभी तो हम रहने वाले हैं रात 12 बजे तक आपके साथ. और आपने लिखा है कि इस वक्त घर की छत पर है. मौसम कैसा है वहाँ का? अच्छा है ना, बताइए मुझे ये भी. और आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, ममता गौतम, निशा अंसारी, महक अंसारी, सब सुन रहे हैं. रोशनी मेरे पास आ चुकी हैं, बाकियों का आना अभी बाकी है. अगर सब अपनी हाजिरी लगा दें एक एक इंडिविजुअल तरीके से तो फिर क्या ही बात होगी. क्या कहती हैं गुलाब साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? नीरज कुमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं हेलो डियर प्यारी क्यूट रिचा दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो. और पिंकी रिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से हैं. मतलब नीरज कुमार साहब की आईडी से ये पिंकी रिंकी चुपचाप निकलकर बाहर आ जाती है और फिर लिख रही है कि हम लोग एकदम चकाचक हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, निवेदन है भोजपुरी सॉन्ग चला दीजिए. तो आपने आने में देर कर दी मुझे लगता है पिंकी, शुरुआती हमने भोजपुरी से की है, 2-3 तो अब तक हम बजा ही चुके हैं. कोई बात नहीं, अभी आगे भी बजेंगे तब सुन लीजिएगा, है ना. और आपके साथ पूजम दीदी कानपुर से हैं, गुंजन तिवारी, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, समा परवीन, सुरभि सिंह, ममता दीदी, मोहम्मद फैज, वकील अहमद, सुषमा दीदी और हिमांशु यादव हैं जो साथ में हमें सुन रहे हैं. 9:34 का वक्त हो चुका है, यहां थोड़ा रुक जाएं, क्या कहते हैं आप? गानों के सिलसिले भी, गानों के दौर भी चलते रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. तो चलिए अगला गाना आप तक पहुंचा दिया, इस गाने को एंजॉय कीजिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जिसे आप सुन रहे हैं रेनबो कैफे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए. और आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी रिचा.

है ये बात हम बहुत दिल से जानते हैं कि हाँ पहली नजर का पसंद है ये आपका जो रेनबो है ना, और अपनी बात करें तो हाँ जाहिर सी बात है कि आपसे प्यार तो पहली नजर में हुआ भाई, जब से आप जुड़े हमारे साथ तो जिंदगी में रौनक तो है, रेनबो के अंदर वो एक फील तो है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ जोड़ ही लेती है। ईमेल्स का सिलसिला अगर देखूं तो बड़े सारे ईमेल्स हैं मेरे पास वापस। मुनेश कुमार राज जी का ईमेल है और कह रहे हैं इसके पहले कि मेरी बैटरी जो है मोबाइल की खत्म हो जाए आपसे निवेदन है कि जल्दी से मेरा ईमेल पढ़ दें, मैं आपकी आवाज़ सुन लूँ, बस यही इच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी इच्छा को हम पूरा ना करें फिलहाल, अभी ये तो चलिए दिख गया ईमेल सामने तो फटाफट आपका ईमेल हम पढ़ देते हैं। और आपने हमें लिखा है भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से, और आप लिख रहे हैं मौसम से तो 100% राहत है और मौसम बहुत सुहाना है बाहर, मगर एक बात का दुख है कि मोबाइल की बैटरी बहुत कम है। बट आप परेशान ना हो, मैंने आपका ईमेल पढ़ लिया, और अगर आपकी मोबाइल की बैटरी रहते रहते ये ईमेल आपको मिल गया है तो मुझे बताइए वापस कि हाँ आपकी जो इच्छा है आज वाली ये पूरी हुई है ना। ब्रजेश सिंह जी का भी ईमेल है और आपने हमें इटहुआ कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा है, लिख रहे हैं एक भंडारा भोज में आया हूँ, जबरदस्त कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ। अच्छा एक बात बड़ी सोचने वाली है, आप भंडारा भोज में हैं, बड़ी सारी आवाज़ें होंगी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और सुन पा रहे हैं, यकीन मानिए मानना पड़ेगा कि दिल लगी हो तो फिर ऐसी हो कि जहाँ से दिल लगा है वहाँ से कोई हटा नहीं सकता आपको, आपका रेनबो आपके दिलों में ऐसा जज्बा बैठा है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले ये तो रहेगा आपके साथ। आप लिख रहे हैं हर कोई ज़िंदगी में ख़ास नहीं होता, आप जैसे आरजे ज़िंदगी में ना हो तो ये दिल बहुत उदास होता है, तो हम यहीं आपके पास हैं, आप बिल्कुल दुखी ना हो, एकदम परेशान ना हो। और जो फरमाइश लिखी है चलो अभी देखेंगे, फिलहाल अभी तो आपको पता है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम है नहीं, है ना, नोट कर लेंगे लेकिन अगली बार बचा देंगे, ठीक है। रेनू देवी जी का ईमेल है, आप लिख रही हैं प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम आपके सारे अच्छे लगते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपने लिखा है कि आज अपने पापा के साथ सुन रही हैं विलेज मैनी भावाखेड़ा और रास उन्नाव से, तो पिताजी को मेरा प्यार भरा नमस्ते कहिए और उनसे कहिए बदले में अपना आशीर्वाद देते रहें आपको भी और हमें भी, है ना। राजेश कुमार विद्यार्थी जी भी आ चुके हैं, शोध छात्र राजेश कुमार सौरभ कुमार, इन्होंने साथ साथ लिखा है, लिख रहे हैं कि टीचर तुम बड़े होकर क्या बनोगे। अच्छा आपने जो लिखा मैं उसे वापस पढ़ूंगी पहले, उसके बाद आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ भाषा जो है वो रेडियो के हिसाब से भी होनी चाहिए, ये आप जानते हैं, तो थोड़ा वक्त दीजिए। और आपने लिखा है कि टमाटर बिना चटनी कैसे बनी, गाना मस्त लगा, अच्छा लग रहा है, लखनऊ का मौसम कैसा है, यहाँ मेरे यहाँ मोदीपुरम मेरठ में मौसम बहुत गर्म है फिलहाल, तो अभी हम स्टूडियो में हैं, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं बाहर का मौसम कैसा है, रही बात रेनबो की तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी ईमेल्स हैं और ईमेल्स के साथ आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं दिल को बड़ा सुकून दे रही हैं। कुलदीप मौर्य धनीपुर मितौली।

हिमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आपने लिखा राधे राधे, इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए। कौन है आपके साथ? मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, दिव्यांश मौर्य, पूर्वी मौर्य और सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद कि आप सब इतना वक्त निकालकर मेरे साथ हैं। विजयपाल यादव जी भी आ चुके हैं ललहुआ लखीमपुर खीरी से। चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, आगे बढ़ना है तो हर हाल में चलना होगा। सफलता कभी किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए खुद को बदलना होगा। एकदम 110% आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहनत ये तभी तो कुछ होगा ना, तभी कुछ बेहतर मिलेगा आपको। और आप लिख रहे हैं आबशार आपको अच्छा लगा और आपकी मधुर आवाज में कार्यक्रम अच्छा लगता है, ये पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रहे हैं जो आप ये लिख देते हैं तो। और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है इसलिए अच्छी बात है, मौसम भी ठंडा है और ऊपर से प्रस्तुति और भी शीतलता प्रदान कर रही है। सभी के साथ आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, दिल से धन्यवाद सबको। और आपने नाम किसका लिखा है मैं देख लूं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूले, आपका ईमेल हमने पढ़ लिया है विजयपाल जी। आपके साथ बबलू यादव, राजेश कुमार, ग्राम वापोस ललहुआ खीरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। रवि कांत जी क्या लिख रहे हैं? दिल्ली परिवहन विभाग DTC से हैं, एकदम गधा उड़ा रखा है। शुक्रिया आपके ईमेल के लिए रवि कांत जायसवाल जी, इतना लिखने के लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद। कुलदीप मौर्य जी आपका ईमेल हम शामिल कर चुके हैं। और वापस किसका ये ईमेल? बबीता देखो आ गई, मैंने दिल से पुकारा था कि कहाँ हैं सब, अपनी अपनी हाजिरी लगा दे, तो बबीता भी आ चुकी है। और आपने लिखा कि आप शायर आपको अच्छा लगा, रेनबो कैफे भी मस्त लग रहा है, चलिए धन्यवाद आप सुन रही हैं अगर तो। और आपने लिखा है कि आप हमारे लिए कितने अजीज हैं, इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हम आपको सुनने के लिए आज क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप वो भी देखते रहें वो भी सुनते रहें, हम तो हैं ही आपके साथ। आपने लिखा आप मेरी फेवरेट आर्ज हैं, बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आगे आपने जो नाम लिखे हैं तो रोशनी रावत आ चुकी हैं, महेंद्र भाई का ईमेल अब पढ़ चुके हैं आपके, और तालिब, आसिफ भाई, गुलफसा, नीलू, शाजिया, साहिबा, सभी को मेरा प्यार भरा जो है एक संदेश भेज दीजिए। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए सब जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, रहिए हमारे साथ क्योंकि 12 बजे तक ये सफर रहना चाहिए। आप लिख रही हैं वो रिश्ता कभी नहीं टूटता जिसमें रूठने वाला परफेक्ट हो, मनाने वाला एक्सपर्ट हो, तभी तो देखिए हम और आप एक दूसरे के साथ यूँ जुड़े हुए हैं। कभी आप रूट जाएं तो हम मना लें और जब हम रूटें तो पूरी कोशिश के साथ हमको मना लीजिएगा, ठीक है? बता रहे हैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। मिराल यासिर मियागंज से आ चुके हैं, जिला उन्नाव से। आपने लिखा वेरी गुड इवनिंग प्यारी स्मार्ट रिचा जी, अच्छा ये बढ़िया था, ये कुछ नया वाला था, स्मार्ट है ना। और आपने लिखा बोलो बोलो कैसी हैं, तो हम बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, गजब का अंदाज शुक्रिया। आप लिख रहे हैं कि एक बात है जो मेरे समझ से परे है, वो ये एक सॉन्ग है कि चांद से पर्दा कीजिए कुछ, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, मुझे जानना है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, लेकिन क्यों चांद से पर्दा ही क्यों? अब हम सोच के बताएंगे, बड़ी गहरी बात लिख दी है आपने, इसके लिए थोड़ा अलग मूड में जाना पड़ेगा, अभी तो रेनबो कैफे के मूड में है। और आपने लिखा है किसी से दिल लगाना चाहिए था, किसी का दिल जीतना चाहिए था, हम आँख में हमारी आँख में तुम तैरते हो, अरे तुम्हें तो डूब जाना क्या है, मतलब आप बात भी कर रहे हैं तो ऐसी कि लो, एक तरफ आदमी सोचे कि सब अच्छा होने वाला है, फिर आप डूबने की बात करने लगते हैं। 9:50 हो चुके हैं, क्या कहते हैं, गाना बजाएं कि एक आती मेल और पढ़ लें? चलिए पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अजान का ईमेल आ चुका है और आप लिख रहे हैं आप सच बोलने की ठान चुके हैं तो हर कदम पर किसी दुश्मन से उलझा होगा, वो जो कहते हैं कि बदलेगा ये दौर ये जुल्मत, उनको पहले तो खुद अपने को बदलना होगा। एकदम सही बात है, पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया आपको अपने आप बदली नजर आएगी। और आपने लिखा है कि मैं मोहम्मद नौशाद हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और कोई हम आप अच्छा सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हैं, रोज सुनते हैं प्रोग्राम, आपको आज का बहुत अच्छा लग रहा है, और कहाँ प्रतापगढ़ में के रहने वाले हैं आप। आपने लिखा है आपका आपकी प्यारी बहनों रिंकी और पिंकी रायबरेली से, उनको आपने डेडिकेट किया है, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि पिंकी रिंकी तक आपका ये ईमेल पहुंच चुका है। बाबू अंसारी जी भी आ चुके हैं, चलो ये ईमेल भी जल्दी से ले लेते हैं। लिख रहे हैं कि कैसी हैं आप, थोड़ा आज लेट मेल किया, कई दिनों बाद ये प्रोग्राम सुन रहा हूं, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आप तो आते ही रहते हैं, अच्छा लगता है। और आपने लिखा है अच्छा एक डांस करता हुआ अपना आपने हमेशा की तरह GIF भेज दिया है, मुझे मिल गया है, दिल से शुक्रिया धन्यवाद। किसको डेडिकेट किया है, किसको किसके नाम लेने को बोला है आपने? कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी, महेंद्र दीपन एंड गुलफसा, मोहम्मद अंसारी, ये सब आ चुके हैं मेरे साथ। आप थोड़ा सा लेट हो गए, पिंकी रिंकी वापस आ गई, लिखनी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। 9:52 का वक्त हो चुका है, गाना बजा दें अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए गाना दे रहे हैं, इस गाने को सुनिए और अभी बचे हुए वक्त में वापस लौटते हैं एक गाना और लेकर आपके लिए। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

तो बस ऐसे ही खूबसूरत फिजाओं में आपके हमारे प्यार की जो सतरंगी लहर है ना, इसको ऐसे ही घुलने दीजिए, मिलने दीजिए और बस ये सिलसिला यूं ही चलने दीजिए। 9:56 का वक्त हो चुका है, कुछ ईमेल्स मेरे पास सौर हैं, फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। आयुषी मौर्य का भी ईमेल और लिख रही हैं, जब आपकी आवाज़ अच्छी है इसके लिए बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। लिख रही हैं, जब डांस करते हैं तो हम इन्जॉय करने के लिए डांस करते हैं, इसके लिए नहीं कि हम अच्छे लगे ना लगे, और अगर हम ये सोचेंगे तो डांस तो कभी नहीं कर पाएंगे। बात बिल्कुल सही है, मुझे याद है पहले इसके पहले जब आपके साथ हम रेनबो कैफे से जुड़े थे तो हमसे कहा था ने शायद मियाँ यासिर जी ने कि डांस नहीं हो पाता उनसे, तो कोई बात नहीं, ये बात उन पर भी लागू होती है कि डांस करिए खुद को एंजॉय करने के लिए, किसी को कैसा लग रहा है वो तो बात की बात है। और आपने हमें उन्नाव से आपका ईमेल भेजा और आप इस वक्त अशोकनगर में हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई करती हैं, चलिए आपकी पढ़ाई अच्छी से होती रहे, हम ये दिल से आपसे दुआ करते हैं। अरविंद कुमार का भी ईमेल आ चुका है और आपने गुड नाइट भेज दिया हमको, लिख रहे मेरी फेवरेट आरजे, सच सुन रहा हूँ कि आप कहाँ पर हो, मतलब हम तो इस वक्त आपके रेनबो पर हैं और आप हमें मुरादाबाद से सुन रहे हैं और बस ये सिलसिला

मराके रखिए, रात 12 बजे तक हम रहेंगे। और एक ईमेल और है मेरे पास, इसको बस आप तक पहुंचा दूं। ये भेजा है मुझे सुदामा भाई, सौरभ प्रजापति जी ने, उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से लिख रहे हैं। नमस्ते मैम जी, कैसी हैं आप? हमरे यहाँ धान की लुगाई लगुवाई शुरू हो गई ला, गर्मी बहुत है। अहे दीदी बहनी से विनम्र निवेदन है कि धान लगावे जावे से पहले सनस्क्रीन क्रीमियाँ लगाई के निकला के। बात तो बिल्कुल देखो सही है, सनस्क्रीन लगाएंगे तो सुंदर सुंदर हमेशा दिखेंगे, तब अच्छा लगेगा मन से भी और तन से भी, है ना। आपने लिखा है आप सभी चकाचक हैं, आपन बताऊं तो हम एकदम परफेक्ट हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज से ये बात पहुंच रही होगी। और लिखा है परी क्या प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब चल रहा बा। धन्यवाद मैडम जी। देखिए क्या है कि बहुत अच्छे से आती नहीं है, आप सभी लिख देते हैं तो हम उसको आप तक पहुंचा देते हैं वापस। तो यहाँ वही कहते हैं कि भावनाओं को समझिए, और मेरी भावनाएं यही है कि हर भाषा बहुत सुंदर है अपने आप में, कुछ कम भी बोल पाए लेकिन किस अंदाज में कह रहे हैं, बस वो अंदाज आप तक पहुंच जाना चाहिए, और मुझे लगता है वो आप तक पहुंच गया होगा। 9:58 का वक्त हो चुका है फिलहाल, रेनबो कैफे को यहीं पर वाइंड अप करने की आ चुकी है बारी। बट वो सारे लोग जिन्होंने आज पूरी तैयारी के साथ अपनी शिरकत यहाँ जारी रखी है, हम दिल से आपको उसके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। अरविंद कुमार बुद्धजी ने वापस ईमेल किया, लिख रहे हैं सोच रहा था कि आप कहाँ, अच्छा आपने लिखा कि आप कहाँ पर हैं, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, तो फाइनली हम आपको यहाँ मिल चुके हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपका हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, अगले घंटे भी रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए, और फिर रेनबो पर के जरिए हम रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्रसारित हो रही चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विधान भवन के समक्ष स्थित अंबेडकर महासभा परिसर में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश के संबंध में संस्कृति विभाग अथवा प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का स्थानांतरण संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्थि कलश अपने वर्तमान स्थान पर पूरी गरिमा के साथ यथावत सुरक्षित है और इसे स्थानांतरित किए जाने संबंधी समाचार पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि सरकार का पूरा ध्यान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों, विचारों और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर केंद्रित है। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन शुक्ला के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। फिल्म जगत में अपने लंबे और सफल करियर के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे रवि किशन को अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नई जिम्मेदारी मिली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने उन्हें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस नियुक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने दर्शकों के अभिनय और फिल्म उद्योग के अनुभव से परिचित कराएंगे तथा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 जुलाई को प्रस्तावित सहारनपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थलों के आसपास 500 मीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर में स्कूल चलो अभियान, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा और सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान कार्यक्रम शुरू होने से 3 घंटे पहले और समाप्ति के 3 घंटे बाद तक ड्रोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पतंग उड़ा

आने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश सरकार के महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तेजाब हमले से प्रभावित सर्वाइवरों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसिड अटैक सर्वाइवर की समग्र सहायता एवं पुनर्वास नीति 2026 का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये नीति केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रहकर सर्वाइवरों के संपूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल है। तेजाब हमला मानवता के विरुद्ध एक जघन्य अपराध है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को न केवल गंभीर

सर्वाइवरों के संपूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल है। तेजाब हमला मानवता के विरुद्ध एक जघन्य अपराध है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को न केवल गंभीर शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ता है, बल्कि मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा एवं रोजगार में कठिनाइयों तथा आर्थिक असुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
4: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: तो रात के 10:06 का वक्त हो चुका है, एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए, जिसे आप सुनते हैं 100.7 FM रेनबो के साथ, और कार्यक्रम रजनीगंधा। तो चलिए सफ़र को जीते हैं आपके साथ, और मेरे साथ आपका रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बिना ये सफ़र कभी पूरा होता नहीं। तो बस यहीं बने रहिए।

तुम जब यूं मुस्कुराते हुए आते हो, तुम जब यूं मुस्कुराते हुए आते हो, संग मौसम बहारों का लाते हो। वो बहारों का मौसम जब बरसता है आसमान से बारिश कर होते हुए, तो यकीन मानिए दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। दिलों की धड़कनों का बढ़ना बेहद लाजमी हो जाता है। दिल से दिल का फासला कुछ यूं तय हो गया, दिल से दिल का फासला कुछ यूं तय हो गया, दिल मेरा धड़का और तुझे उसकी खबर जैसे कहीं हो ही गई, है ना। रात के 10 बजते हैं, दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि 100.7 FM रेनबो पर आपके दिलों के करीब जो शो, जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा, वो जो शुरू हो जाता है। और रही बात आपसे प्यार इश्क मोहब्बत की, उल्फत की, तो इसमें कोई शक है ही नहीं कि आपसे उल्फत है, हमें मोहब्बत है, इश्क है। और इसी इश्क के चलते हर रात रजनीगंधा की हसीन सी महफिल लेकर हाजिर हो जाते हैं हम आपके अपने उसी प्यारे से एक चैनल के जरिए, जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। तो चलिए फिर से मिलकर इस सफ़र को आपके साथ जीते हैं। रात के 10:12 का वक्त हो चुका है और ये घंटा खूबसूरत सदाबहार नगमों के नाम, और फिर ये नाम तब और पूरा होगा जब उसे आप आकर यहाँ मेरे साथ जिएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ ये सफ़र वाकई बेहतरीन होता है।

भले ही हमसे रूठ जाएं, आप भले ही जो है ये सोचे कि नहीं अब किस्सा यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम ऐसा होने देंगे नहीं। आप जितना रूठेंगे हम आपको मनाने की उतनी कोशिशों में आपके साथ वापस जुड़ेंगे, क्योंकि यही तो आपके हमारे प्यार का एक जो कहते हैं ना गहरा वाला असर है वो है। आप हमें समझते हैं, हम आपको समझते हैं, और फिर यही दौर रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफ़र से होता हुआ जब चलता है, सदाबहार गीतों का ये दौर उन्हें और खूबसूरत कर देता है। रात के 10:16 का वक्त हो चुका है। कहते हैं कि किसी को एक नज़र भर देख लेना, शायद यही सारा किस्सा है मोहब्बत का। और हम जो अगर कहते हैं कि बस दिल की बातें जुबान तक आकर अगर रुक भी जाती हैं, तो नज़रें उन्हें वहाँ तक पहुँचा ही देती हैं जहाँ पहुँचना उनका हक है, जहाँ कहना उनका हक है। और ये जो सिलसिला चलता है तो दिलों के किस्सों के बीच में कई बार संयम का दौर भी तो चलता है ना, वो संयम जो एक दूसरे दिल के साथ रखते हुए हम बरतते हैं, और उसके बाद दिलों के किस्से न जाने कितने परवान चढ़ते हैं। चलिए एक प्यारा सा गाना आप तक दे रहे हैं, इस गाने को सुनिए, फिर लौटेंगे रजनीगंधा के इसी सफ़र में आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

मेरे साथ। यूँ तो हमें से हर किसी की जिंदगी में सैकड़ों पल सैकड़ों लम्हे ऐसे आते हैं जब हमारी मुलाकात एक खूबसूरत एहसास से होती है, कई हमारी मुलाकात एक खूबसूरत से एहसास से करा देते हैं, वो एहसास जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, वो एहसास जिसके ख्याल से ही दिल की धड़कनें कहीं बढ़ जाती हैं। और जब तक

ये धड़कने आपके साथ होती है ना, तो हमेशा आपको उस मोहब्बत का एहसास कराती हैं। अब तक जो ज़िंदगी सांसों से चलती थी, वो अब किसी के ख्यालों से चलने लग जाती है। फिर वही एक नाम, उसी का जिक्र ही जैसे ज़िंदगी बन जाती है, या फिर यूँ कहिए कि ज़िंदगी की ताबीर उसी के नाम से होनी शुरू हो जाती है। और ये तभी होता है जब किसी ख़ास का गुज़र दिल की गलियों से होता है, ठीक इस गीत की तरह। रात के 10:23 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107.7 FM रेनबो के जरिए, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए। 11 बजे जब आपके साथ मिलेंगे ना, तो एक ख़ास शख्सियत को भी आपके साथ लेकर आना है। तब तक इस सफ़र में आपका साथ बस इसी की दरकार है।

तुम्हारे प्यार में बेकरार होके चले, तुम्हारे प्यार में बेकरार होके चले, शिकार करने को आए थे, शिकार होके चले। 10:35 का वक्त, रजनीगंधा आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी रजा के साथ।

अच्छा अगर गौर से देखें ना तो फिर यही तो खूबसूरती है उस मोहब्बत की, या फिर यूं कहिए कि इस मोहब्बत का ही ये असर है कि शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है, और मज़े की बात ये कि जानते बूझते हुए ही ऐसा हो भी जाता है और उसे कोई एतराज़ भी नहीं होता। अचानक कहीं दिल में कोई हल्की सी खलिश महसूस होने लगती है जो पहले नहीं थी, वो खलिश जो अपने साथ उस एहसास और उस डर को भी साथ ले आती है जो कहीं इस दिल से प्यार ना हो जाए इस बात से डरता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे आपके कहने से तो अगर ये बातें हो जाती मोहब्बत की तो फिर क्या ही था, सब कुछ सबके इख्तियार में होता, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, इसीलिए शायद उस खलिश के साथ साथ वो डर भी साथ साथ आता है।

का सुरूर चढ़ता है ना, तो बस इसका असर दो प्यार भरे दिलों को ही हो सकता है। उस वक्त दुनिया के रंग और नज़ारे जैसे एक अलग ही तरीके से आप महसूस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चांद सितारे रोज़ नहीं आपको दिखते या रोज़ नहीं मिलते, लेकिन जब आप मोहब्बत के फेर में होते हैं तो नज़ारों में, फिजाओं में, बहारों में सब तरफ एक अलग ही रंग, एक अलग ही रंगत होती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग नज़र आता है, जिसे हम प्यार, इश्क, मोहब्बत कहते हैं। फिर भले ही चाहे हम इस बात से इनकार भी कर दें कि हमें मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच पूछे तो कहीं ना कहीं ये चाहत हर दिल की होती है कि कोई तो हो जो उससे बेपनाह मोहब्बत करे, कोई तो हो जो इससे जो जिससे वो कहे कि हाँ आओ और आकर मेरे साथ इस मोहब्बत को पूरा करो, मुझे अपने गले लगा लो, और फिर वो जो मोहब्बत का एक दौर है ना उसे हम जिए। हालांकि इस बात को सिर्फ हम ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कई बार आप ज़िंदगी में उसको उतारा भी होगा कि कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद आती है, कई बार जिसे आप बेहद चाहते हैं या जो आपके लिए बहुत ख़ास होती है, आप उसे दुनिया से छुपा कर, बचा कर भी रखना चाहते हैं, सहेजते हैं उसे ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे, और फिर चाहे वो आपकी मोहब्बत हो या कोई और कीमती चीज़। लेकिन मुझे लगता है कि बात जब मोहब्बत की आती है ना, तो उससे कीमती, उससे प्यारा एहसास तो यकीनन कोई और हो ही नहीं सकता, जिसे आप दुनिया की नज़रों से बचा कर, छुपा कर रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा।

तो रात के 10:56 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगले घंटे भी हम चाहते हैं कि आप रहें हमारे साथ, क्योंकि अगला घंटा है बेहद खास, क्योंकि आज भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत को लेकर अगले घंटे में आपके साथ रहेंगे। जब बात संगीत की आती है, उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं की आती है, तो यकीन मानिए हर बार जब उनका नाम आता है तो आप उनकी धुनों को गुनगुनाते से कभी रुकते नहीं हैं। कौन है वो अजीम शख्सियत, हम जानेंगे अगले घंटे में। बस आप मेरे साथ भी बने रहें, दिल से इल्तजा गुजारिश आपसे।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ के प्रधानाचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत आज संस्थान परिसर में कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में DCM श्री राम शुगर हरदोई में ट्रेनी, डिस्कॉन इंफ्रा लिमिटेड लखनऊ में अप्रेंटिस, MH सॉल्यूशन में सोलर साइट इंजीनियर तथा एयरटेल में विभिन्न पदों हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रधानाचार्य ने कंपनी के प्रतिनिधियों से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए कहा तथा अभ्यर्थियों को चयन के उपरांत ज्वाइन करने के लिए प्रेरित भी किया। प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि कैंपस ड्राइव में कुल 109 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत कुल 45 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व मॉनसून सीजन के चलते आज से बंद हो गया। अब 1 नवंबर से आगामी सीजन में पर्यटक जंगल की सैर कर पाएंगे। मौजूदा सीजन में पर्यटकों की संख्या के साथ आमदनी भी बढ़ी है। बाघ व अन्य वन्य जीवों की साइटिंग भी निरंतर होती रही। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इस सीजन में 56,587 सैलानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर करने आए। ये संख्या पिछले पर्यटन सत्र से 730 गुना अधिक है। इस बार टूरिज्म में से कुल आमदनी 1.62 करोड़ से अधिक हुई है, जो पिछले सीजन से करीब 2 लाख अधिक है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इस बार बाघ के काफी अधिक शावक सैलानियों को देखने को मिले। चित्रकूट जनपद में मॉनसून सत्र के दौरान नदी तल से खनन कार्य प्रतिबंधित लागू किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइडलाइन तथा सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 के निर्देशों के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में नदी तल से उप खनिजों का खनन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में नव सृजित 8 राज्य विश्वविद्यालयों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य, शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों, पद सृजन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, बजट मान्यता संबद्धता तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

रात के 11:04 का वक्त हो चुका है। सेकेंड हाफ में रजनीगंधा के एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपकी दोस्त रचा और ये घंटा बेहद ख़ास क्योंकि इस घंटे में हम याद करने जा रहे हैं भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें हम संगीतकार के तौर पर जानते हैं। हालांकि ये नाम जब आता है तो जोड़ी के तौर पर आता है, लेकिन उस जोड़ी में से एक शख्सियत जिन्हें हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। बस गीत जब आप सुनेंगे ना तो शायद आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई संशय है तो हम जब लौटेंगे तो उस बात का जिक्र होगा आपसे। बर्थ एनिवर्सरी है आज उस महान संगीतकार की जिनकी द्वारा संगीतबद्ध ये गीत अभी आप आपके रेडियो पर सुन रहे हैं।

तुझे जाने ऐसे कितने अनगिनत गाने हैं जिन्हें जब आप सुनते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल लगा पाते हैं कि ये वो गीत हैं जिन्हें उन्होंने संगीतबद्ध किया। अगर हम संगीत जगत के स्वर्णिम अध्याय की बात करें तो उनका नाम अगर इसमें हम कहें कि शुमार होता है या होना चाहिए तो कतई गलत नहीं होगा। कहते हैं ऐसे बहुत कम संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपने संगीत से हर भाव को, फिर चाहे वो प्रेम का हो, विरह का हो, देशभक्ति का हो, उत्सव का हो या फिर जीवन के हर रंग को समेटता हुआ हो, उन्होंने उसे अपनी धुन में पिरोया है, अपनी धुन में उसको संजोया है और बड़ी खूबसूरती के साथ उसे अभिव्यक्त भी किया है। जब भी कभी बात प्यार इश्क मोहब्बत की करते हैं तो वो गाना अक्सर जहन में आता है जो ये कहता है कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था। न जाने कितने दिलों की धड़कन बन जाता है ये गीत, न जाने आप कितनी बार इस गीत को गुनगुनाते हैं और सिर्फ गुनगुनाते नहीं, जैसे आत्मा में कहीं बस जाता है आपके ये गीत। इस गीत के शुरू में बंधा हुआ वो समा दो प्यार करने वाले दिलों की खूबसूरत वानगी को कहीं बताता है। लेकिन आपको पता है इस अमर गीत के पीछे जिस संगीतकार का जादू चला, पर्दे पर इस गीत को आपने सुना लेकिन जिसका जादू चला वो केवल एक सफल संगीत निर्देशक नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब जब संगीत के स्वर्णिम अध्याय की बात हो और उनका जिक्र ना हो ये कभी हो नहीं सकता। और ये शख्सियत, ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय संगीत के जाने माने मनमानी शख्सियत, संगीतकार जिन्हें हम कल्याण जी, वीर जी, शाह के नाम से जानते हैं। हालांकि ये नाम एक जोड़ी के साथ जुड़ता है लेकिन उसी जोड़ी में से आज कल्याण जी, वीर जी, शाह, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, रजनीगंधा के सेकेंड हाफ में उनसे जुड़ी कुछ बातें और कुछ चुनिंदा नगमे आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रुचा, आपके अपने रजनीगंधा में। यकीन है मुझे कि आप भी जुड़े हैं मेरे साथ इस सफ़र को पूरा करने के लिए। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

अच्छा, वैसे ये गीत हमें आपको थोड़ी देर बाद तक पहुंचाना था, लेकिन इसे ही नियति कहते हैं। कई बार हम जो सोचते हैं नियति उससे अलग कुछ कर रही होती है, ठीक इस गीत की तरह। और ठीक वैसे ही जैसे अगर हम बात करें कल्याण जी वीर जी शाह के बारे में, जब स्थितियां परिस्थितियां विपरीत थी, सोच रहे थे संगीतकार बनने के लिए कैसे बनेंगे, शायद होता नहीं, लेकिन नियति को ये मंजूर था कि वो एक सफल संगीतकार बनते, सो हुआ। लेकिन अगर इस बात की बात करें कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो जब बात कल्याण जी की आती है तो उनके साथ आनंद जी का भी नाम जुड़ता है, जो कि उनके छोटे भाई रहे। और कहते हैं कि जब फिल्मों में कदम रख रहे थे कल्याण जी वीर जी शाह, तब उनके पिता ने उनसे कहा भी था कि सफलता जब आती है तो अपने साथ अहंकार भी लाती है, और हो सकता है कि दो भाई होने की वजह से एक साथ, जो कि अक्सर देखा सुना पढ़ा जाता है कि अक्सर रिश्तों में टकराव आ जाते हैं, फिर चाहे वो भाई भाई की बात हो या फिर बहन बहन की बात हो या फिर कभी रिश्तेदारी में किसी चीज़ को साझा करने की बात हो। तो पिता ने उनसे कहा कि ठीक है, ये तो साथ में काम करोगे दोनों अगर चाहते हो, लेकिन जब सफलता आए तो ईगो सर पे ना चढ़े, ये भी ख्याल रखना है। उस वक्त कहते हैं कि आनंद जी ने ये दिलासा दिलवाया अपने पिता को, बल्कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे को, कि वो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। जो बड़ा कहेगा छोटा उसे मानेगा, और जो छोटा समझाना चाहेगा बड़ा भाई भी उसे दिल से सराहेगा। और ऐसा हुआ भी। कहा था उन्होंने कि अगर एक भारतीय सिने जगत में संगीत के क्षेत्र का सूरज बनेगा तो दूसरा चांद बनेगा, और ये हुआ भी। अगर एक संगीतकार के तौर पर सूरज बनकर प्रकाशित हुए तो दूसरा भाई चांद के तरीके से हमेशा चमकता रहा, और दोनों ने अपनी उस बात को हमेशा रखा भी, माना भी, समझा भी। तो 11:17 का वक्त हो चुका है। नियति कैसे कल्याण जी वीर जी शाह को उनके मकाम तक ले गई, तब जब परिस्थितियां उनके विपरीत थी, बताएंगे। लेकिन इसके पहले बात की थी मैंने आपसे चांद सी महबूबा हो इस गीत की, तो ये गीत हम आप तक कैसे ना पहुंचाएं।

तो अगर अपने दिलों पर हाथ रख के आप इस गीत को सुनेंगे या फिर सोचेंगे ना, तो यकीन मानिए ये बात हर दिल से निकलेगी जो प्यार भरे दिल है, कि कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती है जब दो दिलों की बात होती है। भारतीय सिनेमा में अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर उन्होंने जो संगीत रचा वो आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने समय में था। उनकी धुनें केवल गाने नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों की यादों और भावनाओं का हिस्सा तक बन गई थी। कहते हैं कल्याण जी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो सिर्फ धुन नहीं बनाते थे बल्कि हर शब्द और हर भावना को महसूस भी करते थे, इसीलिए शायद इतनी खूबसूरत धुनें बन जाती थी या फिर बन गई थी जिसे आप आज तक भी गुनगुनाते हैं। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास भी थी और आधुनिकता की ताजगी भी, और यही संतुलन उन्हें दूसरे संगीतकारों से बिल्कुल अलग बनाता था, एकदम अलग करता था। रिकॉर्डिंग्स के दौरान अगर उन्हें कहीं किसी गीत में दर्द, खुशी या फिर किसी ऐसे जज्बात की कमी लगती थी तो कहते हैं वो तुरंत कलाकारों को खुद समझाते थे कि गाना कैसे महसूस करके गाया जाना है, किस तरीके से आप उसे गाएं कि वो पर्दे पर उतनी ही खूबसूरती या फिर उतनी शिद्दत के साथ सुनाई भी पड़े और दिखाई भी पड़े। कई गायकों ने तो यहाँ तक माना कि उनके साथ काम करना किसी संगीत की पाठशाला से कम नहीं था, और ये तड़प ये प्यास कल्याण जी शायद बेहद बेहतर जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो गायक कलाकार थे उनको हमेशा इस चीज़ के लिए बताया भी, सिखाया भी कि अगर इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वैसे गीतों को बनाओगे, सुनोगे, गाओगे, जाहिर सी बात है वो बेहतर तरीके से जाकर सीधा वहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैं उसे तुम सबके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। रात के 11:22 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा में आज कल्याण जी स्पेशल आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त आपकी रजा के साथ।

तो न केवल ख्वाब उनकी आंखों में थे बल्कि संगीत को लेकर प्यास एक तड़प भी थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे। 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ जिले के कुंडरोटी गांव में उनका जन्म हुआ, एक बेहद ही साधारण से परिवार में। कहते हैं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा उनका परिवार रोजगार की तलाश में कच्छ से मुंबई आ गया था। मुंबई जो कि उस समय कहते हैं कि सपनों का शहर हुआ करता था, बल्कि उस समय की बात क्या करूं, आज भी वो सपनों का शहर ही है। न जाने कितने लोग मुंबई जाकर अपना उनकी जो आस है उसको पूरा करने का सपना देखते हैं। कुछ के ख्वाब पूरे होते भी हैं, कई बार टूटते भी हैं, लेकिन लगन हमेशा खींच कर लेकर चली ही जाती उससे उस शहर पर, वो शहर जहाँ हर कोई अपनी पहचान बनाने आता था। कल्याण जी के मन में भी एक सपना था संगीत की दुनिया में कुछ बड़ा करने का, कुछ बेहतर करने का। हालांकि उन्होंने किसी बड़े उस्ताद से औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन संगीत के प्रति जो उनका लगाव था और जो सीखने की इच्छा थी, कहते हैं वो उन्हें लगातार बढ़ाती रही। और फिर नियति से आ गया वो दौर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, हम सोचते कुछ हैं लेकिन नियति उसे पूरा करवाने की कोशिशों में लग जाती है। गाना बजाना कुछ था, बजा कुछ और, तो ये भी कहीं नियति थी। उनके जीवन की बड़ी रोचक सी घटना रही। कहते हैं पिता जब यहाँ आए तो यहाँ मुंबई आकर उन्होंने किराने की एक दुकान खोली अपना जो आजीविका थी उसको पूरा करने के लिए। यूँ तो तमाम ग्राहक आया करते थे, लेकिन उन्हीं ग्राहकों में से एक बड़ा यादगार रह गया था, क्योंकि अक्सर सामान लेता था लेकिन पैसे नहीं देता था। कई दिन हो गए पिता ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक दिन पानी सर से ऊपर हुआ तो पिता को लगा कि अब उनसे इस बात के लिए बोलना चाहिए कि भाई पैसे तो दे दो, उधार तो चुका दो। अब चूंकि उस ग्राहक के पास देने के लिए पैसे नहीं थे और कहीं ये बात पता थी कि वीर जी शाह के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, संगीत सीखने की इच्छा रखते हैं, इस बात का फ़ायदा उठाकर उस ग्राहक ने वीर जी शाह से कहा कि पैसे तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके जो बच्चे हैं उनको संगीत की शिक्षा दे सकता हूँ। हालांकि बहुत महारत हासिल उन्हें नहीं थी, लेकिन पिता को लगा कि चलो इसी बहाने कम से कम वो जो शिक्षा चाहते हैं बच्चे, एक मौका उन्हें मिल जाएगा। क्या पता फिर ये मौका उन्हें उस मकाम तक ले जाए जहां वो जाना चाहते हैं। और कहते हैं यही शुरुआती सीख दोनों भाइयों के जीवन की दिशा करने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, जो वो पड़ाव जो उन्हें लेकर गया वहाँ पर जहाँ वो एक सफल संगीतकार के तौर पर स्थापित हुए, शुमार हुए।

तो यकीन मानिए कहीं वो वक्त अब बिल्कुल आने वाला था, तीर कमान से निकल चुका था और जाकर लगने वाला था उस जगह, उस निशाने पर जहां वीर जी कल्याण जी वीर जी चाहते थे कि वो लगे और फिर भारतीय सिने जगत के सफल संगीतकार के तौर पर उन्हें देखा जाए। मुंबई में संघर्ष के दिनों में कल्याण जी ने प्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। आपको याद होगा 1954 में फिल्म आई थी नागिन, जिसका गीत दिया था हेमंत दा ने, लेकिन उन गीतों के जरिए उन्हें असिस्ट किया था कल्याण जी वीर जी शाह ने। और स्पेशली जब वो गाना बजा था ना, तन डोले मेरा मन डोले, और उसमें वो जो नागिन वाली धुन थी, अगर आपको याद हो जब हेमंत कुमार साहब के बारे में आपसे बात की थी तो इसका जिक्र भी किया था मैंने। ये वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी गया कल्याण जी को ही। वो जो बीन की धुन थी, जिसे पर्टिकुलर जो बीन है वो ना लेकर के एक अलग तरीके के वाद्य पर उसको प्रोड्यूस किया गया था, और फिर गीत फिल्म जो नागिन थी उसमें उस गीत को धुन के साथ इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा श्रेय कल्याण जी को भी जाता रहा। कहते हैं इस दौरान उन्होंने संगीत की बारीकियों को भी बेहद करीबी से समझा सीखा। घंटों स्टूडियो में बैठकर संगीत संयोजन, वाद्य यंत्रों के प्रयोग और धुनों की रचना को देखते सुनते रहे, सीखते रहे, समझते रहे। अच्छा, ये वो दौर था जिस वक्त एसडी बर्मन, हेमंत दा, मदन मोहन, नौशाद जैसे संगीतकार हुआ करते थे, और ऐसे में कल्याण जी के लिए अपना मकाम बना पाना वाकई काफ़ी टफ टास्क था, मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ये अनुभव आगे चलकर उनके लिए अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि साथ साथ रहते रहते सीखते सीखते फिर वो दौर आ गया जो था 1958 का, जब उन्हें फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के लिए स्वतंत्र रूप से संगीत देने का मौका मिला। ये वो पहली फिल्म थी जहां पर उन्होंने एक संगीतकार के तौर पर खुद को अपीयर किया और फिर लोगों ने उन्हें नोटिस भी किया। कहते हैं शुरुआत में कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से फिल्मों में संगीत देना शुरू किया, और इसी साल उन्होंने सट्टा बाजार और मदारी जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया। लेकिन असली पहचान चलते चलते साल जब 1960 आया तब उनको मिली, और फिल्म थी छलिया, जिसका वो गाना बेहद फेमस हुआ जिसे अभी हम आपको सुनवाने

जा रहे हैं, और ये वो फिल्म थी जहां से एक सफल संगीतकार के तौर पर उन्हें स्थायित्व मिलने लगा, लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे, और अब निर्माता निर्देशक चाहते थे कि वो उनकी फिल्मों का हिस्सा बने। फिल्म छलिया का ये गीत डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा।

तो 1959 में फिल्म सम्राट गुप्त के जरिए उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त के जरिए उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी एक सफल स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर. और कहते हैं कि जब उनकी एक पहचान बन गई तो उसके कुछ सालों बाद उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया और उसके बाद तो फिर एक से बढ़कर एक कालजयी संगीत की रचना दोनों ने मिलकर करी. कहते हैं कि फिर वो एक वक्त भी आया कि उनकी संगीत रचना न केवल दिलों में घर करने लगी बल्कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा संगीतकार जोड़ा मिला जिसने आगे आने वाले चार दशकों तक फिल्म संगीत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. कल्याण जी आनंद जी नाम जल्द ही सफलता का पर्याय बन गया था और दोनों ने न केवल फिल्मी गीत बनाए बल्कि मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से भी अपनी अलग अलग पहचान भी बनाई. और उनकी ऑर्केस्ट्रा कंपनी कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी देश के कई शहरों में अपना जो कार्यक्रम थे उसको प्रस्तुत करती रही. लोगों के बीच वो बेहद लोकप्रिय होते रहे और इधर हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद भी बनते रहे.

60 का दशक उनके लिए सफलता का दौर लेकर के आया था। फिल्म छलिया से उन्हें बड़ी पहचान मिली थी और इसके बाद हिमालय की गोद में जब जब फूल खिले और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के शीर्ष संगीतकारों की श्रेणी में भी लाकर खड़ा कर दिया था। कहते हैं साल 1968 में जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई, सरस्वती चंद्र उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर साबित हुई और इस फिल्म के संगीत ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत की उत्कृष्टता के लिए उन्हें इस फिल्म के लिए मद्देनजर राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया। ये वो वक्त था जब उनके नाम का परचम अब हर तरफ लहराने लगा था।

यकीन मानिए दो प्यार भरे दिलों की दास्तान से इससे बेहतर गीत और क्या हो सकता है। जब एक दिलबर अपने महबूब के लिए उसकी सुंदरता में उसको परिभाषित कर रहा हो तो इससे बेहतरीन शब्द या फिर इससे बेहतरीन धुन शायद ही कहीं और हो सकती है। और ये जादू रहा कल्याण जी आनंद जी का, जिनमें से आज कल्याण जी को हम याद कर रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। 11:44 का वक्त है। 60 के दशक की अगर बात करें तो हाँ, वो दिन प्रतिदिन अपनी संगीत धुनों के जरिए लोगों के दिलों में घर करते जा रहे थे। और फिर चलते चलते आया वो दशक 70 का, जब कहते हैं कि उनकी करियर का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। 70 के दशक में कल्याण जी आनंद जी के संगीत का एक नया दौर चल रहा था और इस दशक में उनकी कई सारी फिल्में आईं, तमाम फिल्में आईं, जिनमें खासकर ऐसी फिल्में रहीं जो व्यावसायिक तौर पर बेहद बेहद सफल रहीं। फिर चाहे उसमें फिरोज़ खान साहब की कुर्बानी जैसी फिल्में शामिल हों या फिर वो फिल्में जिनमें उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के लिए संगीत दिया। आपको याद होगा जंजीर, जब ये फिल्म आई तो इस फिल्म का गीत भी कल्याण जी आनंद जी शाह की उससे संगीत से रचा हुआ था। और आप जानते हैं किस तरीके से अमिताभ बच्चन साहब को फेमस किया इस फिल्म ने और इस फिल्म के गीतों ने। तो एक दौर ऐसा भी रहा जब उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को ना केवल ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि उनके गीतों के जरिए और उनके संगीत के जरिए वो खुद भी एक बेहतर नाम भारतीय सिने जगत के इतिहास में बनते रहे।

उम्मीद करती हूँ इस गाने को सुनकर आपको उनके अंदर की जो क्षमता थी ना उसमें बिल्कुल कहीं से कोई संदेह रह ही नहीं सकता। ये वो गीत जिसने न केवल लोकप्रियता हासिल करी बल्कि अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन साहब की तो ये फिल्म उनके खाते में ऐसी शुमार हुई कि उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं रहे बल्कि दी अमिताभ बच्चन बन गए, क्योंकि ये गीत जो था ना, संगीत जो था ना, इसकी लोकप्रियता की भी एक बड़ी वजह रही। ये संगीत उनकी रचना शक्ति थी कि उनके गीत समय के साथ कभी पुराने नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा लोकप्रिय होते गए। दर्शकों बीत जाने के बाद भी जब आप इन गीतों को सुनते हैं तो आप इस बात का साफ अंदाज़ा लगा लेते हैं क्योंकि ये गीत आपके दिलों में आज भी वैसे ही कहीं रचे बसे हुए हैं। अपने लंबे करियर में कल्याण जी, आनंद जी की बात करें तो 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में, 17 फिल्में गोल्डन जुबली और 39 फिल्में सिल्वर जुबली भी साबित हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश मंदाडे, महेंद्र कपूर सरीखे महान गायकों के साथ भी जो है एक अपना प्रयोग था उसको किया और सारे के सारे गाने अगर आप देखें तो कहीं दिल को छूते हैं। तो वहीं प्रकाश मेहरा जी के साथ उनका एक अच्छा गठजोड़ बन गया, तो वहीं उनके साथ उन्होंने हसीना मान जाएगी, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस जैसी कई सफल फिल्में दी। और अगर हम बात करें फिरोज़ खान साहब के साथ तो उनका काम भी बेहद लोकप्रिय हुआ, सराहा गया और इस टिकड़ी ने जहाँ धर्मात्मा, कुर्बान और कुर्बानी और अपराध जैसी फिल्में दी तो वो आज भी लोगों के बीच में सराहनीय हैं। जब उन गीतों की बात आती है तो यकीन मानिए आपके जहन में वो गीत हमेशा हमेशा कायम रहते हैं।

दोस्तों अगर उनके संगीत की लोकप्रियता की बात करें तो उसके साथ साथ गुणवत्ता भी उनके संगीत में कहीं आती थी और यही कारण था कि उन्हें अनेक पुरस्कारों सम्मानों से भी नवाजा गया। साल 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और बाद में साल 1992 में भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया।

कल्याण जी, वीर जी शाह की कहानी केवल एक सफल संगीतकार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला। संघर्ष, समर्पण और कला के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। भारतीय संगीत जगत में उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने केवल गीत नहीं बनाए बल्कि ऐसी धुनें रची जो समय की सीमाओं के पार हो गई। 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी वीर जी शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, महज 72 साल की उम्र में। लेकिन बात चुबाती कलाकार की, तो यकीन मानिए कलाकार की असली पहचान उसके जीवन काल से नहीं होती कभी, बल्कि जो संगीत उन्होंने दिया वो आज भी कहीं दिलों में जीवित है, और यकीन मानिए वो हमेशा वैसे ही जीवित भी रहेगा। जब भी कभी रेडियो पर उनकी धुनें सुनाई देती हैं, या जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है और बच्चे जब वो गीत गाते हैं, मेरे देश की धरती गुनगुनाते हैं, तब महसूस होता है कि संगीत कभी मरता नहीं, क्योंकि उन्होंने हर जॉनर के गीत लिखे और ऐसे लिखे कि आज तक भी सबके दिलों में हैं। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्वर लहरियां वैसे ही गूंजती हैं जैसी तब जब वो थे। लगता है कि कहीं कल्याण जी वीर जी शाह अपनी धुनों के जरिए आज भी मुस्कुरा रहे हैं और भारतीय सिने जगत को अपनी ब्लेसिंग से कहीं नवाज भी रहे हैं, क्योंकि उनका संगीत आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। भले ही हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन जिंदगी के सफर की जब बात आती है, जब भी कभी उनका जिक्र होता है, तो यकीन मानिए वो हमेशा दिलों में हैं, वैसे ही बने रहेंगे जैसे वो तब थे। 11:57 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के इस सफर को हम बस यहीं से समाप्त करेंगे और लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ इस एक घंटे के सफर में जो कुछ भी हम समेट पाए, कल्याण जी से जुड़ा हुआ, आपको पसंद जरूर आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर किसी दिन किसी रोज़ हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन ऑडिटोरियम में हिंदी साहित्य एवं लोक नाट्य परंपरा के महान नाटककार एवं सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विरासत का सम्मान हमारी प्रगति का आधार है। जो समाज अपनी विरासत का सम्मान व संरक्षण करता है, उसी समाज के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जो अपने पूर्वजों तथा अपनी विरासत दुर्गति करता है, वो अपनी उन्नति की दुर्गति करता है। आज पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उनकी कथा सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ने देश को जोड़ने का कार्य किया। संत तुलसीदास जी ने श्रीराम नाम की ताकत का एहसास हमें कराया। चित्रकूट जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कारागार का संयुक्त त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के स्वास्थ्य, खानपान, बैरकों एवं चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। महिला बैरक स्थित विद्यालय का निरीक्षण कर बच्चों एवं उनकी माताओं से संवाद किया गया तथा बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। अधिकारियों ने चिकित्सालय एवं पाकशाला का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा की, जो संतोषजनक पाई गई। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। राम मंदिर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए। मंदिर से जुड़े मुद्दे पर ट्रस्ट से ने सरकारी जांच की मांग की थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। SIT जांच कर रही है और पहचान होने पर लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:15 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।